0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि के तदनुसार 29 मई सन 2026 इस समय सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे एक बार फिर से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रोजाना की तरह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और 8 बजे फिर से जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। नौ बजे का समय रहता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है दिल के तराने गाने नए पुराने। ठीक 10 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। दस बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक और 11 बजे आप फिर से सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

11:05 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। ठीक 12 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक।

ठीक 1 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का और 1:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा।

0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आर मीडिया एकेडमी।
1: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम अपनी आंखों को बंद करके संसारिक मोहब्बत और दुनियावी धन दौलत के पीछे इस कदर दीवानगी की हद तक चले जाते हैं जहां बाद में आंसू और पछतावे के सिवा कुछ और हासिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर हम आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएंगे और अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे तो हमारा जीवन प्रेम आनंद और खुशियों से भर जाएगा।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारे जीवन में खुशियाँ और शांति देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। अगर हम उसकी बातों को मानकर अपना जीवन बसर करेंगे तो वो हमारा निगहबान बनकर न सिर्फ हमारे जीवन को संभालेगा बल्कि हमें ऐसा जीवन प्रदान करेगा जिस जीवन में प्रभु का आत्मा वास करेगा और उस जीवन में होगा आनंद ही आनंद।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु के सम्मुख लाकर उसको सौंप दो और उस पर भरोसा रखो, तब वो तुम्हारी सारी मुश्किलों को हर लेगा और तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलेगा।

कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

जी हाँ, अपने वादों पर अडिग रहने वाला हमारा प्रभु हमसे यही कहता है कि परख कर देखो मैं कितना भला हूँ। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है सुप्रभात, जो लेकर आई हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। और जो ये गुड मॉर्निंग होती है ना, ये गुड मॉर्निंग, ये सुप्रभात इतना ख़ास होता है हमारे लिए, बस इसे समझने में थोड़ा सा वक्त हमें लग जाता है। रात की गहरी खामोशी को चीरकर जब सूरज की पहली किरण ज़मीन पर कदम रखती है तो वो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती है, वो कायनात की तरफ से एक दिया गया मौका होता है, एक ऐसा खाली पन्ना होता है जिसे खूबसूरत से शब्दों से हमें भरना होता है। और वो शब्द होते हैं हमारी दिनचर्या, हमारा दिन कैसा है, हम किन से मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्या खास कर रहे हैं और अपने लिए कितना जी रहे हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में खुद के लिए वक्त हम कहाँ निकाल पाते हैं, लेकिन जो वक्त आज हमारे पास है उसका इस्तेमाल तो हमें करना आना चाहिए। इसलिए आज की सुबह को बहुत ही खूबसूरत से बनाते हैं और मिलकर आप और हम सोचते हैं क्या कुछ आज खास करना है। प्रोग्राम सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर, और इस प्रोग्राम में साथ साथ संगीत ना चले ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, इसे सुनिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और आकाशवाणी रेनबो के साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात, जिसे लेकर आई हूँ मैं, यानी आपकी दोस्त गीतांजलि। बात यहाँ सुबह की हो रही है। एक खूबसूरत सी सुबह हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आती है। जरा सोचिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर सुबह का होना किसी चमत्कार से कम है क्या? कल रात जो बीत गया वो कल हो गया, यानी कि उसे हम इतिहास भी कह सकते हैं। आपकी गलतियाँ, आपकी परेशानियाँ, वो सब कल के सूरज के साथ ढल गया। आज का सूरज आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है, तो इस शुरुआत को हम जाया नहीं जाने देंगे। जिंदगी की बेहतरीन शुरुआत ही सुबह से होती है, और इसीलिए इतनी खूबसूरत सी सुबह का स्वागत भी बड़े अच्छे से करना चाहिए, है ना? हम कर रहे हैं, हम यानी कि हम और आप मिलकर आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप सुप्रभात। एक और ट्रैक आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इसे सुनते रहिएगा और आकाशवाणी रेनबो के साथ बने रहिएगा।

जी हाँ, रास्ता बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा सा आसान लगने लगता है जब हमारा कोई अपना साथ में हो, है ना। सुबह की ये ताज़ी हवा, ये ठंडी ओस, ये चिड़ियों की चहचहाट जैसे हमसे कुछ कह रही है, हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा एक नया सवेरा लाती है। और इसी सवेरे को सोचकर ही तो हमें चलना है। अभी ये सॉन्ग भी सुन रहे थे ना आप कि चलने लगे ये रास्ते, जब हम चलने लगते हैं तो रास्ते अपने आप हमारा साथ देने लगते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुप्रभात ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर। आपकी दोस्त गीतांजलि है आपके साथ और एक बहुत ही अच्छा सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए। इस ट्रैक को सुनिएगा, इंजॉय करते रहिएगा। और हर ट्रैक पर इंजॉय इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सुबह की शुरुआत इंजॉय करते हुए ही होनी चाहिए, शाम तक रात तक आप इंजॉय करते रहें आई विश। और कोशिश करिए ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने की। और हमेशा मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिर्फ इतना है कि इसे बस जीते जाइए, दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुछ नहीं कर सकते रोकर, परेशान होकर, कुछ नहीं। फिलहाल एंजॉय दिस ट्रैक।

जी हाँ, बात सुबह की हो रही है और जब सुबह आती है तो नई शुरुआत लाती है। जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया था कि ज़िंदगी का फलसफा सिर्फ इतना है, इसे जीते जाइए। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए अपने आप को जितना हो सके टेंशन फ्री रखें और म्यूज़िक इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप म्यूज़िक से जुड़ जाइए। ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो फिर हमें कुछ अच्छा सुनने का मन करता है, तो अच्छा सुनने के लिए म्यूज़िक से बेहतर और क्या हो सकता है। इसीलिए संगीत की दुनिया बहुत ही अच्छी होती है, इससे जुड़े रहिए। एक सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए और ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वक्त जो है ना वो अब हमें बहुत ज़्यादा साथ रहने की इजाज़त तो नहीं दे रहा है, लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वक्त के साथ चलते हुए अब इस शो में मैं आपसे लेती हूँ विदा, क्योंकि वक्त हो गया है आपसे इजाज़त ले लेने का। बहुत जल्द फिर से जुड़ूंगी आपसे। जाते जाते एक अच्छा सा ट्रैक प्ले कर जा रही हूँ आपके लिए। और हाँ, सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करें इसे और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, बाय बाय।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल आपकी वाणी आकाशवाणी। और क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बस आगे बढ़ते रहो मंजिल की तरफ, कुछ ना भी मिला तो फिर तजुर्बा होगा। लेकिन वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं और अपने तजुर्बे से काफी बड़ा हूं मैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, लेकर आपका होस्ट आपका दोस्त आरजे गौतम जुड़ चुका है आपके साथ। और कहा जाता है, ओए पंजाबी आ गए ओए, के ऊंचा रख सर, थल्ले कदे भी ना आऊं, जिथे भी मैं जाऊं उथे रौनक लाऊं, लोड़ पई तो सच ले लड़ जाऊं, एवरीथिंग यार बब्बर शेर कहा। दिल से दिल तक
2: हो गया, फिर खेल हो गया शुरू।

Well, कहा जाता है पंजाबी में कि ऊंचियां इमारतें दे सपने ना वेख, लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल देखने चाहिए। बड़े सपने देखोगे नहीं तो वो सच कैसे होंगे। वेल आज क्या है खास मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं कि मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडराए तो, तू चल यूं ही अब सुबह शाम और रुकना झुकना नहीं तेरा काम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आज है माउंट एवरेस्ट डे और ये दिन मानव साहस, मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इफ यू हैविंग अ ड्रीम ना जस्ट गो फॉर इट, और वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए इस उपलब्धि को सम्मान देने के लिए दिवस मनाया जाता है। ये लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। एंड साहसिक खेलों और प्राकृतिक मैं अगर बात करूं संरक्षण के लिए भी, प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी ये दिवस महत्वपूर्ण है। और ये दिन हमें टीम वर्क, आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व सिखाता है कि साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना, जोर नहीं आपको सिर्फ शोर करना है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और सुनते रहिए

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। रेडियो के स्वर्णिम दौर में खेल के हर बड़े मुकाबले की कमेंट्री सुनने के लिए लाखों लोग आकाशवाणी से जुड़े रहते थे। मार्च 1975 में जब भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता, तो इस ऐतिहासिक पल का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से ही किया गया। मशहूर कमेंटेटर जसदेव सिंह ने अपनी जोशीली हिंदी उर्दू मिश्रित कमेंट्री के जरिए इस मुकाबले को करोड़ों श्रोताओं तक पहुंचाया और इसे जीवंत बना दिया। उनकी कमेंट्री का जादू ऐसा था कि अंग्रेजी समझने वाले पड़ोसी देश के श्रोता भी विशेष रूप से आकाशवाणी से जुड़ने लगे। 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि आकाशवाणी की आवाज के जरिए पूरे देश ने उस गौरव को एक साथ महसूस किया था। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेल 102.6 एफएम दिल से दिल तक और आपके दिल से हमारे दिल तक। एंड दुनिया का सबसे बड़ा रोग ये कहा जाता है कि क्या कहेंगे लोग, लेकिन मैं कहता हूं कि हम भी दरिया हैं, जिस तरफ चल पड़ेंगे उसी तरफ जो है रास्ता बनता चलेगा। कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अकेले चलते हैं और उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। आज हम याद कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को। एंड उनका निधन 29 मई 1987 को हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। मैं आपको बताता चलूं कि चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने हमेशा गांव, गरीब और किसान की आवाज़ को बुलंद किया। एंड चौधरी चरण सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्ग के हित में कार्य करे। यानी कि किसी से बेहतर करूं क्या फ़र्क पड़ता है, किसी का बेहतर करूं बहुत फ़र्क पड़ता है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, कहाँ हैं आप? मैं तो आ चुका हूँ स्टूडियो में और गुड मॉर्निंग हो गई है तो जाग जाइए।

कई बार हमारी चाहत होती है और मौसम में भी थोड़ी सी राहत आ जाती है, लेकिन आप सुन रहे हैं मेरी जुबानी, लेकिन आपको लिखनी अगर नहीं कहानी नई कहानी, तो पीते रहिए पानी, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, एंड सूर्य का बढ़ता रहेगा ताप, लेकिन आप जपते रहिए जाप के बीइंग हाइड्रेटेड। और नहीं तो आप कहेंगे बाप रे बाप, ऐसे में कोशिश करें कि आने वाले समय में जब हीट वेव्स आ रही हैं तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एंड सभी से यह आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें उतनी बरतें, कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें, वाटर बॉटल जो है वो कैरी करें। ऐसे मौसम में आपके अब पेशेंस जो है वो बहुत बड़ा सहारा आपका बन सकता है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें, और ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। यानी कि खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या इलाहाबाद रहो, और जुग जुग जी, और जितना हो सके उतना पानी पियो।

और अगर मैं कहूं कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो पलटता जरूर है, और दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना कि वक्त बताएगा। बिकॉज बहुत वक्त लगा है मुझे अपना किरदार बनाने में, और जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वैभव सूर्यवंशी के बारे में कहा जा रहा है। आईपीएल 2026 के क्वालिफायर सेकंड में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी, और इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी टिकट टू फिनाले, जबकि हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। एंड 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजर होंगी, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और करके दिखाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एलिमिनेटर में हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 छक्के लगाए थे। बड़ी बड़ी मीनार और सोने के दिनार दूर से चमकते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ी भी दूर से चमक, और आज देखते हैं कितनी चमक बरकरार रहेगी। वेल, चमक आपके चेहरे पर भी बरकरार रहेगी। वर्कआउट करते रहिए, एंड गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो ऐसे में मुस्कुरा कर सबसे मिलिए।

अक्सर हम बात करते हैं कर्मा और सिनेमा की, लेकिन सिनेमा जगत में कुछ ऐसे सितारे रहे हैं जिनके किरदार को आज भी हम सलाम करते हैं। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास को और भी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ, जिन्होंने ना स्टडी किया बल्कि अपनी दमदार आवाज़ के दम पर हर एक दिल पर राज किया, जिन्होंने बम्बई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया। और हम आज याद कर रहे हैं पृथ्वीराज कपूर जी को। भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज़, रोबदार भाव और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सीने दर्शकों के दिलों पर राज किया। तो कहीं ना कहीं सैल्यूट है इनके कंट्रीब्यूशन को। और शाहरुख खान साहब कहते हैं ना, वेक अप इन द मॉर्निंग एंड बी समवन एल्स इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग फॉर एंटरटेनर। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, हर कोई अपना किरदार निभा रहा है।

मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहल एक नया इम्तिहान होता है। एंड इसी के साथ अगर बिकने पर आ जाओ तो खरीद देता है जमाना सारा, ना बिकने का इरादा हो तो फिर यही आपका फरमान होता है और उसके बाद कीमत और बढ़ जाती है। इंसान को अपनी कीमत खुद समझनी चाहिए, दुनिया तुमको डिस्काउंट पर ही खरीदने की कोशिश करेगी। वेल, डिस्काउंट अगर आपको नहीं दिखाना है तो वो पानी पीने

के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दिखाना आपको, जो है जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड आप रखिए, एंड इसी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और याद करना चाहेंगे हम श्री योगेश गौड़ जी को भी, एंड प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक थे, उन्हें विशेष रूप से फिल्म आनंद के गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली हाय और रिमझिम गिरे सावन फिल्म मंजिल रजनीगंधा फूल तुम्हारे जैसे सुपरहिट गीतों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई और भारतीय हिंदी सिनेमा में उनके दिए योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा यश भारती पुरस्कार भी दिया गया।

काम पे तनहा ही खड़ा था। वेल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम। अभी भी स्टूडियो में हूँ। एंड सेल्फ लव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, एंड बहुत इंपॉर्टेंस इसको दीजिएगा एंड खुद से बनिए, है ना। कोशिश कीजिए कि प्रेशर में बिखरे नहीं बल्कि निखरे, जैसे वैभव सूर्यवंशी। और खुद से बन रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ना, इसलिए समय लग रहा है। और खुद से आप बनेंगे तो समय ज़रूर लगेगा, और आपको भी मेरी तरह ज़िंदगी बनी बनाई मिली नहीं है। तो ऐसे में कोशिश कीजिए, ब्रेकफास्ट ज़रूर आपका बना बनाया आपको तैयार मिल रहा होगा, लेकिन रिलैक्स, मेडिटेशन कीजिए। और सैटरडे संडे कोशिश कीजिए कि कुछ नई हॉबीज़ आप डेवलप कर सकें। और ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, पेशेंस रखना। मुझे पता है ढेर सारी मेल्स आपको आ रही होंगी, ड्राइविंग करके आप ऑफिस जा रहे होंगे, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, ये सबसे बड़ा रोग है।

जाने का समय हो गया है और करने के लिए अपना कर्मा आ चुकी है गीतांजलि शर्मा। क्लास में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे ना, जिनमें से काफी सारे लोगों का नाम शर्मा हुआ करता था, तो कुछ ऐसी गीतांजलि आ चुकी है स्टूडियो में और मेरे जाने का समय हो चला है। यानी कि जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो आरजे गौतम इज साइनिंग आउट, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ, हर रोज सुबह की शुरुआत जैसे होती है, अक्सर हम कोशिश करते हैं कि सुबह की शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हो ताकि पूरा दिन बहुत अच्छा बीते। तो फिर म्यूजिक से जुड़ना कहाँ बुरा है। जब आप म्यूजिक से जुड़ जाते हैं ना तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है, और आपका दिन की आपके दिन की जो शुरुआत है अगर म्यूजिक से हो जाए तो बात ही क्या है, है ना। और आकाशवाणी रेनबो पर जितने भी प्रोग्राम्स आप सुनते हैं, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा दिन तो खास हो ही जाता है जब सुबह से लेकर रात तक हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो बातें हैं, आपसे जो हम मुखातिब होते हैं, हमारे जो सॉन्ग्स हैं, हमारा म्यूज़िक है, वो सब आपके लिए एक अच्छे दिन की शुरुआत का काम करे। तो चलिए म्यूज़िक की इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट शो की, जिसका इंतज़ार आप हर रोज़ सुबह करते हैं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। तो गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, कैसे हैं आप? और इस प्रोग्राम में म्यूजिक की दुनिया के साथ साथ चलते चलते और क्या कुछ खास हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक अच्छा सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूं आपके लिए, और आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हो, इसकी कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए। चलिए एक अच्छा सा सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, इसे सुनिएगा, एंजॉय करिएगा, और एंजॉय ही करते रहिएगा जिंदगी में। एंजॉय करते रहिए, जिंदगी को जीते रहिए, क्योंकि ये जो पल है ना हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही खास, ये पल रुकते नहीं हैं, क्योंकि वक्त रुकता नहीं है। और समझदारी इसी में है कि वक्त के साथ साथ चलते रहें, खूबसूरत से पलों को बनने दें, मुलाकातें होने दें, खूबसूरत से एहसास पनपने दें। जी हाँ, सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ, तो कैसे हो रही है आपके दिन की शुरुआत? कैसे हो रही है आपके गुड मॉर्निंग? जल्दी से बताइए हमें। और ये गुड मॉर्निंग जो है ना, ये कहना किसी को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल होता है। और जब हम किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो हम उसकी सुबह को बहुत अच्छा कर देते हैं। अक्सर हम गुड मॉर्निंग इस्तेमाल करते हैं शब्द का, लेकिन हम सुप्रभात भी कह सकते हैं। हालांकि सुप्रभात बहुत ही कम लोग कहते हैं, लेकिन सुप्रभात कहें या गुड मॉर्निंग कहें, मतलब तो एक ही है। कुल मिला के दिन की शुरुआत जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और क्या कुछ खास अच्छा बना सकता है आज का दिन, ये मैं बताऊंगी ना आपको थोड़ी ही देर में। क्या क्या अपडेट्स हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल जो अभी हमारी शो को सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, लिसनर्स के लिए मैं बता दूं कि अगर आप भारी ट्रैफिक जैम का सामना कर रहे हैं तो कुछ दिनों तक तो अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह काम की शुरुआत हो चुकी है, सड़कों का निर्माण भी हो रहा है और इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर काम हो रहा है। तो दिल्ली NCR में ट्रैफिक की समस्याएं तो आम है, लेकिन फिर भी अगर आप जा रहे हैं कहीं पर तो इस बात को मानकर चलिए कि ट्रैफिक तो आपको मिलने ही वाला है। तो थोड़ा सा सावधान होकर आप जाइएगा। सावधान से मतलब थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर आप जाइए कि ट्रैफिक तो आपको मिलेगा ही, इसलिए अपना मूड बिल्कुल मत खराब करिए। और जो लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम को, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि खूबसूरत सा म्यूजिक जो है वो यहाँ आकाशवाणी रेनबो पर जारी रहने वाला है। बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर रही हूँ आपके लिए। जो इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं वो इस सॉन्ग को इंजॉय करते करते ट्रैफिक की समस्या से थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, या फिर कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो म्यूजिक की दुनिया तो है ही बहुत अलग। एंजॉय दिस ट्रैक और बने रहिए हमारे साथ।

0: रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ खास रहने वाला है ये मैं आपको बता देती हूँ। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में 29 मई को मुख्य रूप से मेगा कॉर्पोरेट फ्ली इवेंट और लाइव एंटरटेनमेंट शो आयोजित हो रहे हैं। और शहर के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं वो और क्या क्या रहने वाले हैं बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने जिक्र किया मेगा कॉर्पोरेट फ्ली का, यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं NIIT सेक्टर 34 हीरो अंडा चौक के पास है ये। सुबह 10 बजे से यहाँ पर इवेंट आयोजित किया जा रहा है जहाँ पर फैशन, ज्वेलरी, होम डेकोर और लाइफस्टाइल से जुड़े कई स्टॉल्स मौजूद रहेंगे। तो यानी कि जो भी इस वक्त चाह रहे हैं कि कुछ खास स्पेशल देखना, फैशन से जुड़ा हुआ, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ, घर के सामान से जुड़ा हुआ, अपने लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और जिन लोगों को म्यूज़िक का शौक है वो लाइव संगीत और कॉन्सर्ट शाम 9 बजे से शहर के विभिन्न जगह पर वो जा सकते हैं। यहाँ लाइव म्यूजिक और इंडी पॉप संगीत कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हो रहा है सेक्टर 29 में। और इसके अलावा जो और भी खास कार्यक्रम हैं दिल्ली एनसीआर में वहाँ आप जा सकते हैं। डिटेल्स और क्या क्या हैं ये शेयर मैं आपसे करूँगी, लेकिन सोचा कि फिलहाल ये आपको बता दूँ। और इसके अलावा अगर आप लाइव म्यूजिक और एंटरटेनमेंट को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं तो बांसुरी जब गाने लगे यानी कि कमानी ऑडिटोरियम में बॉलीवुड गानों की कहानी का एक जादुई शाम का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। और भी इसके अलावा बहुत कुछ खास रहने वाला है आज, और क्या क्या रहने वाला है ये भी मैं आपको बताऊँ, लेकिन उसके साथ साथ म्यूज़िक जो है वो हमारा रुकना नहीं चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी मैसेजेस जो हैं वो हमें यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूँ ये मैसेज इसलिए नहीं ले पाऊंगी क्योंकि ये शो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जो सॉन्ग्स आप सुनना चाह रहे हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, उसको इस प्रोग्राम में मैं शामिल ज़रूर करूँ। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ऑनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर। और अब वक्त धीमे धीमे लम्हा लम्हा आगे बढ़ता जा रहा है और इस वक्त के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त के साथ खूबसूरत से म्यूजिक के साथ छोड़ी जा रही हूँ आपको फाइनल ट्रैक। एंजॉय करिए, मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए, इसे सुनिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और आकाशवाणी रेनबो पर आप सब यूं ही बने रहिएगा। आपका प्यार, आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हमारे साथ बने रहिएगा और इंतज़ार करिएगा अगली मुलाकात जो होगी मेरी आपके साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: कल बारात अपने निवास स्थान से 6 बजे चलेगी, ये सबसे बड़ा झूठ है, बिकॉज 7 बजे तक तो मेरी बुआ तैयार होती है और फिर उसके बाद होता है महासंग्राम। वेल जनाब, जहां जहां जाओगे वहीं हमें पाओगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। एक बार फिर से आ चुका हूँ स्टूडियो में, दिल के तराने, गाने नए पुराने, और सज धज के रहना चाहिए।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

देखे थे जो सपने आज उनके पास हूँ, आंखों में चमक है, पहले थे आंसू, बाकी सब वही है, ज्यादा कुछ नहीं बदला। हाँ, पहले मैं आम था, बस आज थोड़ा खास हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड टाइम फॉर दिल के तराने, गाने नए पुराने और इसी के साथ क्लासिक सॉन्ग, ओल्ड क्लासिक सॉन्ग जिसका आप इंतजार करते हैं, फिल्म करण अर्जुन से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। आप ही मत जाइए,

Well, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। लेकिन इसके साथ अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखिए हीट वेव से बचने के लिए। और टाइम फॉर द ओल्ड क्लासिक सॉन्ग जो है मोहरा फिल्म से, पंकज उदास की आवाज में, और हर किसी का फेवरेट है।

एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। 102.6 FM दिल से दिल तक, और आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। एंड टाइम फॉर द ओल्ड क्लासिक सॉन्ग कुमार सानू की आवाज में।

Well, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, लेकिन लिखने के लिए एक नई कहानी आ चुकी है हिमानी वेस्टर्न म्यूजिक लेकर। यानी कि मेरा जाने का समय हो गया और मुझे पता है जब मैं जाता हूं तो आप कहते हो तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना। वेल जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो उर्फ आरजे गौतम इज साइनिंग आउट, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन BSF को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है।

इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किशोर कुमार एंड आशा भोसले फ्रॉम द 1958 फिल्म चलती का नाम गाड़ी. नाउ टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दिस फिल्म एंड डू यू रिमेंबर विच सीन लेट टू दिस सॉन्ग? वेल, आई हैव सीन दिस फिल्म सो मेनी टाइम्स, आई हैव लॉस्ट काउंट, बट एवरी सिंगल टाइम आई हैव बीन ऑन अ कंप्लीट लाफ राइट. So think about it and tell me which scene led to this song, and I'm gonna give you enough time to think because it's time right now for a break.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है. ये है जनगणना का अभियान. यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है. साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है. जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है. सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है. घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है. वे आपसे बात करके

0: उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: Welcome back, and I have M. Rajkumar here. He says, sorry, I haven't watched this movie, but will definitely do. And there is Sita, and she says, Kishore Kumar and Madhubala are on a beach, and he falls. And I also have this message from Vikram Singh from Panchkula, and he says, Kishore Kumar fell down. That's what led to this song. Okay, great guess, but the question here is, what made him fall? What was he doing? All right, I will come to your messages later. And right now it's time to put out another great track. And well, here is

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है।

0: गई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Time now to put out another Hindi track on the show, and this is Asha Bhosle once again. And well, this is one track you will definitely sing along.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: That was a popular folk style song, and from the 1966 film Teesri Kasam. This was Asha Bhosle once again, lyrics by Shailendra and music by Shankar Jaikishan.
1: Namaskar, ye Akashvani hai. 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर विश्वभर में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के वास्ते संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत बहादुर सैनिकों की सराहना की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में मामूली तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 352 अंक बढ़कर 76,220 जबकि निफ्टी लगभग 100 अंक की वृद्धि के साथ 24,002 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मेहरबान कदरदान पहलवान हो जाइए तैयार बॉलीवुड ट्रेल्स के लिए।
2: बॉलीवुड की चटपटी गपशप, सिनेमा का निराला संसार लेकर आ गया आपका दोस्त एसआर। संतोष राव के साथ सुनिए बॉलीवुड ट्रेल्स।
3: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स।

जी हाँ, यह है बॉलीवुड ट्रेल, जिसमें हम बातें करते हैं ढेर सारी बॉलीवुड से जुड़ी हुई। तो आज भी हम बहुत ढेर सारी खबरें लेकर आए हैं आप सबके लिए। और हाँ, हमेशा की तरह एक सवाल भी है जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और बॉलीवुड सरताज वही बनता है जो देता है सबसे पहले सही जवाब। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे घंटे, मतलब 12 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर। फिलहाल अभी आपको एक प्यारा सा गीत सुनाने जा रहा हूँ, पहले आनंद लीजिए इस गीत का और उसके बाद बताऊंगा वो सवाल जो बना सकता है आपको आज का हमारा बॉलीवुड सरताज।

जी हाँ दोस्तों, जब से रणवीर सिंह को बॉलीवुड में 3 साल के लिए बैन किया गया है, तब से कई सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं बॉलीवुड में, जिसकी वजह से कई लोग, जी हाँ कई लोग, मेरा बॉलीवुड तेरा बॉलीवुड जैसे सवालों में आपस में ही उलझ कर रह गए हैं। खैर हमको क्या, अच्छी फिल्म जिसकी भी आएगी हम देखेंगे, है ना। फिलहाल आप तैयार हो जाइए आज के उस सवाल के लिए जो आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज। आपको एक फिल्म का डायलॉग सुनाने जा रहा हूँ, डायलॉग नहीं गीत सुनाने जा रहा हूँ। पहले आप इसको सुनिए, फिर आपसे पूछूंगा सवाल। जी हाँ, एक गीत का थोड़ा सा मुखड़ा सुनाऊंगा आपको, पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद उसी गीत से संबंधित एक सवाल पूछूंगा। तो गौर से सुनिए ये गीत।

दोस्तों आपने सुना ये गीत और इसी गीत में था अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का एक प्यारा सा सीन है। जी हाँ, आपको बताना है कार्तिक द्वारा गाए और एआर रहमान द्वारा म्यूजिक कंपोज किए गए इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है, यानी किस फिल्म का ये गीत हमने जो अभी आपको सुनाया। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, आपको बताना है उस फिल्म का नाम जिस गीत को हमने अभी अभी आपको सुनाया, बहने दो मुझे बहने दो। अगर आपको फिल्म का नाम पता है तो बताइए 9868107070 पर। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको बताना है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसका सबसे पहले सही जवाब आएगा ना वो बन जाएगा आज का बॉलीवुड सरताज, और उसको मौका मिलेगा बिल्कुल लाइव हमसे बात करने का आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। फिलहाल अभी हम आपको उस फिल्म का गीत सुनाने जा रहे हैं जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का प्यार परवान चढ़ा था। जी हाँ, कहते हैं कि 2006 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान और गुरु की फिल्मों की शूटिंग के समय ही उनकी दोस्ती गहरे रिश्ते में बदल गई थी। इसके बाद मणि रत्नम की फिल्म गुरु 2007 के प्रीमियर के दौरान, जी हां प्रीमियर के दौरान, न्यूयॉर्क में अभिषेक ने ऐश्वर्या राय को प्रपोज किया और उसी साल अप्रैल में दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो आइए फिल्म गुरु का वो गीत सुनाते हैं जिसको शूट करते वक्त, जी हां गौर से सुनिएगा, जिसको शूट करते वक्त दोनों की नजदीकियों ने ही अपने अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनी थी और फिर दोनों ने साथ साथ ये गुनगुनाया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला। आगे छोड़िए, मैं भी ना दूसरों की कहानी में जॉनी जॉनी यस पापा पापा करने लगता हूं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक

0: सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। और दोस्तों यही हकीकत है हमारे और आपके बीच में कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इसीलिए बराबर हम आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, आकाशवाणी पे प्रोग्राम करते हैं और आप आकाशवाणी के सभी प्रोग्रामों का कहते हैं ना कि आप मनोरंजन लेते हैं, आनंद लेते हैं और हमें संदेश भेजते हैं। और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आपके आए हुए हैं जो हमने आज सवाल आपसे पूछा है, इसलिए दोबारा सवाल नहीं पूछूंगा, ढेर सारे आ गए। कोशिश करूंगा कि नाम भी ले लूं, अगर कोशिश करूंगा ठीक है। लेकिन बॉलीवुड सरताज कौन बना ये जानने के लिए आपको बराबर हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि हम थोड़ी देर में बॉलीवुड सरताज का अनाउंस करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज मई महीने का आखिरी शुक्रवार है। जी हाँ, आखिरी शुक्रवार है और आज बहुत बड़ा धमाल जो है ना वो होने जा रहा है बॉक्स ऑफिस पर। आज 14 फिल्में और सीरियल्स रिलीज हो रही हैं और इन 14 में से 9 फिल्में तो सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही हैं। जी हाँ, 9। और इन 9 फिल्मों के बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा। और अगर हमारी बात सुनकर आप गाने लगे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है तो आप वो फिल्म देखने का मन बना सकते हैं। चलिए पहली फिल्म की बात करते हैं। फिल्म का नाम है ऑब्सेस की और ये है कि एक्शन और सस्पेंस वाली फिल्म है जिसमें ईशा सिंह और पीटर विल्सन मुख्य भूमिका में है। इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी एक महिला के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और अचानक इस महिला की जिंदगी में कई घटनाएं ऐसी घटने लगती हैं, अजीब और गरीब वाली घटनाएं घटने लगती हैं और फिर क्या होता है बस फिल्म देखेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है द ब्रेड विनर। फैमिली ड्रामा वाली इस फिल्म में कहानी उस पतिदेव की है जो अपनी पत्नी के विदेश जाने पर अपने 3 बच्चों की देखभाल करता है। कितना मुश्किल है भाई बच्चों को पालना बिना पत्नी के, अगर ये जानना चाहते हैं तो बस यही कहानी है इस फिल्म की द ब्रेड विनर की। तीसरी फिल्म रिलीज हो रही है पैसेंजर। इस फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो एक शादीशुदा जोड़ा अपनी कार से कहीं जाते हैं और उनके सामने रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद इस जोड़े को ऐसा लगता है कि कोई तो है जो इनका पीछा कर रहा है। क्या वो उसी व्यक्ति की आत्मा है जिसका एक्सीडेंट हुआ था या कुछ और बात है, ये तो फिल्म देखने और खुद जानने की बात है और ये जान लीजिए आप भी फिल्म देखकर, है ना। अब अगर हम बात करें उस चौथी फिल्म की जिसने सिनेमा हॉल में दी है दस्तक तो वो है द ग्रेट ग्रांड सुपर हीरो। जी हाँ, द ग्रेट ग्रांड सुपर हीरो जिसमें जैकी श्रॉफ, प्रतीक बब्बर और भाग्यश्री मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और कहानी है एक बच्चे की जिसको पता चलता है कि उसके दादाजी, जी हाँ उसके दादाजी के पास है ना दुनिया को बचाने की जादुई ताकत है। जी हाँ, जादुई ताकत है। अब क्या है आइए आपको सुनाते हैं इस फिल्म के कुछ डायलॉग, शायद आपको समझ में आ जाए।
1: माँ क्या करती थी, जब मौका मिले तो पीछे नहीं हटना।
2: आप ऐसे टाइम पास करते रहो, मेरी भी रेपुटेशन बच जाएगी। दादा बहुत मार्केटिंग की है मैंने आपकी, दूर के ग्रह तक फेमस है दादा, वो दुनिया के इकलौते सुपर हीरो सुपर हीरो है।
3: अरे दीपू,

0: जरा इधर बाल्टी अंदर ले जा, कमर रही।
1: सुपर हीरो स्कूटर पे क्यों बैठ के आएगा, ये तो उड़ के आएगा ना।
2: लगता है लड़के आया है,
3: एलियन आ गया। दादाजी के हाथ पे ट्रेन फेंक के मारी उन्होंने।
0: इन्होंने मान लिया।
4: और राजू बोल रहा था तूने सामान फ्री में दे दिया था।
2: अब फ्री में हमारे लिए इतना कर रहे और मैं पैसे ले लूं।
1: एक एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तुम्हारी वो ट्रेन वाली खबर तो कहीं नहीं आई।
3: दोनों पागल बना रहे हैं।
2: अरे भाई सुनो, ये गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है।
1: कुछ स्टंट या सुपर हीरो जैसा कुछ करके दिखा सकते हो तो हमें लगे कि आप सच्चे सुपर हीरो हो।
0: फोटो है मेरे एलियन दोस्त के साथ।
3: जादू है ये, पूरी दुनिया ने देख रखी है फिल्म।
5: पैरों में है चप्पल पुरानी।
3: आपको इंजेक्शन से दर्द होता है, ऊंचाई से डरते हो, फिर आप कहते हो कि आप सुपर हीरो।
6: एलियन आएगा तो मैं दिखा दूंगा।
3: एलियन कभी आने नहीं वाले।
6: आएंगे,
0: मेरा मन कहता है आएंगे।
3: वो एलियन है करण अर्जुन नहीं जो आएंगे।
7: आपकी तारीफ। हम एलियंस हैं, दूसरी ग्रह से आए।
8: शादी वादी में आए किसी के?
7: नो, धरती पे अटैक होने वाला है।
3: दादा यार जगाओ अपनी पावर को।
9: दादा जगा तेरी पावर, जगा।
5: खलनायकों की तो
3: तोता उड़,
2: मैना
3: उड़, सुपर हीरो

0: बस एक बात का ध्यान रखना, बात बिगड़े पहला अटैक आप करना, तभी पावर आएगी।
1: और पावर नहीं आए तो
0: पॉइंट।
1: मायसेल्फ जगदीश, आई एम अ सुपर हीरो।
2: तो दोस्तों डायलॉग सुना आपने द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो फिल्म का। अब सोचना आपका काम है कि फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। डायलॉग तो हमने आपको सुना दिया, वैसे डायलॉग तो मजेदार है ना, बच्चे की भी और जैकी श्रॉफ की भी। वैसे जैकी श्रॉफ की बात हो रही है तो चलिए इससे पहले कि अगली फिल्म रजनी की बात हम आपको बताएं, सुन लेते हैं फिल्म हीरो का वो गीत जो फिल्माया गया था जैकी श्रॉफ पर, और इसी फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

0: जी हाँ दोस्तों, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं हैं। और यही कहानी कुछ ऐसी ही है आने अगली फिल्म के बारे में जो हम बताने आपको जा रहे हैं, रजनी की बारात, जिसने दस्तक दी है आज सिनेमा हॉल में। इस फिल्म की कहानी है कि इस फिल्म की हीरोइन एक स्वाभिमानी लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड अपने पिता की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी को तैयार हो जाता है, इसको छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये स्वाभिमानी लड़की घुटने टेकने की बजाय अपने तकदीर का फैसला खुद बनाने का फैसला करती है। अब क्या होता है ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म देखने से पहले आपको इस फिल्म के डायलॉग सुना देता हूँ, गौर से सुनिए।
1: इतनी में बारात घर आवे के योग तो है ही नहीं।
2: ठीक से देखिए ना। हाँ तो धूमधाम से शादी करेंगे है? अब बड़का होटल में बारात आएगा, घर में क्यों आएगा? क्यों, सही कह रहे हैं ना, हमारी रजनी लाखों में एक है, उसके लिए बेस्ट लड़का ढूंढेंगे।
3: माँ हमारा शादी का सपना बोल रही है।
4: पापा हम रजनी से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं।
5: हम तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स किए हैं।
6: ये तो कांडे हो गया साला।
3: हमसे मन भर गया ना तो अब लगे राधा के पीछे डोलने।
7: एक बार जो चीज हम पसंद कर लिए ना वो हमारी हो जाती है, और रजन हमें बहुत पसंद है।
5: रजन का भला बुरा किसमें है वो रजन का बाप ही तय करेगा।
3: हमारा और रजन के बीच में पड़ने का कोई जरूरत नहीं है।
5: दिल से नहीं दिमाग से काम लो बेटा,
4: तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
3: पैसा या प्यार?
4: प्यार
3: प्यार,
8: यहाँ तो दूधों को जोड़ा है।
9: अरे तुम किसके साथ हो
10: भाई? किसी के साथ आना जरूरी है क्या जी?

0: ना इसको मिठाई की दुकान को जाने दीजिए।
1: अच्छा सुनो, हमारे पास एक प्लान है तुम्हारे लिए,
2: मगर इस बात का अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
3: रजनी बताई नहीं आप लोगों को?
2: क्या तमाशा की है पूरे शहर में?
4: दुनिया को ये कहानी पता नहीं चलेगा, वो दिखेगा जो तुम की हो।
5: बड़ा बड़ा रिश्ता वाली बात में ऐसा छोटा मोटा चीज तो होता रहता है ना।
6: ये मीडिया वाले को क्या जवाब देंगे हम?
2: हम जवाब देंगे तो आप लोगों का सारा उत्साह खत्म हो जाएगा।
4: बस खत्म।
7: यही था हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसके बाद जो हुआ
8: प्रेजेंट का एक पास्ट होता है, और हमारे पास्ट और प्रेजेंट की तारीख काटती गई है।

0: देखिए, अच्छी पत्नी और अच्छी घोड़ी किस्मत वाला को टाइम पे मिलता है।
1: घोड़ा चाहिए
2: फर्स्ट टाइम इन आवर करियर। अपन समाज में नया नया बदलाव तो होते ही रहना चाहिए ना।
3: दोस्तों, अब रजनी की डोली किस घर पहुंचती है घोड़े पर बैठकर, ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि एक और फिल्म है जिसने दी है दस्तक, और वो है कृष्ण और चिट्ठी। अरुण गोविल और दर्शील सफारी की ये फिल्म है, जो खेल से जुड़ी हुई फिल्म है। इसमें क्रिकेट के प्रति पागलपन और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास दर्शाया गया है। अब फिल्म के आखिर में क्या होता है ये तो फिल्म देख कर मालूम चलेगा। फिलहाल ड्रॉप आउट एक और फिल्म है जो आज रिलीज हुई है, जो युवाओं की महत्वाकांक्षा आशाओं और जीवन की कही अनकही चुनौतियों पर आधारित फिल्म है। इसके अलावा एक और फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है जीना दिल से। पहले इस फिल्म के डायलॉग सुन लीजिए, फिर इस फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा।
4: अत्रिगण कपिया ध्यान दे, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं बैंकॉक ट्रिप की हसीन यादों।

0: मुझे तो बैंकॉक वाली वीडियो में भी प्राची दिखाई दे रही है।
1: वो सच में ही प्राची है, इसने बैंकॉक वाली हार्ड ड्राइव कुरियर कर दी।
2: अगर तने भूल के भी कोई गलती कर दी ना तो मेरी गन को तेरे सर का पता।
3: दोस्तों इस ड्रामे से मतलब भरपूर ड्रामा इस फिल्म में है। 15 नए कलाकार, बिल्कुल नए कलाकार जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं बॉलीवुड में इस फिल्म के द्वारा। आज के यूथ को ध्यान में रखकर बनाई गई ये फिल्म अब दर्शकों को कितना पसंद आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों एक और फिल्म आज रिलीज हुई है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द जंगल। ये एक एनिमेटेड फिल्म है। अब आप खुद सोचिए कि AI के जमाने में अब कितने लोग इस एनिमेटेड फिल्म को देखने जाएंगे जो खुद 15 साल लग गए इस फिल्म को बनाने में। जी हाँ, 15 साल में तैयार हुई है ये बनकर। खैर अब आप स्वयं सोचिए, विचारिए और बनाइए प्लान इस वीकेंड में जाकर किसी एक फिल्म को देखने का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, एक और बहुत जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं आपके लिए, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स विद SR बोले तो संतोष राव।

जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के गलियारों से खबर आ रही है कि कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग विधाता 12 जून को रिलीज होगी। वैसे उनकी फिल्म इमरजेंसी सुपर फ्लॉप होने के बाद लगभग 1.5 साल बाद आ रही है उनकी ये फिल्म, लेकिन डर के साथ एक उम्मीद भी है कंगना को कि उनकी ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि इमरजेंसी फ्लॉप होने के बाद कंगना का घर बिकने पर आ गया था। अगर उनकी ये फिल्म भारत भाग विधाता भी लोगों ने नकार दी तब क्या, देखना बहुत दिलचस्प होगा। खैर, अब दर्शकों को कितनी पसंद आती है ये तो 12 जून को पता चलेगा। बहरहाल एक और खबर आ रही है कि बॉलीवुड के ओरिजिनल खलनायक संजय दत्त अपनी आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल खलनायक रिटर्न्स लाना चाहते हैं, लेकिन मेकर्स के सामने इसके डायरेक्टर को लेकर एक संकट है ना, बहुत बड़ा वाला संकट खड़ा हो गया। 1993 की फिल्म खलनायक को डायरेक्ट किया था पहले सुभाष घई ने, लेकिन सुभाष घई ने इस फिल्म को अब डायरेक्ट करने से मना कर दिया है। उसके बाद मेकर्स ने बात की एक और दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी से, और अब सुनने में आ रहा है कि राजकुमार संतोषी जी ने भी डायरेक्ट करने से मना कर दिया है। शायद धुरंधर का असर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। खैर, अब कौन होगा इस खलनायक रिटर्न्स फिल्म का डायरेक्टर, ये जानने के लिए रखिए संतोष के साथ संतोष, क्योंकि अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं खलनायक फिल्म का, ये गीत आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप गौर से सुनिए, बहुत कम सुनाई देता है, और क्या पता ये गीत सुनते सुनते, इस गीत के बोल सुनते सुनते कोई डायरेक्टर सामने आ जाए या कोई और लोग सामने आ जाए इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बहाने, और भर दें वो हामी कि हाँ हम इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड का हर शख्स ये जानता है कि संजय दत्त से पंगा लिया तो ये सुनना पड़ सकता है।

जी हाँ दोस्तों, वैसे बॉलीवुड में बहुत ढेर सारे खलनायक एक दूसरे की फिल्मों की है ना जो लीक कर देते हैं फोटोग्राफ्स, मतलब रिलीज होने से पहले ही या तो फिल्म लीक हो जाती है या फिर कुछ ऐसी चीजें लीक हो जाती हैं फिल्म से जुड़ी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी लीक हो गई है अल्फा फिल्म की तस्वीरें, मच गया है बवाल बॉलीवुड में और तलाश रहे हैं लोग कि उस खलनायक को कि आखिर ये किसने हरकत की है। हम आपको बता दें कि फिल्म अल्फा में अभिनेता बॉबी देओल भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। वैसे इस फिल्म में आलिया भट्ट है।

0: नायक हूँ।
1: जी हाँ दोस्तों, करण जौहर के लिए भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि तू नायक नहीं खलनायक है। क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई लोगों को, जी हाँ बड़ी बड़ी हस्तियों को उन्होंने अपने इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया। अब क्यों किया है ये तो बस रहस्य कुछ दिनों बाद खुलेगा, क्योंकि बॉलीवुड में हर घटने के पीछे जो होता है ना, हर घटना जो घटती है उसके पीछे एक ना एक रीजन जरूर होता है, बेमतलब की नहीं होता है। बहरहाल अब हमारे साथ आज के बॉलीवुड सरताज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, और वो हैं खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान। आई उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग प्रवीण, क्या बात है, लगातार बन रहे हो आप बॉलीवुड सरताज आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हैं।
2: थैंक यू सर।
1: अच्छा क्या करते हो आप प्रवीण?
2: सर अभी मैं रिक्रूटमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करता हूं और रिजल्ट का वेट कर रहा हूं।
1: ओके, तो साथ में आप आकाशवाणी एफएम रेनबो बराबर सुनते रहते हो?
2: हाँ सर।
1: अच्छा हमने जो गीत सुनाया था, ये वाला गीत है ना, बहने दो जरा मुझे बहने दो, किस फिल्म का?
2: रावण
1: फिल्म का। ये देखी है आपने, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की?
2: नहीं सर मैंने नहीं देखी।
1: अच्छा तो गीत सुना है आपने?
2: हाँ खूब सुना है
1: गीत। अच्छा गीत सुना या गूगल कर लिया था तुरंत आपने, पूछ लिया?
2: नहीं नहीं गीत तो सुना है मैंने।
1: अच्छा सुना है। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप जानकारी भी रखते हैं और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ईश्वर सफलता दे। आप बराबर सुनते रहिए, और ये मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो छठवीं या सातवीं बार आप बॉलीवुड सरताज बने हो, है ना?
2: हाँ सिक्स्थ टाइम।
1: सिक्स्थ टाइम, क्या बात है। वैसे भैया दूसरों को भी मौका दे दिया करो है?
2: सर ये तो सर आप पे डिपेंड है सर, आप फर्स्ट जो मैसेज करता है उससे बनाए या फिर आपके मन पसंद बनाए?
1: नहीं देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि जो सबसे पहले बने। सबसे पहले जो जवाब दिया था वो अनुभव मित्तल ने दिया था, हमने उनसे संपर्क साधा लेकिन उनका फोन नहीं लगा, कहाँ से हैं ये भी नहीं लिखा था। बहरहाल बहुत अच्छा लगा प्रवीण, आप दूसरे नंबर पर थे इसलिए आप आज फिर से बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण हमसे बातचीत करने के लिए।
2: ओके
1: तो दोस्तों ये थे प्रवीण चौहान खरगोन से जो बॉलीवुड सरताज बने, और भी हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, जैसे दिनेश भंडारी ने नेपाल से दिया है, पंकज ने अमरावती से दिया है, रवि ने दिया है मेरठ से, प्रकाश राम प्रकाश नागौर राजस्थान से, अर्चना राजपूत मुखर्जी नगर से, सोनू गुप्ता कमला नगर दिल्ली से, शंकर पंजम गोवा से, पिंकी बहन गुजरात से, लातूर से, दिगंबर मनोहर, और भी ढेर सारे हैं लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन 1:05 पर आपके साथ जुड़ेगा मेरा वाला सॉन्ग लेकर, आप उसमें अपनी फरमाइश के गीत हमसे फरमाइश कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं मैसेज के द्वारा 9868107070 पर, और हम आपकी पसंद के गीत प्ले करेंगे। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की

0: आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600

हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर

के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदित सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी

0: Please allow me to take the last of the breaks for this hour and I'll see you on the other side.
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर

0: उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरु मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरु मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर

0: अग्रसर सोसाइटी।
1: नमस्कार, मैं हूँ आशा अग्रवाल। आज 29 मई 2026 शुक्रवार के इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है सशक्त महिलाएं, स्वस्थ जीवन, रोकथाम और जांच, जीवन रक्षक। दोस्तों, जब हम सशक्त महिला शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली आत्मनिर्भर महिला की तस्वीर आती है, लेकिन सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है स्वास्थ्य। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो कोई भी अपना सपना पूरा करना मुश्किल हो जाता है। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, और यह बात महिलाओं पर सबसे ज्यादा लागू होती है। क्यों जरूरी है महिलाओं के स्वास्थ्य पर खास ध्यान? हमारे समाज में महिलाएं पूरे परिवार की धुरी होती हैं। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, पति को देख ऑफिस भेजना, उनका टिफिन बनाना, अपने सास ससुर की देखभाल करना, ये सब काम महिलाएं बिना शिकायत के करती हैं। इसी भाग दौड़ में वे अक्सर अपनी भूख, अपनी प्यास, थकान, अपने दर्द को नज़रअंदाज कर देती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार भारत में 15 से 49 साल की उम्र की 57% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। हर 8 में से एक महिला को जीवन में कभी ना कभी स्तन कैंसर का खतरा होता है। सर्वाइकल कैंसर से हर साल हजारों महिलाएं अपनी जान गंवाती हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा रोका जा सकने वाला कैंसर है। ये आंकड़े डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी का डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड मंडी हाउस पर है, जहां पर नियमित जांच होती है। यहां पर कोई भी जाकर अपनी जांच करवा सकता है। रोकथाम, बीमारी आने से पहले बचाओ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। आइए देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, पोषण। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आयरन और कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, खासकर माहवारी, गर्भावस्था के और मेनोपोज के दौरान। अपनी थाली में रंग भरिए, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, मौसम के फल जैसे अमरूद, आंवला, संतरा, दालें, राजमा, चना और गुड़, तिल, बाजरा जैसे पारंपरिक अनाज लेना चाहिए। चाय, कॉफी खाना खाने के तुरंत बाद ना लें, क्योंकि ये आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। दूसरा कदम, शारीरिक सक्रियता। घर का काम एक्सरसाइज नहीं है, रोज 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। सुबह शाम तेज कदमों से टहलना, योग करना, प्राणायाम करना, या फिर कुर्सी पर बैठे बैठे ही गर्दन और कंधे के व्यायाम करने चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। इससे वजन नियंत्रण में रहता है, शुगर और बीपी की समस्या कम होती है और मन भी प्रसन्न रहता है। तीसरा कदम, मानसिक स्वास्थ्य। तनाव महिलाओं का साइलेंट किलर है। परिवार की चिंता, काम का दबाव, रिश्तों की उलझने सब मन पर बोझ डालती हैं। अपने लिए दिन में 15 मिनट निकालिए, गहरी सांस लीजिए, भजन सुनिए, बागवानी कीजिए या किसी सहेली से दिल की बात कहिए। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, समझदारी है, और आजकल तो टेलीमानसिक हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है, ताकि लोग अपने जानने वालों से मदद ना कर मांग कर किसी और से ही बातें कर लें। चौथा कदम, हानिकारक आदतों से दूरी। तंबाकू, गुटखा, शराब, इनका सेवन महिलाओं में भी बढ़ रहा है। ये न सिर्फ कैंसर का कारण बनते हैं, बल्कि गर्भावस्था में बच्चे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर छोड़ने में मुश्किल हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लें। इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से वॉलंटियर अवेयरनेस टॉक के लिए स्कूलों, कॉलेजों, आंगनवाड़ी और ऑफिस में जाते हैं और उन्हें बच्चों और महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि शराब, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है और इनके प्रयोग से बहुत से कैंसर होने का खतरा बना रहता है। इस मुहिम में सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने का की जरूरत है। जांच समय पर पता चले तो जांच जान बची। कई बीमारियां चुपके से आती हैं, शुरुआत में कोई दर्द नहीं, कोई लक्षण नहीं, जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए नियमित जांच ही एकमात्र रास्ता है। कौन सी जांच कब कराएं? मैं इसे उम्र के साथ जांच कहती हूँ, आप इसे कैलेंडर में नोट कर लीजिए। उम्र, जरूरी जांच कितनी बार? महिलाओं को अपने पूरे शरीर की जांच साल में एक बार जरूर करवानी चाहिए। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को खुद स्तन की जांच हर महीने करनी चाहिए और बीपी, शुगर, थायराइड, वजन, हीमोग्लोबिन साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए। 21 साल से ऊपर की महिलाओं को भी अपनी जांच साल में एक बार तो जरूर करवानी चाहिए। 30 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए मैमोग्राफी और पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर की जांच तीन साल में एक बार करवानी चाहिए। खुद से जांच कैसे करें? हर महीने माहवारी खत्म होने के 5-7 दिन बाद आईने के सामने खड़े होकर अपने स्तन की जांच करें। कोई गांठ, त्वचा में गड्ढा, निप्पल से स्त्राव या आकार में बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। शर्माइए मत, आपकी शर्म से ज्यादा आपकी जान की कीमत है। और अगर डॉक्टर कहते हैं तो अपनी सभी जांचें जल्दी से करवानी चाहिए। सरकारी सुविधाएं, जांच महंगी है ये सोचकर मार डालिए। आपके नज़दीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ये जांचें मुफ्त होती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग बिल्कुल मुफ्त है। आशा दीदी से संपर्क करें और वे आपको पूरी जानकारी और साथ देंगी। HPV वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे कारगर तरीका है। अपनी बेटियों को यह सुरक्षा जरूर दिलाएं। सामाजिक बाधाएं और हमारा रोल, अक्सर महिलाएं इसलिए जांच नहीं कराती क्योंकि लोग कहें क्या कहेंगे, घर का काम कौन करेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। इन बहानों को तोड़ना होगा। परिवार में पुरुषों से मेरी अपील है, अपनी माँ, पत्नी, बहन, बेटी को साल में एक दिन हेल्थ डे के रूप में दे। उस दिन की जिम्मेदारी आप लें और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं। यह सबसे बड़ा उपहार होगा। स्कूल, कॉलेज, महिला मंडल, किटी पार्टी, हर जगह स्वास्थ्य की बात कीजिए। जब एक महिला दूसरी महिला को बताती है तो बात दिल तक पहुंचती है। आप स्वास्थ्य सखी बनिए। अपने

मोहल्ले की 5 महिलाओं की जिम्मेदारी लीजिए कि वे सालाना जांच कराएं। आज से एक नया संकल्प। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, हवाई जहाज में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पहले खुद मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप

0: मैं हर साल अपनी पूरी बॉडी चेकअप कराऊंगी, मैं रोकथाम को अपनी आदत बनाऊंगी, मैं अपने जैसी हर महिला को सशक्त और स्वस्थ बनने के लिए प्रेरित करूंगी। क्योंकि जब महिला स्वस्थ होती है तो घर मुस्कुराता है, जब घर मुस्कुराता है तो समाज खिल उठता है, और जब समाज खिलता है तो देश सशक्त बनता है। स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए और दूसरों को भी बनाइए। मैं हूँ आशा अग्रवाल, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की वार्ता पंचशील फाउंडेशन की तरफ से प्रस्तुत की गई है, धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: जी हाँ दोस्तों, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से आप सुनते हैं हमारा प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें हम आपकी पसंद के गीत प्ले करते हैं। जैसे कि अब हम पहली पसंद प्ले करने जा रहे हैं अजीत कुमार समस्तीपुर बिहार से और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग। अगर आप भी इनकी तरह अपनी फरमाइश हमें भेजना चाहते हैं तो 9868107070 पर आप अपनी पसंद के गीत हमें भेज सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप गीत के बोल लिखिए और फिल्म का नाम लिखिए, अपने नाम शहर के नाम के साथ लिख भेजिए 9868107070 पर। और याद रखिए प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग चलेगा ठीक 2 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर।

दोस्तों, फिल्म तेरे नाम का गीत सुनना चाहती थी सोनिया विहार से, दिल्ली से कंचन। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, तो आप हमें भेज सकते हैं 9868107070 पर अपना फरमाइश का, जो भी गीत आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का वो आप हमें भेजिए 9868107070 पर। और याद रखिए, जब आप इस प्रोग्राम में अपने मैसेज भेजते हैं तो अपना नाम लिखना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि बहुत से हमारे लिसनर्स हैं जो अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनके नाम नहीं ले पाते हैं। तो याद रखिए, आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, अपने नाम, गीत के साथ, गीत के बोल, फिल्म का नाम, और भेज दीजिए 9868107070। क्योंकि याद रखिए, जब आपका नाम पुकारा जाएगा और आपकी फरमाइश के गीत बजेंगे, तब आप हमेशा यही कहेंगे, भांगड़ा पाले। और दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म का इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है हर किरण सिंह से, फुरक्काबाद यूपी से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुनते हैं मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070 पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं। जैसे अभी गीत हम प्ले करने जा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी का, सुनीता शर्मा ने इसकी फरमाइश हमें भेजी है शालीमार बाग दिल्ली से, और कस्बा गन्नौर यूपी से हमें भेजा है पूरे अब्बास परिवार ने।

जी हाँ दोस्तों, हम भी दो बजे तक कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें हम आपकी फरमाइशों को पूरा करते हैं। आप हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेजते हैं, मैसेज करके भेजते हैं 9868107070 पर। अगली फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं रोहिणी नई दिल्ली से मैना की। ये सुनना चाहती है, मैंने प्यार किया फिल्म से आजा शाम होने आई, और यूपी रामपुर से मंडवा के हसनपुर गाँव से मनमोहन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी पसंद के गीत हमें लिखकर भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं। और अब जो गीत हम प्ले करने जा रहे हैं वो है 1993 की फिल्म बेटा, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है हर्षवर्धन AK पांडे, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से, और ये सुनना चाहते हैं कोयल सी तेरी।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें हम आपकी पसंद के गीत प्ले करते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी पसंद के गीत भेजते हैं। और अगला गीत जो हम प्ले करने जा रहे हैं वो भोपाल से हमारे पास मैसेज आया, राम बाबू मालवीय का, मनीषा मालवीय का, ये सुनना चाहते हैं चाहत फिल्म का गीत। और साथ ही साथ उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल भी सुनना चाहती हैं यही गीत फिल्म चाहत का।
1: तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

और दोस्तों फिल्म हीरा पन्ना के इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी सोनीपत से दिग्दर्शन और कविता ने, अंकित देवघर झारखंड से, दिल्ली से रघुवीर, नगर दिल्ली से दीपू और अर्जुन और नम्रता घोष, नौगांव छतरपुर से।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। और बज चुके हैं 1:50 से ज्यादा हो गए हैं, मतलब सिर्फ हमारे पास अब बचे हुए हैं 8 मिनट। तो दो गीत और हम फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं, और जो ये फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है देहरादून से वर्षा ने, मुकेश कुमार ने हमें भेजा है अहमदाबाद से, सावल कुमार ने, पूनम दिल्ली से, मयंक नोएडा से, और उत्तराखंड से कविता।

जी हाँ दोस्तों, हम भी देखेंगे कि जिन लोगों की फरमाइश आज पूरी नहीं हुई है, कल वो फरमाइश करते हैं कि नहीं करते हैं या नाराज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लिसनर्स हैं वो नाराज हो जाते हैं जब उनकी फरमाइश नहीं पूरी होती है या उनके हम नाम नहीं लेते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम बराबर आपके साथ रहें आपसे, क्योंकि हम भी प्यार करते हैं, आपका साथ हमें अच्छा लगता है और हमारा साथ आपको अच्छा लगता है ना। बहरहाल हमारा साथ यहीं तक, क्योंकि अब हम आपसे लेते हैं विदा। फिर कभी मुलाकात होगी इसी चैनल पर, है ना। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। और ये आखिरी गीत मेरा वाला सॉन्ग का, और इसे भेजा है गांव विधिपुर कचौरा हाथरस से, और भेजने वाले हैं राजुद्दीन खान, राकेश कुमार, भीकम सिंह, राविया खान।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूं आशियाना प्रोग्राम में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में सेंसेक्स जनगणना 2027 के महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। सेल्फ इन्यूमरेशन के बाद जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जनगणना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो जनगणना सेंसस केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है, बल्कि देश और देशवासियों की प्रगति, उन्नति, विकास के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए और नीतियों के निर्माण की आधारशिला है जनगणना। ये आंकड़े देश की वर्तमान और भविष्य की दिशा दशा बदलने में सहायक होते हैं और विकास की नई राह तय करने का मौका देते हैं। आपको और हम सभी को जानकर गर्व महसूस होगा कि ये जनगणना विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है और हम सभी इसका अहम हिस्सा है। जनगणना 2027 के इस महाअभियान से संबंधित कई सारे

0: सवाल हमारे जहन में आते हैं और आज सेंसस 2027 से संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आकाशवाणी रेनबो पर। आज का विषय जनगणना 2027 और विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि। हमारे साथ हैं बाहरी उत्तरी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर मिस विशाखा यादव। IAS ऑफिसर आप हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
1: थैंक यू
0: जी। इसी के साथ हमारे साथ हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस अनु। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: जी। मैम सबसे पहले बात की जाए सेंसस की तो जनगणना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 146 करोड़ भारतीय हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हमारा देश, और ऐसे में जनगणना कितनी इम्पॉर्टेंट है, सब लोगों को इस अभियान में किस तरीके से जुड़ना चाहिए, क्यों जुड़ना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि सेंसस एक्ट 1948 क्यों बनाया गया, क्यों इसे इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि इसके लिए एक एक्ट की भी स्थापना की गई। जी जी जी जी विशाल
1: नमस्कार। सेंसस जैसा कि आपने बोला एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जनगणना की। सेंसस एक्ट 1948 के तहत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये हमको एम्पावर करती है, डायरेक्टरेट सेंसस, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स, चार्ज ऑफिसर्स, अन्यथा ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करके उनको एम्पावर करती है कि वो घर घर जाके हमारा जो हेड काउंट है, पॉपुलेशन का नंबर है, उनका एन्यूमरेशन कर सके, उनकी गिनती कर सके
0: जी।
1: ये गिनती क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको देश में कोई भी पॉलिसी प्लानिंग करनी है, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करनी है या कोई स्कीम बनानी है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी डेमोग्राफी कैसी है, आपके लोग कैसे हैं, किस किस सब टाइप में और किस किस तरह की सुविधा और रिसोर्सेज में अवेलेबल हैं। तो इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए सेंसस एक्ट लाया गया और इसी के तहत 2026 और 27 का हमारा सेंसस हो रहा है।
0: जी बिल्कुल। मैम अनु आपसे जानना चाहेंगे, एक एक्ट पूरा डेडिकेटेड है इस अभियान में, तो क्या कोई सज़ा का प्रावधान भी है, किसी तरीके का कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है अगर कोई जो जनगणना है उस पर अपने जो डेटा है, अपनी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देता है उस मुद्दे
2: पर? बिल्कुल, इसमें सज़ा का प्रावधान है। हमारा सेंसस एक्ट 1948 में सेक्शन 11 है जिसमें पेनल्टीज डिफाइन की गई हैं। कोई भी उत्तरदाता अगर आंसर देने से रिफ्यूज़ करता है या फिर जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो इसमें सज़ा का प्रावधान रखा गया है। इसमें 1,000 रुपये का फाइन या 3,000 की 3 साल की इम्प्रिजनमेंट, कोई भी इसमें सजा लगाई जा सकती है,
0: कारागार की सजा,
2: 3 साल की कारागार की सजा।
0: जी बिल्कुल, बहुत अहम मुद्दा सेंसस 2027 हमारे पास, जनगणना 2027, कई सारे सवाल हैं जिनका आंसर आप चाहते हैं। अगर आपके पास सवाल हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। जनगणना से संबंधित कोई भी सवाल आपके जहन पर है, कोई शंका है, उसका समाधान चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर।

0: हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारा देश भारत 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरीज, भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना डिजिटल। जी हां, पूरी की पूरी जनगणना डिजिटल है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना का रूप ले चुकी है। साथ ही साथ जनगणना अधिकारियों को सही जानकारी प्रोवाइड करवाते हुए सभी जन अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं सेंसस 2027 में। और साथ ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य के साथ आकाशवाणी आपके साथ, आकाशवाणी रेनबो पर आज हम विषय लेकर आए हैं जनगणना सेंसस 2027। हमारे साथ हैं श्री श्रवण बगारिया, आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर साउथ दक्षिण पूर्व दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
0: इसी के साथ हमारे साथ हैं बाहरी उत्तरी बाहरी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर मिस विशाखा यादव, आईएएस ऑफिसर, और साथ ही हमारे साथ हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑफ ऑपरेशंस की से मिस अनु, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आप। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है वो लिखते हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ टेनेंट्स हैं जो किराएदार हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जो काउंटिंग है, गणना है, वो होम टाउन में हो चुकी है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
1: देखिए, सेंसस एक्ट में सभी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। जिन लोगों का, किराएदारों का, अपने गृह जिले में या कहीं पर उनकी गणना ऑलरेडी हो चुकी है, तो उनको पुनः गणना कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अभी जो है ये दो फेजेज में हो रहा है सेंसस। फर्स्ट फेज जो है हाउस लिस्टिंग का है, तो पहले फेज में तो वैसे ही घरों की गणना होनी है, और जो दूसरा फेज जब फरवरी 2027 में होगा, उस समय इन्यूमरेशन कहलाती है, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, तो उस समय होनी है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। और अगर परिवार के सदस्यों ने या खुद ने ही चल के अपना कहीं एक जगह पे इन्होंने इन्यूमरेशन करा लिया है, तो दूसरी जगह इन्यूमरेशन

0: कराने की आवश्यकता नहीं।
1: जी बिल्कुल सर, एक और मैसेज आया है, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट को बिलोंग करता है, यूपी को बिलोंग करता है, उसके सारे गवर्नमेंट आईडीज जो है वो यूपी स्टेट के हैं, तो ऐसे में उसको अपनी गणना कहाँ पे करवानी चाहिए और किस तरीके से करवानी चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि क्या आधार कार्ड, वोटिंग अधिकार या डोमिसाइल में इसका कोई फर्क पड़ेगा अगर वो दिल्ली में करवाते हैं तो?
0: देखिए, जो पहला सवाल है कि वो कहाँ पर गणना करवाएं, तो जहाँ पे वो नॉर्मली रेजिडेंट है, सामान्यतः रूप से जहाँ रहते हैं उस जगह पर अपनी गणना करवाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड आपका एक राज्य का है और आप दूसरे राज्य में रहते हैं तो जो है जहाँ का वोटर आईडी और आपका आधार है वहीं पे कराएं, ये कोई बाध्यता नहीं है। जो इसका प्रावधान है वो ये है कि जहाँ पे आप नॉर्मली रेजिडेंट हैं वहाँ पे आप करवाएं अपना इन्यूमरेशन, सेल्फ इन्यूमरेशन। और जो दूसरा सवाल है कि इससे उनके ऊपर कोई प्रभाव आएगा
1: डोमिसाइल में या वोटिंग अधिकार में,
0: या इस तरीके का कोई प्रभाव नहीं आएगा, ये टोटली कॉन्फिडेंशियल डेटा है। इसका पर्पस जो है दो ही हैं, एक तो हाउस लिस्टिंग का है और दूसरा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का है। इसका कहीं और जगह यूज नहीं किया जाएगा, ना इनको कहीं पर कोई परेशानी आएगी।
1: जी बिल्कुल। अनु मैम, आपसे जानना चाहेंगे, परिवार के मुखिया हेड ऑफ हाउस की बात इन्होंने लिखी है, वो लिखती हैं कि उनके फादर नहीं है, मम्मी हैं, दो छोटे भाई हैं, ऐसे में हेड ऑफ हाउस में किसका नाम लिखा जाएगा, ये जानना चाहती हैं।
2: देखिए, सेंसस में हमारी हेड ऑफ हाउसहोल्ड की परिभाषा होती है कि जो भी घर के डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है या मेजर डिसीजन मेकिंग करता है उसको हम हेड ऑफ हाउसहोल्ड काउंट करते हैं, चाहे वो घर का कोई एल्डेस्ट पर्सन हो, अर्निंग मेंबर हो या फीमेल भी हो सकती है
1: जी।
2: तो जो भी उनके घर में होगा इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए उसको वो हेड ऑफ हाउसहोल्ड अपना दिखा सकते हैं।
1: जी मैम। मैम, यहाँ पर एक और बात आती है, क्या जैसे जो लोग होते हैं कई बार अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसे में वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप आगे आओ, तो क्या बच्चों को भी हेड ऑफ हाउस बनाया जा सकता है?
2: जी, हेड ऑफ हाउसहोल्ड बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो हेड ऑफ हाउसहोल्ड आप किसी को भी बना सकते हैं जो भी आपके मुख्य डिसीजन मेकिंग करते हैं घर में। तो एक तो है उत्तरदाता, आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तरदाता जी, उत्तरदाता आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, उस केस में आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और हेड ऑफ हाउसहोल्ड, जैसा कि मैंने परिभाषा आपको बताई है, कि जो घर के मेजर डिसीजन मेकिंग करता हो और डे टू डे एक्टिविटीज मैनेज करता हो।
1: जी बिल्कुल। विशाखा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, एक देवव्रत उत्तर प्रदेश से उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, उनका कहना है कि उनका 14 साल का बेटा है, वो उनके भाई के साथ दिल्ली में रहता है, पढ़ाई करता है, तो ऐसे में उसका इन्यूमरेशन कहाँ पे होगा, यूपी में वो अपने परिवार का सदस्य बनाकर उसको इन्यूमरेट करें, या फिर वो क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं, पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पर अपने भाई की फैमिली में उनको इन्यूमरेट किया जाएगा, तो ये जानना चाहते हैं।
3: सेंसस के अंतर्गत हम लोग जो भी इन्यूमरेशन करते हैं उसमें हम नॉर्मल रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंस में जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं दिल्ली में, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर काम के लिए हो, उनकी गिनती दिल्ली में ही होगी। तो ये बच्चा भी क्योंकि पढ़ाई के लिए यहाँ पर दिल्ली में रह रहा है, तो वो अपने चाचा या जो ताऊ हैं उनकी फैमिली में हेड काउंट अपना करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल। सर, एक क्वेश्चन आया है, वो लिखते हैं कि कुछ मेरे परिवार के सदस्य हैं जो घूमने के लिए दूसरे देश में गए हुए हैं, और एक पर्सन है जो वहीं पर रहते हैं, मतलब पिछले 2 साल से वहीं पर रह रहे हैं, तो क्या उनका इन्यूमरेशन यहाँ होगा या उनको स्किप किया जाएगा फैमिली से?
0: देखिए, उनका जिस समय इन्यूमरेशन करने आते हैं उस समय जरूरी नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य वहाँ मौजूद मिलें, जो वहाँ पर जिम्मेदार आदमी घर के हैं वहाँ पर वो उनका इन्यूमरेशन करा सकते हैं। तो जरूर जाएं, घूमने जाएं, आराम से जाएं।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पे एक मैसेज आया है, यूपी से मैसेज है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से। अंकित लिखते हैं, वो लिखते हैं कि वो रहते तो यूपी में है लेकिन गांव में उनका प्लॉट है, क्या उसका भी सेंसस किया जाएगा, उसका भी एड्रेस लिखवाना होगा?
0: देखिए, जो फर्स्ट फेज है हाउस लिस्टिंग का, उसमें हाउसेज की लिस्टिंग हो रही है, तो अगर प्लॉट के अंदर घर बना हुआ है तब तो उसके ऊपर सेंसस नंबर भी डलेगा और घर का उनका चिन्हीकरण भी होगा।
1: जी
0: जी।
1: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है वेस्ट बंगाल से है, वो लिखते हैं कि उनका जो गांव का घर है उसमें कोई नहीं रहता है, उसकी छत भी नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर है, दीवारें हैं, तो ऐसे में क्या उसे इस जनगणना में, हाउस लिस्टिंग की जनगणना में शामिल किया जाएगा?
0: देखिए जो

0: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ आशियाना प्रोग्राम और आशियाना प्रोग्राम में आज हम लेकर आए हैं विषय सेंसस 2027 जनगणना 2027। साथ ही तीन गेस्ट एमिनेंट गेस्ट मुख्य अतिथि हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद। हमारे साथ हैं दक्षिण पूर्व डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डॉक्टर श्रवण बगारिया, आईएएस ऑफिसर हैं आप। इसी के साथ बाहरी उत्तरी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर आईएएस मिस विशाखा यादव हमारे साथ हैं, और साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन दिल्ली की असिस्टेंट डायरेक्टर मिस अनु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और सीधा क्वेश्चंस की तरफ चला जाए तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। मैम अनु मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन है, जो लोग बेघर रहते हैं या फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, या जो लोग जो खाना बदोश होते हैं, जो एक जगह कुछ वक्त तक रहते हैं और उसके बाद दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, क्या उनको भी जनगणना में शामिल किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा?
1: जी, मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा अभी चल रहा है वो फर्स्ट फेज चल रहा है सेंसस का, जिसको हम हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस कहते हैं। तो जो लोग आप बता रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, इनको हम बेघर इनको माना जाता है, तो इनको हम फर्स्ट फेज में इंक्लूड नहीं करते हैं। इनकी गणना सेकेंड फेज, जो कि हमारी फरवरी 2027 में होगी, इसमें उनकी काउंटिंग की जाती है।
0: जी बिल्कुल। अमरोहा से एक मैसेज आया है अमित का, वो लिखते हैं, अनु मैम आपसे ही जानना चाहेंगे, वो लिखते हैं कि उनके दो घर हैं गांव में, एक में वो रहते हैं लेकिन दूसरा घर जो है उसकी दीवारें हैं लेकिन छत नहीं है और उसमें हम रहते भी नहीं हैं, तो क्या दोनों मकानों को लिस्ट करवाना ज़रूरी है और किस तरीके से करवाया जा सकता है?
1: जी, जिस घर में वो रहते हैं वो तो उसकी तो लिस्टिंग होगी। रही बात उनके गांव में जो घर है जिसकी छत नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूँगी, सेंसस में कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग का। हमारे सेंसस में उसी घर को एक बिल्डिंग माना जाता है जिसकी छत होती है, दीवारें ना हो भले ही लेकिन छत होनी चाहिए, पर जैसा कि आपने बताया उसकी छत नहीं है, तो उसकी गिनती हमारी फर्स्ट फेज में नहीं की जाएगी हाउस लिस्टिंग हाउसिंग सेंसस में।
0: जी बिल्कुल। मैम आपसे जानना चाहेंगे, विशाखा मैम एक क्वेश्चन आया है, वो लिखते हैं कि वो दिव्यांग हैं और दिव्यांग में जो लोग हैं वो उनको जनगणना में कैसे शामिल किया जाएगा और किस तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे और वो कैसे ये मतलब प्रूव करें और कैसे माने कि जो अधिकारी उनके घर आए हैं वो बिल्कुल सही हैं और वो सही जानकारी ही उनसे मांग रहे हैं।
2: दिव्यांगों के लिए भी हम लोगों ने सेंसस में एज डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हम लोगों ने असिस्टेंट्स के रूप में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, एन्यूमरेटर्स हैं, उनके साथ भेजा हुआ है। और कैसे वो पहचाने, उनकी सहायता के लिए कोई ना कोई अपना एक एन्यूमरेटर आईडी होता है, वो आईडी अपना बताएंगे ताकि उनको भी इस चीज़ का आश्वासन हो कि हमारे घर सही आदमी गया है। और उसी आईडी के बताने के बाद जब उन्हें पता होगा तो क्वेश्चंस उनके लिए जो पहले भी बताया गया 33 सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसमें उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या डेटा चाहिए होगा वो उसी के अंतर्गत उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन सहयोग के लिए डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हमने उनके लिए असिस्टेंस दिए हुए हैं, जिससे कि हम पीएच कैटेगरी या स्पेशली एबल कैटेगरीज का अलग से ध्यान रख सकें।
0: जी बिल्कुल। विशाखा मैम एक और क्वेश्चन आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लिखते हैं कि SIR और सेंसस दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के डेटा को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा, क्या कोई मिसयूज़ तो नहीं होगा, कैसे पता चले कि बिल्कुल सही जगह हमारा डेटा जा रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन सही जगह जा रही है और मिसयूज़ नहीं होगी?
2: सेंसस एक्ट के अंदर हम लोग लीगली बाध्य हैं और हमारे सिटीजन्स सुरक्षित हैं लीगली कि जो भी उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एन्यूमरेशन के लिए और डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ होगा और वो कहीं भी किसी तरीके से सरकार में या फिर थर्ड पार्टी के पास कहीं भी किसी तरह का मिसयूज़ और लीक का प्रोविजन या प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए तो इसमें लोगों को हम ये चाहेंगे कि उनको इस चीज़ में अवेयरनेस हो और इस चीज़ का आश्वासन हो कि डेटा कहीं भी मिसयूज़ नहीं होगा। इट इज़ ओनली द हेड काउंट, वी आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ द नंबर्स। दूसरी चीज़ जो SIR है, SIR एक डिफरेंट एक्टिविटी है जिसमें कि हम अपने इलेक्टर्स का डेटा चेक कर
0: जो
2: रहे
0: वोटिंग
2: हैं,
0: का अधिकार
2: वोटिंग
0: है,
2: का अधिकार
0: का।
2: जी, जी। जिसमें कि हमारी एक कट ऑफ डेट है 2002 इलेक्टोरल रोल की, जिससे कि हम ये देख पाएं कि अभी जो हमारे वोटर आईडीज हैं उसमें कहीं कोई डेड, शिफ्टेड या बोगस वोटर्स तो नहीं है। तो ये एक्टिविटी सेंसस से बिल्कुल अलग है। सेंसस की एक्टिविटी हमारी रिसोर्स प्लानिंग के लिए और स्कीम्स के लिए है, जबकि SIR की एक्टिविटी जो कि अभी एक महीने बाद दिल्ली में स्टार्ट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स के लिए है।
0: बिल्कुल, अभी सेंसस का महाअभियान चल रहा है, आप इसके लिए अपनी भागीदारी दे सकते हैं, देश के विकास में अपनी योगदान दे सकते हैं। सबसे बड़ा सेंसस विश्व का ये है, सेंसस 2027। पहला चरण हाउट लिस्टिंग का चल रहा है, 15 दिन की ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 11 अंकीय स्वगणना आईडी मिलता है। वो गणना आईडी देकर भी आप अपना इन्यूमरेशन करवा सकते हैं इन्यूमरेटर के द्वारा। इसके बारे में जानना चाहेंगे अनु मैम आपसे, अगर ये 11 अंकीय स्वगणना आईडी जो है बाय चांस किसी ने नहीं करवाया है तो क्या वो किस तरीके से जो अधिकारी आएंगे उनको अपना डेटा दे सकता है, और अगर जिन्होंने करवा दिया है उनको क्या फ़ायदा रहेगा इस सेल्फ इन्यूमरेशन से?
1: जी, मैं बताना चाहूँगी कि सेल्फ इन्यूमरेशन की विंडो जो MCD एरिया में थी वो 15 मई को ख़त्म हो चुकी है
0: जी।
1: तो जिन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं किया है उनके घर इन्यूमरेटर्स आएंगे। 16 मई से हमारी डोर टू डोर इन्यूमरेशन शुरू हो चुका है, 16 मई से 14 जून तक। तो आपके घर में जब इन्यूमरेटर आएगा तो आप उसको जानकारी प्रदान करें, जो 33 क्वेश्चन हमने बताए हैं कि पूछे जाएंगे उनके सवालों का जवाब दें। इसके अलावा जिन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन कर लिया है उनके पास एक सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी आया होगा उनके मोबाइल पे, तो जब इन्यूमरेटर आपके घर में आता है वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी उनके साथ शेयर करें। उसके बाद इन्यूमरेटर जो डेटा आपने पोर्टल के माध्यम से भरा था उसको वेरीफाई करेगा और सबमिट करेगा।
0: जी बिल्कुल, डॉक्टर श्रवण बगारिया सर आपसे जानना चाहेंगे, मेरठ से एक मैसेज आया है दिग्दर्शन गौड़ का, वो कहते हैं कि उनकी जनगणना घर पर हो चुकी है लेकिन जनगणना वाले बाजार में आ रहे हैं जहां उनकी शॉप है और वहां पर भी उनसे जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे में दुविधा हो रही है कि अगर एक बार घर पे आके उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली है तो फिर जो उनका कमर्शियल स्पेस है, दुकान है, वहां पर आकर वो जो जानकारी ले रहे हैं वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस दुविधा का निवारण कीजिए।
3: ये हाउस लिस्टिंग है, जो सेंसस हो रहा है वो हाउस लिस्टिंग का हो रहा है। अगर वो अपनी जानकारी दे चुके हैं तो चीज जब भी वहां पे इन्यूमरेटर आए तो उनको बता दें कि वो अपनी गणना करवा चुके हैं।
0: जी बिल्कुल, तो इस वजह से दुकान में करवाने की जरूरत नहीं है दोबारा से। जी बिल्कुल, बहुत ही सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 पर। सर इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया है कि अगर कोई इंसान पर्सन दिल्ली का रहने वाला है और वो मुंबई जॉब करता है, ये सवाल आया है ललिता का दिल्ली से, वो कहती हैं कि उनका भाई जो है वो दिल्ली के हैं, घर दिल्ली में है, मुंबई में रहते हैं, ऐसे में वो मुंबई में करवाएं अपनी जनगणना गणना और या फिर दिल्ली में करवाएं, किस तरीके से इसको हम आगे फॉरवर्ड करें?
3: जी बिल्कुल, आपका ये सवाल बड़ा जायज़ है, बहुत जनों की ये क्वेरी रहती है, जहाँ पे वो नॉर्मली रिजाइड करते हैं वहीं पर अपनी गणना करवाएं।
0: जी,
3: तो जो नॉर्मली रिजाइड का मतलब ये है कि जहाँ पे उनका रोजगार है, जहाँ पे वो पढ़ते हैं या जहाँ पे वो काम करते हैं।
0: जी बिल्कुल, एक और क्वेश्चन आया है, वो कहते हैं कि उनके भाई के पास मुंबई का कोई भी गवर्नमेंट आईडी नहीं है, सारे आईडीज दिल्ली के ही हैं, तो ऐसे में भी वो मुंबई में करवा सकते हैं?
3: देखिए, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं, जब इन्यूमरेशन के लिए जाते हैं तो हमारे इन्यूमरेटर्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कहाँ रिजाइड करते हैं, मकान के अंदर अगर रिजाइड करते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, विशाखा मैम आपसे जानना चाहेंगे, एक क्वेश्चन है कि जब एक मकान में मकान मालिक रहता है और उसी के साथ साथ किराएदार भी रहते हैं, तो जब इन्यूमरेटर्स आते हैं तो किराएदारों का भी डेटा लिया जाता है जिसमें कि एड्रेस वही रहता है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, ऐसे में क्या जो टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, आगे चल के कोई किसी तरीके की परेशानी क्रिएट कर सकते हैं मकान मालिक के लिए, ये जानना चाहते हैं?
2: देखिए, हमने रिपीटेडली यही चीज़ बता रहे हैं कि सेंसस की एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ आपके एन्यूमरेशन के लिए है, जो कि सरकार स्कीम्स और पॉलिसी प्लानिंग में यूज़ करेगा। तो जो भी हमारे मकान मालिक हैं उनको इस चीज़ का हम आश्वासन देते हैं कि ये किसी तरह का आपको इसमें इन्फॉर्मेशन कंसील करने की, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी टेनेंट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग आपकी जगह पे, आप उनका सही सही डेटा दीजिए और लीगली ऑल्सो सेंसस के सेक्शन 8 के तहत हर बंदा बाध्य है कि वो सही तरह की इन्फॉर्मेशन अपने सेंसस ऑफिसर को प्रोवाइड करे, जैसा कि पहले भी बताया था, नहीं तो हम लोग लीगली भी इसमें आपके चार्जेस लगते हैं।

0: जी
1: तो इसीलिए रेंटल लोगों से यही हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि ये कोऑपरेट करिए, इससे आप किसी तरह की कोई भी परेशानी में नहीं आएंगे, चाहे वो इनकम टैक्स रिलेटेड हो, आपकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट हो, प्रॉपर्टी
0: जी
1: टैक्स हो, या इनक्रोचमेंट हो, किसी चीज़ में कोई भी इशू नहीं आएगा।
0: जी बिल्कुल। एक ऐसा ही क्वेश्चन आया है कि अगर मकान मालिक अपने जो किराएदार हैं उनका इन्यूमरेशन करवाता है, तो कहीं इनकम टैक्स में तो कुछ इस तरीके का नहीं हो जाएगा कि इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए या उनकी पे
1: किसी तरह
0: का?
1: का कोई नोटिस उनको नहीं आएगा, ना ही उनके इन्फॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट को पता चलेगी कि उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। लेकिन अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर रेंटल जो हमारे मालिक हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम लोग जब सरकार आगे जाके राशन कार्ड बनाएंगी, या कोई किसानों के लिए स्कीम बनाएंगी, या लेबर के इंश्योरेंस या वेलफेयर के लिए स्कीम बनाएंगी, तो सरकार को उस चीज़ में शॉर्टफॉल होके दिक्कत होगी। तो पर्सनल लेवल पर यहाँ पर किसी तरह का, जैसा कहा हमने, कोई इशू नहीं आएगा। तो हमारा यही अनुरोध है इस लाइव एयर के माध्यम से भी कि आप सभी लोग कोऑपरेट करिए, ये देश की डेवलपमेंट की ही प्रोसेस है और उसी के लिए ये ज़रूरी है।
0: जी बिल्कुल। अनु मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन आया है, ये रतलाम से है दिव्यंका का, वो लिखती है कि नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या होती है एज पर सेंसस, कौन है जिन्हें हम रेजिडेंट मानते हैं?
2: देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि जो सामान्य रूप से किसी घर में रहते हैं, जैसे किसी के घर में कोई फीमेल्स हैं,
0: जी
2: बच्चे हैं, वो सभी इसमें काउंट होंगे। परंतु आपके घर में अगर कोई कैजुअल विजिटर आया हुआ है, कुछ दिन घूमने के लिए आया है, उसको वहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। उनकी गिनती जो है उनके अपने घर में होगी जहाँ पर वो सामान्य रूप से रहते हैं। इसी तरीके से अगर आपके परिवार का कोई सदस्य कुछ समय के लिए टेम्परली बाहर गए हुए हैं, तो उनकी गिनती आप ही के घर में होगी, क्योंकि वो सामान्य रूप से आपके घर में रहते हैं। तो ये हमारा सेंसस में सामान्य रूप से रहने की परिभाषा होती है।
0: जी जी बिल्कुल। एक मैसेज आया, वो लिखती है कि उनकी जो सिस्टर है उनका बेबी हुआ था और वो पिछले 6 महीने से उनके घर पे रह रही हैं, तो उनका इन्यूमरेशन कहाँ करवाया जाएगा? और वो छोटे बेबी का इन्यूमरेशन भी होगा, उनको भी काउंट किया जाएगा जो अभी 5 मंथ्स के 6 मंथ्स के हैं?
2: जी बिल्कुल, किया जाएगा। अभी सामान्य रूप से वो उनके घर में रह रही हैं, तो उनकी गिनती जो है यहाँ कराई जा सकती है। और इसमें बच्चों का भी कराया जाए, किसी भी उम्र के हों,
0: अच्छा
2: न्यू
0: सब
2: बॉर्न, जी
0: न्यू
2: सबका
0: बॉर्न।
2: कराया जाएगा। जी
0: जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप तक पहुंच रही है। अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। आज का विषय है सेंसस 2027, जनगणना 2027।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आप

0: घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर,
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक, आकाशवाणी रेनबो आपके साथ प्रोग्राम आशियाना। और आज आशियाना में विषय जनगणना 2027। हमारे साथ तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दक्षिण पूर्व डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर IAS डॉक्टर श्रवण बगाड़िया। इसी के साथ हमारे साथ हैं बाहरी उत्तरी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर मिस विशाखा यादव, IAS ऑफिसर। इसी के साथ हमारे साथ हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन दिल्ली की असिस्टेंट डायरेक्टर मिस अनु। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ अभियान है भारत के सामने, 140 करोड़ भारतीय देशवासी सभी इस जो महाअभियान है इसमें एक साथ हिस्सा ले रहे हैं और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हैं। एक मैसेज आया है देविका का, वो लिखती हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो किसी और के पास ना जाए और वो इसको मिसयूज ना करें, इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या सज़ा भी हो सकती है अगर ऐसा कोई करता है तो?
4: जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा सेंसस एक्ट में सेक्शन 15 है, कॉन्फिडेंशियलिटी एक्ट। तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्डेंट के द्वारा साझा की जाती है वो किसी भी अदर डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं की जाती है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या कोई भी, इवन RTI या कोर्ट के साथ भी एज एन एविडेंस वो शेयर नहीं की जाती है। तो जो डेटा रिस्पॉन्डेंट प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि निश्चिंत रहें, तो आपका डेटा एकदम सेफ है, सिक्योर है।
3: जी बिल्कुल। साथ ही मैसेज आया, वो लिखते हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि ये जनगणना का पहला चरण है, तो कितने चरणों में जनगणना को पूरा कंप्लीट माना जाएगा और इसके बाद और कौन कौन से चरण आएंगे?
4: जनगणना दो चरणों में की जाती है। प्रथम चरण जो कि हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जिसको हम मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कहते हैं, जो कि दिल्ली में इस वक्त चल रही है 16 मई से 14 जून तक। और दूसरा चरण हमारा होगा फरवरी 2027 में, जिसको हम पॉपुलेशन इन्यूमरेशन बोलते हैं। तो जनगणना दो ही चरणों में की जाती है।
3: जी बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहेंगे, विशाल मल्होत्रा का मैसेज आया है सिरसा हरियाणा से, वो लिखते हैं कि उन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन करवाया, उनके पास 12 अंकों की ID आई जो उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखी हुई है। साथ ही वो कहते हैं कि कैसे पता चले कि उनका नाम जनगणना 2027 में शामिल कर लिया गया है, और जो क्वेश्चन के आंसर उन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन के टाइम पे दिए, क्या वो दोबारा से उनसे पूछे जाएंगे या किस तरीके से वो क्वेश्चन अधिकारी के पास आ जाएंगे जो गणना कर रहे हैं?
5: देखिए, सेल्फ इन्यूमरेशन जो है 1 मई से 15 मई के बीच हुआ था।
3: हाँ जी।
5: उसके बाद हमारे इन्यूमरेटर्स घर घर जा रहे हैं। जब इन्यूमरेटर उनके घर आएंगे तो उनको एक तो अपना 11 डिजिट का जो कोड है वो उन्हें बताना है। उस समय अगर जो उन्होंने जवाब दिए थे 33 क्वेश्चंस जो उन्होंने भरे थे उस समय अगर उनको कोई उसमें चेंज करवाना है या उनसे कोई त्रुटि हो गई है तो वो करवा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ उनको कोड देना है, उसी से काम हो जाएगा।
3: जी बिल्कुल। सागरिकम, विशाखा मैम आपसे जानना चाहेंगे, एक मैसेज आया है वैशाली का, वो लिखती हैं कि जब सेल्फ जो इन्यूमरेटर्स हैं वो आ रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि इस घर में कितने मैरिड लोग रहते हैं, इस इन्फॉर्मेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों पूछा जा रहा है?
6: ये देखिए, ये सेट ऑफ 33 क्वेश्चंस में से जनरल क्वेश्चन है। जब आप पॉपुलेशन इन्यूमरेशन करते हैं तो आप थोड़ा सा फैमिली लाइन को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कितने कपल्स रहते हैं वहाँ पे, वहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जब हम कोई भी स्कीम्स या हाउस होल्ड्स को डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स में, तो यूजुअली हम कितने बेसिकली मैरिड कपल्स और उनके बच्चे हैं उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये काफ़ी जनरल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें स्पेसिफिक चिंता करने वाली बात नहीं है। ये एक बस एक तरीका है, एक पैरामीटर है टू आइडेंटिफाई अ हाउस होल्ड, क्योंकि ये हाउस होल्ड का अभी फेज चल रहा है लिस्टिंग का। सो
3: जी बिल्कुल। साथ ही वो पूछ रहे हैं कि जो 33 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी का आंसर देना क्या ज़रूरी है? अगर हम कुछ स्किप कर दें तो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहें तो?
6: जी देखिए, आपको कायदे से एज ए सिटीज़न आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन आप

0: लोगों के ही भले और आप लोगों की ही डेवलपमेंट के लिए आगे है।
1: जी
0: और सेकेंडली, सेक्शन 8 जो हमारी सेंसस एक्ट है, लीगली भी आप बाध्य हो कि आप सही जवाब दें और जो भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सरकार के एक्ट के तहत, ये सेंट्रल एक्ट के तहत ही पूछे जा रहे हैं, तो आप बाध्य भी हो कि आपको इसका जवाब देना है।
1: जी बिल्कुल। राजू का मैसेज आया है उत्तराखंड से, अनु मैम आपसे जानना चाहेंगे। वो कहते हैं कि ये जो 2027 की जनगणना है वो कम्प्लीटली डिजिटल है, तो पीछे की जो जनगणनाएं हुई थी उनमें और इस बार की जो जनगणना है उनमें क्या फर्क है, और किस तरीके से क्या क्वेश्चंस अलग अलग रखे गए हैं, क्या हर बार क्वेश्चंस अलग अलग रहते हैं, ये सभी जानना चाहते हैं।
2: जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जनगणना हमारी पूरी तरह से डिजिटल है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया है। पहले जो जनगणनाएं हुई हैं उसमें डेटा पेपर मोड में कलेक्ट किया जाता था, लेकिन इस बार जो डेटा इन्यूमरेटर्स कलेक्ट कर रहे हैं वो मोबाइल ऐप के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सेल्फ इन्यूमरेशन का भी ऑप्शन पहली बार सेंसस में दिया गया है। लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो खुद से भी अपने घर का डेटा भर सकते हैं, और उससे जो SC ID जो अभी बताया गया कि SC ID जनरेट होगा, सेल्फ इन्यूमरेशन ID, और इन्यूमरेटर आपके घर में आएगा, आप उसके साथ साझा करेंगे और इन्यूमरेटर आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करके आपका सबमिट करेगा।
1: जी बिल्कुल। उदय भान पाल उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से मैसेज लिखते हैं, वो कहते हैं कि पिछली जनगणना में उनके परिवार की पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई थी लेकिन किसी भी सरकारी योजना का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो ये जानना चाहेंगे कि कई बार जो इन्यूमरेटर भी जा रहे हैं उनसे भी जो जनमानस है वो सवाल कर रहे हैं कि क्या इससे कोई बेनिफिट मिलेगा या इससे किसी योजना में हमारा नाम आ जाएगा जिससे कि कुछ हमें मिले, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो भ्रांति है किस तरीके से दूर की जाए और साथ ही साथ कैसे समझाया जाए सभी जन को कि ये जो डेटा हम ले रहे हैं, इन्यूमरेटर्स ले रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं से योजनाएं बनेंगी।
2: जी बिल्कुल, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा सरकार जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगी, जैसे कि आपने हमारे क्वेश्चंस देखे होंगे, एक क्वेश्चन है ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर,
1: जी
2: क्या
1: बिल्कुल
2: सभी लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध है कि नहीं है, तो इससे सरकार को ये पता लगेगा किन जगहों पर इन चीज़ों की कमी है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट टारगेट ओरिएंटेड और सटीक पॉलिसीज बना पाएगी। तो एक तरह से डायरेक्ट ही लाभ सभी लोगों को मिलेगा, तो ये सभी का इसमें विकास होगा,
1: जी
2: तो इसलिए इसमें मेरी सभी से गुजारिश है कि सभी खुल के पार्टिसिपेट करें।
1: बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, और ऐसे में कल्याणकारी योजनाओं के लिए, नीतियों को बनाने के लिए जनमानस का जो डेटा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं के बेसिस पर आगे आने वाली पॉलिसीज को निर्धारित किया जाएगा, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग जो हम वासी हैं भारत के वो सही जानकारी दें, सभी क्वेश्चंस के आंसर दें। 33 क्वेश्चंस है, बहुत कम टाइम लग रहा है, और जो इन्यूमरेटर हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अनु मैम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की प्रिपरेशन आपने जब ये शुरुआत की अभियान की, तो किस तरीके की प्रिपरेशन आपने की, क्योंकि आपके जो इन्यूमरेटर्स हैं, जो जनगणना अधिकारी हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और कई बार ऐसा हो रहा है कि एक घर में अगर एक बार नहीं मिल रहा है तो वो 2-3 बार जा रहे हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो आप उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी, मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे इन्यूमरेटर्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है बहुत एक्सटेंसिवली, किस तरह से फील्ड में डिफिकल्ट सिचुएशंस को वो हैंडल करें। ऑब्वियसली फील्ड के डिफिकल्ट सिचुएशंस तो हमारे इन्यूमरेटर्स झेल ही रहे हैं, इसके
1: जी
2: अलावा जो क्लाइमेट का डिफिकल्ट है वो भी वो सहन कर रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली द रियल हीरोज ऑफ आर सेंसेस। सो थैंक यू टू ऑल।
1: जी, थैंक यू सो वेरी मच। और इसके साथ हम सर से जानना चाहेंगे, डॉक्टर श्रवण बगाड़िया सर से। सर, एक मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि दिल्ली के NCR में जॉब करते हैं और रोज़ जॉब करने जाते हैं, वापस बैग घर में आते हैं और शाम को ही रहते हैं। ऐसे में बाई चांस वो अगर इन्यूमरेटर मिस हो जाए, उनकी जनगणना मिस हो जाए, तो वो क्या करें?
3: देखिए, हमारे इन्यूमरेटर्स जो हैं बड़े जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं, तो अगर आपके घर पे तो वो जाएंगे ही, घर पे आपका अड़ोस पड़ोस में भी पूछते हैं, वो 2-3 बार जाते हैं, हमने पूरा 1 महीने का समय भी रखा हुआ है, तो वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्यूमरेटर से संपर्क नहीं कर पाए, अभी इस फेज में तो हाउस लिस्टिंग की जा रही है, जो आपकी खुद की गणना होनी है, जिसको हम पॉपुलेशन इन्यूमरेशन कहते हैं, पी कहते हैं, वो फेज टू में होगी, फरवरी 2027 के समय होगी। अभी तो घरों की जो है गणना हो रही है।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ एक पैसेज आया है दिल्ली से, आर के पुरम से आया है भास्कर का। वो लिखते हैं कि उनके घर के पास एक वृद्ध आश्रम है, ओल्ड एज होम है, तो उनकी जनगणना कैसे होगी, कैसे उन्हें जनगणना 2027 में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग जगहों से हैं और वो वहाँ रहते हैं।
3: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आए हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मली रेजिडेंट कहाँ के हैं। अगर सामान्यता रूप से वो ओल्ड एज होम में ही रह रहे हैं तो उनकी गणना यहीं पे हो जाएगी। तो दो फेजेस जो है आपको बताए, एक तो जो घर की मकान की गणना है, तो मकान की गणना इस स्टेज पे हो रही है फर्स्ट फेज में, और सेकंड स्टेज पे जब वो आएंगे तो उस समय उनके घरों की भी के साथ साथ उनके जो पॉपुलेशन की इन्यूमरेशन है वो भी हो जाएगी, यहीं पे हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल। अब वक्त बहुत कम बचा है और आपसे जानना चाहेंगे अनु मैम, सेल्फ इन्यूमरेशन अगर किसी ने नहीं किया है तो क्या उसे किसी तरीके का नुकसान होगा? ये मैसेज आया है अम्बाला से ऋतु का।
2: जी बिल्कुल, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं किया है तो इन्यूमरेटर उनके घर में आएंगे, तो आप उनको जब वो सवाल पूछेंगे तो उन 33 सवालों का जवाब दीजिए, आपकी जनगणना में काउंटिंग हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल। साथ ही वो कह रहे हैं कि किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं या फिर कोई अगर पासवर्ड मांगे, क्या पासवर्ड की तरह का भी कुछ आएगा अगर वो डिजिटली उसको इनलिस्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को?
2: जी नहीं, जनगणना में किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्डेंट बेस्ड रहता है, जो भी उत्तरदाता जवाब देता है हमारे इन्यूमरेटर्स उसको रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें किसी भी तरह का OTP नहीं मांगा जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सावधान रहें कि हमारे सेंसस में कोई मोबाइल नंबर जरूर मांगा जाता है, लेकिन किसी तरह का OTP किसी के साथ आप शेयर ना करें।
1: जी, और ऐसा आता भी नहीं है, किसी भी तरीके का OTP आता नहीं है जब डिजिटली उसको लिस्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को।
2: जी, कोई OTP नहीं आएगा।
1: जी बिल्कुल। विशाखा मैम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जनगणना चल रही है तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब एक क्वेश्चन है उसमें कि आप LPG यूज़ करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, लकड़ियों वाला चूल्हा जलाते हैं, इस तरीके का, तो इस ये क्वेश्चन जो रखा गया है इससे क्या जानकारी सरकार के पास जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो दोनों ही हैं, उनके पास LPG भी हैं और दूसरा जो ईंधन है वो भी है, तो ऐसे में किस तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को आगे यूज़ किया जाएगा?
0: ये इन्फॉर्मेशन जैसे आपके पास चूल्हा है या नहीं, या फिर आपके पास पाइप्ड वाटर सप्लाई है या नहीं, या फिर बिजली का कनेक्शन है या नहीं, ये सारी चीज़ों में बेसिकली आप जो भी रिस्पांस देंगे कि आपके पास है या नहीं, इसी डेटा को आगे जाके सरकार या मंत्रालय जो भी कंसर्न्ड होता है इसको इकट्ठा करते हैं, और इसी के बेसिस पे जहाँ जहाँ हम लोगों के गैप्स हैं उसी को लेकर हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जिससे कि 100% सैचुरेशन हो सके, जिन जिन लोगों को जो जो सुविधा नहीं प्रोवाइड करवा पाई है सरकार, इससे और ज़्यादा टारगेटेड स्कीम्स को बनाकर उसी को गैप को फिल करने के लिए यूज़ किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल। विवेक अग्रवाल का मेरठ से मैसेज आया है, वो कहते हैं कि 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी है घर में, तो उनको कैसे काउंट किया जाएगा?
0: उनको एज एन इंडिविजुअल ही काउंट किया जाएगा। okay. क्योंकि जिस दिन आपकी जनगणना हो रही है उस दिन वो एक ही इंडिविजुअल है, और आगे जाके जब होता है तो वो नेक्स्ट राउंड में जब भी बच्चा आएगा तो नेक्स्ट राउंड में उसका काउंटिंग होगा। एज ऑफ टुडे जो भी हेड काउंट होता है उसी को काउंट किया जाता है।
1: ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है, अगर सेल्फ इन्यूमरेशन में कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट है, लेकिन जैसे ही वो कुछ टाइम बाद वो बेबी को डिलीवर करती है, तो उस टाइम पे किस तरीके से काउंट किया जाएगा?
0: देखिए, सेंसस इसीलिए भागों में होता है, फेजेस में होता है। अगर सेल्फ एन्यूमरेशन के समय पे उन लोगों ने एक बंदा जैसे काउंट किया है, तो हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा जो कि फेब्रवरी में होगा, हम लोगों का हेड काउंट वाला, पॉपुलेशन वाला, तो उसमें हम बच्चे की भी काउंटिंग करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेंसस कर रहे हैं, जिसमें हम हाउस होल्ड के ब्लॉक्स में जितने भी हैं उनको काउंट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फेज में बच्चा भी काउंट हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है।
1: जी बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो सेल्फ इन्यूमरेशन के बाद 11 डिजिट का ID मिलता है, अगर वो ID और जो इन्यूमरेटर आते हैं, गणना अधिकारी आते हैं, उनके सिस्टम से मैच नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या होगा आगे?
3: देखिए, अगर त्रुटिवश वो बताना वो भूल गए हैं तब तो पूरा का पूरा फॉर्म वापस भरा जा सकता है, तो उसका प्रावधान है। पर अगर ये पता चलता है कि ये आईडी किसी और का था और आप आईडी मिसयूज़ करना चाह रहे हैं तो वो दूसरा अलग पहलू है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल सिचुएशन में बात करें तो सेल्फ जो इन्यूमरेशन का फेज रखा था वो फैसिलिटेशन के लिए रखा था कि ताकि जब हमारे इन्यूमरेटर्स जाएं, और दूसरा जो इस बार जो चेंज आया है कि इस बार हमने डिजिटल शुरू किया है तो हम लोगों ने नागरिकों को इस बार भागीदार बनाया है।

0: सेंसस के अंदर दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट,
1: जी
0: तो उसका मकसद ये था। पर अगर किसी वजह से आईडी वो भूल गए हैं, कई बार आदमी कागज़ पे लिख के रखते हैं वो भूल जाते हैं, कई बार मेमोरी में रहता है पर वो मेमोरी में कई बार उस क्षण याद नहीं आता ठीक से, तो बिल्कुल परेशान ना होए। हमारे इन्यूमरेटर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पूरा का पूरा वापस क्वेश्चनर जो है वापिस पूरा उनसे सवाल पूछ के भर देंगे और उससे उनका इन्यूमरेशन हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और अब वक्त इतनी तेजी से भाग रहा है कि क्वेश्चंस लेने का तो वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, लेकिन अनु मैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, वो कहते हैं कि सेंसस कौन कंडक्ट करवाते हैं, क्या इसमें इलेक्शन कमीशन की भी कोई भूमिका रहती है या इसके लिए एक अलग ही बॉडी है?
2: हमारा सेंसस रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर के द्वारा किया जाता है और हमारा ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, इसका इलेक्शन कमीशन से कोई
1: संबंध नहीं है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते, बिकॉज हमारे पास बहुत ही कम एक डेढ़ मिनट बचा है।
2: मैं इतना ही सभी से गुजारिश करूंगी कि सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और आपकी भागीदारी के बिना इसका सक्सेसफुल होना संभव नहीं है, तो जब भी न्यूमरेटर आपके घर में आए तो खुल के उनका स्वागत करें और ये जानकारी शेयर करें, क्योंकि जो जानकारी आप देंगे वो सभी हम ही सभी के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तभी हमारी जनगणना का टैगलाइन भी है हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: विकास बिल्कुल। आप थे हमारे साथ मिस अनु, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन दिल्ली। इसी के साथ आईएएस ऑफिसर विशाखा यादव मैम, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनमानस को?
3: लोग किसी भी तरह की कोई चिंता ना करें, ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, एन्यूमरेटर्स का भी साथ दें और सेंसस को सफल बनाएं। धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर श्रवण सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप जाते जाते क्या कहना चाहते हैं जनमानस के?
0: मैं यही कहूँगा कि जो हमारे इन्यूमरेटर्स लगे हैं वो हमारे समाज के, हमारी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से हैं, अधिकतर इनमें से शिक्षक हैं, अधिकतर महिला शिक्षक हैं, गर्मियों का दिन समय चल रहा है, हीट वेव्स चल रही है, तो उन लोगों का दिल खोल के स्वागत करें और जो भी वो सवाल पूछें उनका सवाल का जवाब दें। अगर कहीं पर आपको शक हो कि ये इन्यूमरेटर है या नहीं है तो ज़रूर आप उनका आईडी वगैरह भी चेक कर लें।
1: जी आज हमने आशियाना प्रोग्राम में बात की जनगणना 2027 की, पहला चरण चल रहा है हाउस लिस्टिंग का, जनगणना अधिकारी आपके पास आ रहे हैं, दिल खोल के उनका स्वागत कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। 33 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले समय में नीतियां बनाने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी का दिल से स्वागत कीजिए और जनगणना 2027 में अपनी भागीदारी देकर देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: जब सूरज तपता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारे शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। तेज धूप, बढ़ता तापमान और शरीर में घटती ऊर्जा, गर्मियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। लू लगना, डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी समस्याएं, थकान और पाचन संबंधी परेशानियां, लेकिन आयुर्वेद में हर मौसम के अनुसार स्वस्थ रहने के प्रभावी उपाय बताए गए हैं। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस, यानी गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत सिंह दबास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
3: थैंक यू मैडम।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर अपने विशेषज्ञ से। तो डॉक्टर साहब,

0: सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गर्मियों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं।
1: मैडम, ऐसा है कि गर्मी का जो मौसम है, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं और जो शरीर पर पड़ती हैं तो पानी को सोख लेती हैं, तो शरीर में पानी जब कम होगा तो खुश्की आएगी, डिहाइड्रेशन होगा, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी और साथ में लू लगना, जैसे सनस्ट्रोक बोलते हैं, या उल्टी, दस्त, ये सब बीमारियाँ ऐसी आ जाती हैं आदमी को। खसरा वगैरह इस मौसम में ज़्यादा निकलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कफ है शरीर का कम हो जाता है, जो शरीर की ताकत है वो घट जाती है, शरीर दौरबल हो जाता है, और जो वात है वो बढ़ता है, तो वात फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे मौसम के हिसाब से, तो परेशानियाँ ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए गर्मी में हमें खास ध्यान रखना चाहिए उससे बचने के लिए। तो उसकी प्रिकॉशन जैसे मैं आपको बताऊँगा कि भाई आप गर्मी में अगर बाहर जा रहे हैं तो घर पानी पी के जाएँ पहले, तो उसके बाद सिर पे कोई कपड़ा रखें और छाते का प्रयोग करें। छाता लोग आमतौर पर जो छाते मिलते हैं ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक जो है वो कलर जो है हीट को खींचता है अपनी तरफ, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप व्हाइट कलर का छाता हो, जो व्हाइट है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। इसलिए जो कपड़े हमारे पहनने वाले हैं वो भी लाइट कलर के हों या वाइट हों, वो डार्क कलर के ना हों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कम से कम गर्मियों में 2 बार स्नान भी करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं। और खाने में आजकल जो सीजन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, नींबू है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा पकौड़े, समोसे, इस तरह की जो चीज़ें, बाजार का जो खाना है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाजार का खाने में आजकल आपको पता ही है जो तेल यूज़ हो रहा है वो बहुत घटिया किस्म का तेल यूज़ हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने आप को बचाएंगे तभी बच पाएंगे। इसमें हर इंसान की अपनी स्वयं की जिम्मेवारी है। अब गर्मी तो यूं भी बढ़ रही है और ये गर्मी जो है, जैसे आजकल देख रहे हैं आप, सब कारों में एसी है, बसों में एसी है, ट्रेन एसी चल रही हैं, तो हीट तो बाहर आ रही है ना, हीट आ रही है। तो आम आदमी जिसके पास कार नहीं है, यानी स्कूटर पर है या थ्री व्हीलर में है या पैदल है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसको जाना तो उसी रोड पे है, रास्ते से है, और वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो जाती है लोगों की, पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो कितनी दिक्कत होती है उन लोगों को, ये तो वो लोग बता सकते हैं, पर हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारा जो बेस है वो गाँव से है और हम ये समझते हैं कि कितनी दिक्कतें आती हैं, ये हम ही लोग जान सकते हैं, शहर के आदमी शायद इस बात को ना समझें।
0: गर्मियों में समस्याएं तो काफी होती हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखें, ये हम आपसे जानेंगे लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: जैसे कि रेडियो डॉक्टर में सर हम आपसे बात कर रहे थे कि गर्मियां बहुत हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार।
1: देखिए गर्मी में संतुलन बनाने के लिए देखिए बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री और जब बाहर हम जाते हैं आजकल देख रहे हैं टेम्परेचर 46 डिग्री से भी ऊपर चला गया, सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। तो इतनी ज्यादा गर्मी में अगर आप बाहर जाएंगे और बाहर कोई एक्सरसाइज करेंगे या दौड़ लगाएंगे या कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो नेचुरल आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए इस ऐसी गर्मी में हल्का व्यायाम करना चाहिए, ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा। बाद में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो आपको फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और दूसरी कई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए खाने पानी भी बार बार पीते रहिए आप, ये जरूरी है। बीच बीच में पानी पीजिए, नींबू का पानी डालकर नींबू पी सकते हैं आप दही की छाछ बना के शिकंजी बना के पी सकते हैं। ये चीज़ें लीजिए आप, ठंडी चीज़ें, संतरा ले सकते हैं आप, संतरे का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। जो इस सीजन में जो चीज़ें पैदा होती हैं जिस एरिया में आप रहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, उस वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। जैसे आजकल ये खरबूजा है, तरबूज है, ये चीज़ें यहाँ पैदा हो रही हैं, ये सब गर्मी को कम करने के लिए है, तो आप इनका सेवन करिए आप। और कोई भी तली भुनी चीज़ें, पकौड़े समोसे या पराठे वराठे मत खाइए आप, ठीक है। मसाले, गर्म मसाले वगैरह सेवन मत करिए आप, तो ये प्रिकॉशन रखिए आप।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: शांति।
0: हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
0: जी, बताइए आपके क्या प्रश्न है।
2: हाँ, मेरा कहना है कि जैसे कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं और जाहिर है कि आजकल ग्रीष्म ऋतु है, हमारे आयुर्वेद में भी एक कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या।
1: बिल्कुल,
2: तो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, कृपया विस्तार से बताएं। ओम शांति।
1: देखिए ऐसा है, ये जो ग्रीष्म ऋतु है, ये जो महीना हमारा चल रहा है अभी मिड मई से मिड जुलाई के बीच का है, इस टाइम जो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और जल को सोखती हैं बॉडी के, उस बॉडी बॉडी नहीं जमीन पे भी जल होगा उसको भी सोख लेती हैं, जो आपको देखते हैं कि पानी की कमी हो जाती है। अब जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी जगह में रहना चाहिए, खाना पीना ठंडा खाना चाहिए, कोई भी गरम मसाले मिर्चें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप जो सीजन की चीज़ें हैं, जैसे आपका मैंने बताया था आपको अभी तरबूज है पैदा हो रहा है वो खाइए आप, खरबूजा खाइए आप, नींबू का पानी पीजिए आप, दही की छाछ पीजिए आप, स्किंजी बना के पीजिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। खस का जो है उसका शरबत पी सकते हैं आप, है ना, संतरे का जूस पी सकते हैं आप, अनार का जूस पी सकते हैं, ये चीज़ें लीजिए आप, तो इससे जो है आपको बॉडी आपकी ठीक रहेगी, संतुलन बना रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये जरूरी है कि आप बाहर धूप में ना जाएं, अवॉइड करें, जाना बहुत जरूरी हो तो पानी पी के जाएं, साथ में सिर पर कोई कपड़ा कवर ढकें उसको, छाते का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो दिन का टाइम है करीब 11 से लेकर 4 बजे तक का, इसमें तो बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश ही ना करें, और ख़ासतौर से बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खास विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75 केजी के आसपास मेरा वजन है, वो पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है और व्हाइट मेरी स्किन है। तो सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून जी,
3: डॉक्टर साहब मेरे
0: हाइट कितनी है आपकी डॉक्टर साहब?
3: हाइट मेरी 6 फीट।
1: 6 फीट है, चलो ठीक है, फिर उस हिसाब से वेट तो ठीक है आपका, कोई ज्यादा कम तो नहीं है।
3: डॉक्टर साहब मेरे 4 सवाल हैं, बड़े सीधे साधे भोले भाले।
1: हाँ बताइए।
3: पहला सवाल तो ये डॉक्टर साहब, चूंकि मेरी व्हाइट स्किन है तो लिहाजा मुझे गर्मी सूट वैसी नहीं करती।
1: हाँ बिल्कुल।
3: चूंकि मेरी पित्त प्रवृत्ति है
1: जी हाँ,
3: तो डॉक्टर साहब हो ये रहा है कि मेरे को लीवर के आसपास काफी ना इन दिनों गर्मी जलन गैस बहुत बन रही है लीवर के आसपास।
1: हाँ जी हाँ।
3: तो मेरी जो डाइट वो 4 फुलके होती थी,
1: हाँ जी,
3: एक दो फुलके ही खा पा रहा हूँ।
1: हाँ जी।

0: इसके लिए मैं क्या करूं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे श्वसन एलर्जी भी है, तो मैं इसके लिए क्या करूं? घरेलू स्तर पर अगर आपके पास आते तो क्या करना पड़ेगा? तीसरा सवाल कि मुझे निद्रा की भी प्रॉब्लम है, तो मैं गर्मी मुझे और भी सूट नहीं कर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और चौथा आखिरी सवाल कि मुझे लीवर, ये थायराइड या टॉन्सिल में से ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे को बोलने प्रॉब्लम, मतलब गले में ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस। और एक छोटा सा सवाल और था कि गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो आंखों में गर्मी जलन होती है, सीधी सी धूप पड़ती है, आंखों पर गर्म हवाएं चलती है। ये पांच सवाल है, प्लीज गाइड करें, मेरी बड़ी मेहरबानी होगी।
1: ठीक है, देखिए ऐसा है, स्किन आपकी वाइट है, ठीक है, और आपको जो गर्मी है वो शूट नहीं करती, तो ये जो है इसके लिए तो वही है कि गर्मी है ज़्यादा, मौसम सीजन भी गर्म का है, आपकी बॉडी में वैसे ही गर्मी है, तो नेचुरल खाने पीने का अपना पत्थे का प्रयोग सही करें आप, और पत्थे का सेवन ना करें आप, दूसरा लाइफ स्टाइल अपना ठीक रखें, गर्मी में बाहर ना जाएँ, अंदर रहें, ठंडे स्थान पर जाएं, अगर आपके पास अच्छी हो तो आप किसी भी ठंडे एरिया में शिफ्ट कर जाएं गर्मी के टाइम पे, तो सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। लीवर है आपका, भूख जैसे कम लग रही है तो भूख के लिए आप नमक और जो है आपका थोड़ा सा काला नमक डालें, थोड़ा सा अजवाइन डालें, थोड़ा अदरक डालें, उसको नींबू में भिगो कर रखें, उसको खाएं तो आपकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसी छोटी चीज़ें हैं ना, ये लीवर के लिए आपको जो है लीवर के लिए कई दवाइयाँ भी आती हैं, वैसे तो चिरायता वगैरह अच्छा लीवर में काम करता है, आप ले सकते हो, उसको लें आप, ठीक है ना। और पानी बार बार पीते रहें आप, ये बहुत ज़रूरी है। नींबू आपको शूट करता है, नींबू की स्कंजी लें, छाछ दही की छाछ बन दही की जो है लस्सी बना कर लें आप, संतरा शूट करता है, संतरे का जूस पी लें, अनार का जूस पी सकते हैं आप, ये चीज़ें लीजिए आप सारी। थायराइड के लिए जो है शीतली प्राणायाम करेंगे आपको गले के रोगों में फायदा करेगा, शीतली प्राणायाम करें उससे भी आपको आपकी ठंडक रहेगी, गर्मी कम लगेगी आपको।
2: और उन्होंने कहा था कि उनको एलर्जी हो जाती है।
1: देखिए एलर्जी किस चीज़ से होती है ये तो आपको देखना पड़ेगा, अभी क्या खाने से एलर्जी हो रही है उसको अवॉइड करना पड़ेगा।
2: अच्छा, और एक उन्होंने कहा था कि उनको निंद्रा की भी प्रॉब्लम है, कि जैसे गर्मी बहुत है उनको नींद नहीं आ रही है कुछ।
1: देखिए अपना अगर आप कैपेबल है तो एसी लगाइए अपना, और थोड़ा खाना खाने के बाद में आप आधा घंटा घूमिए, थकावट होगी तो नींद भी आ जाएगी।
2: और साथ में कह रहे थे कि उनको ड्राइनेस बहुत फील होती है, चाहे गले में भी आंखों में भी, गर्मी तो है
1: तो गर्मी में तो ड्राइनेस होती है, आप उसके लिए
2: क्या करें?
1: गाय का जो है, गाय का प्योर घी जो बाजार में गाय का घी मिलता है वो प्योर नहीं है, तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, पर आप अपना गाय का प्योर दूध लो, घी निकालो, उसको एक चम्मच सुबह शाम ले लो आप, तो गर्मी कम कर देगा गाय का घी, वो सबसे अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं।
2: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, मेरा नाम योगेश है और मैं देहरादून से हूँ। गर्मियों में भूख को लेकर काफ़ी समस्या हो जाती है कि भूख कम लगती है, क्या करें?
1: देखिए वही है, क्योंकि गर्मी में लीवर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लीवर, गर्मी के अंदर, और लीवर का काम है सारा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, तो वहाँ जो है आपका अपने एक बार तो टेस्ट वेस्ट कराओ भाई, आपका लीवर फैटी तो नहीं है, और खाना क्या खाते हैं आप इसके भी डिपेंड करता है, वेजिटेरियन है या नॉन वेज हैं, और क्या काम करते हैं, आपका काम का टाइमिंग क्या है, जो वर्क कैसा है आपका, तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, फिर आपकी सोच कैसी है, तो एक तो अपनी सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव सोच रखो अपनी, दूसरा आपका पेट प्रॉपर साफ होना चाहिए, पेट साफ होगा तो आपको भूख भी लगेगी, और उसके लिए आपको सुबह उठकर कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए खाली पेट, ठीक है, जब पानी पियेंगे तो आपका दीर्घ शंका होगी, पेट साफ हो जाएगा तो भूख भी लगेगी। आम मैं देखता हूँ कि आमतौर पर 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ज़्यादा होता है वो परेशान रहता है, कम वाले को पता नहीं चलता कॉन्स्टिपेशन है, पर जिसका भी पेट छाते से ऊपर जा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, समझो उसको कॉन्स्टिपेशन है, केवल प्रेगनेंसी में पेट ऊपर जाना चाहिए लेडीज़ का, उसके बाद तो जाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर से वहाँ संपर्क कर सकते हो, और उसे आप एडवाइस लो, और उस तरीके से अपना खाना पीना ठीक करो, ये सबसे बेस्ट है। तो अपने आप को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, फूड हैबिट्स चेंज करो अपनी, और पत्थे का आहार करो गर्मियों में विशेष तौर से, आप पत्थे को छोड़ दो।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि गर्मी में पाचन खराब हो जाता है, तो इसके लिए क्या आयुर्वेदिक में भी कुछ उपाय है?
1: हाँ है, क्यों नहीं, आप जैसे आयुर्वेदिक में आप चिरायते का सेवन कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लीवर के लिए काम करता है, बाकी दवाइयाँ तो बहुत कंपनियाँ दवाइयाँ बना रही हैं लीवर के लिए, बहुत दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं, वो ले सकते हैं। बाकी भूख कम लग रही है तो सिंपल सा लौंग भास्कर चूर्ण है, आपके हजमा का भूख को लगाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका अदरक है घर में, आपके नींबू है और उसमें अजवाइन डालो, और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो अदरक के, और डिबो दो उसको, उसको सेवन करो, एक दिन डुबा रहने दो, उसको सेवन करोगे तो आपकी भूख खुल जाएगी उससे।
2: एक और मैसेज हमारे पास, यह लिखते हैं डॉक्टर बलजीत दबास।

0: और शिल्पा मैम को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गर्मियों में आयुर्वेद में बच्चे, जवान और बुजुर्गों की डाइट कैसे अलग होगी, और ये फास्ट फूड का चलन हो गया है वो कितना हानिकारक है, और सुबह और शाम क्या करना चाहिए। थैंक्स, नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड से लिखते हैं।
1: चौहान जी, बात यह है कि जो फास्ट फूड है ना, ये तो समझ लीजिए बीमार करने का एक मीडिया आ गया है हमारे बीच में कि लोगों को बीमार

0: काम करना चाहते, खाना कौन बनाए, तो सबसे आसान है कि फ़ोन करो, किसी टाइम भी खाना मंगा लो, रात के 12 बजे मंगाओ, 2 बजे मंगाओ। तो ये तो भाई हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल है, आयुर्वेद के हिसाब से तो 7 बजे के बाद खाना खाना नहीं चाहिए, और यहाँ खाने का टाइम ही उल्टा है, सोने का टाइम भी उल्टा है, सो रहे हैं लोग 2-2 बजे, उठ रहे हैं सुबह 10 बजे तक, तो कहाँ से ठीक रहेंगे लोग। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पहुँच से बाहर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये आप अपने आप में कर सकते हैं, अपना खुद खाना बनाओ और खाओ भाई, बाज़ार से क्यों मंगाते हो आप, कोई फास्ट फूड वाले आपके घर थोड़ी आते हैं देने के लिए, आप ऑर्डर करते तभी तो आता है ना खाना, तो अब मत करिए ना ऑर्डर, आप घर में बना बना खाना खाइए, आपकी वाइफ होगी या बेटी बेटा जो भी है, आप खुद बनाओ, कुछ भी करो, मतलब तो मत खाइए बाहर का, ये जरूरी थोड़ी बाहर का खाना खाना, ये तो अपने ऊपर बात है ना।
1: मतलब ये खुद ही अपनी डाइट का ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या पौष्टिक है क्या नहीं है। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, हाय गुड हॉट नून, रिया फ्रॉम उत्तराखंड, ये लिखती है, माय फेवरेट ड्रिंक इन दिस बर्निंग समर इज चन्ना सत्तू एंड शुगर केन जूस एंड वुड एप्पल। वॉक करके आती हूँ इवनिंग में तो बहुत हीट हो जाती है, तो कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे बॉडी कूल डाउन हो जाए।
0: देखिए वॉक कितने फास्ट करते हैं आप, भी डिपेंड करता है, स्लो करते हैं, मीडियम साइज मीडियम करते हैं या तेज करते हैं, और आपकी एज क्या है, ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी है ओवरऑल, तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अब आपकी आप ये तो आप हमें एज बताए, इतनी एज है, आप इतना वेट है, तो बताएंगे किस तरीके से करिए आप। तो आप मीडियम रास्ता अपनाइए, ना बहुत तेज चलिए ना बहुत स्लो चलिए, मीडियम चलिए। खाने पीने में गर्मी के मौसम में तो आजकल नींबू बड़ा सूटेबल है, आप नींबू की स्किंजी पी सकते हैं, आप दही की लस्सी बना सकते हैं वो पी सकते हैं, सत्तू ले जो बता रहे हो आप, सत्तू लीजिए बहुत अच्छा है, ठंडा है वो भी है ज़्यादा, तो ये मतलब जो भी ठंडी चीज़ें लीजिए, ठंडी जगह पर रहिए आप, ठीक है, तेज़ धूप में बाहर मत जाइए, तो सुबह शाम अपना बाहर का काम करिए, उस टाइम मत जाइए, अवॉइड करिए अपना, ये तो आपको देखना ना, ये हर आदमी की अपना इंडिविजुअल लाइफ, आयुर्वेद ये नहीं कहता कि भाई ये पैरासीटामोल सबका बुखार उतर जाएगा, नहीं, वो कहता हर आदमी की अलग अलग नेचर है, तो उसके हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग सिस्टम होता है कि इसको फॉलो करना पड़ता है। हर जो रूल्स है वो है ये, कि सुबह उठ के आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठिए आप, अब कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं बताइए मेरे को, लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का ही पता नहीं किस टाइम होता है, फिर उठ के पानी नहीं पीते लोग, एक कप चाय पीते हैं तो यहीं से बीमारी शुरू हो जाती है, जबकि चाय तो पीनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आप सुबह सुबह उठ के 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए, उसके बाद आपको दीर्घ शंका होगी, दीर्घ शंका होने के बाद फिर वापस बैठिए और फिर 1 गिलास पानी कम से कम पीजिए, फिर आपको लघु शंका होगी। अब लोगों को दीर्घ शंका क्या होती है, लघु शंका ये भी नहीं मालूम होगा, और जब ये समझिए अगर आपको दीर्घ शंका होगी तो आपका पेट साफ हो गया, लघु शंका होगी तो आपका समझो खून साफ हो गया, किडनी काम कर रही सही। तो जब सारे सिस्टम काम करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए आप पहले, और आपके जो दांत हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, दांत से ही आपका सकारात्मक सोच, दांत से ही पेट साफ खून साफ स्वस्थ रहेंगे आप, सीधा फार्मूला है, इसको फॉलो करिए, आपकी बीमारी आपके पास आएगी नहीं भाई। तो खाने पीने का तो कंट्रोल करना पड़ा, जीभ पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा आदमी ठीक रह नहीं सकता।
1: डॉक्टर साहब जैसे सर्दियों में होता है, हमें ठंड लग गई तो नजला जुखाम खांसी ये सब हो जाता है, तो क्या लू लगने के भी कुछ लक्षण होते हैं कि हाँ लू लग गई या कुछ गर्मी?
0: हीट स्ट्रोक होता है मैडम, शरीर में से आग सी निकलती है, जैसे आप जैसे भट्टी के पास बैठे पहला यही तो है कि गर्मी निकलेगी शरीर में से आग सी निकलेगी, तो उसके लिए एकदम ठंड में जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो तो हम कपड़ा गीला करके बॉडी पर लगा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, या आजकल एसी में रखो उनको, तो इस तरीके कर सकते हैं। तो
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मैं नीता अमरावती से, सर मेरे पति को लू बहुत लगती है, ऑफिस जाते टाइम एसी कार में जाते हैं, उनकी उम्र 55 है, आम का पन्ना और छाछ भी देती हूँ, ये सब करके भी लू क्यों लग जाती है, सिविल इंजीनियर है तो साइट पे जाना ही पड़ता है।
0: देखिए ऐसा है कि सिविल इंजीनियर साइट पे जाते हैं वो तो वहाँ धूप में खड़े होते हैं ना, ठीक है, वो तो क्योंकि काम है उनका, प्रोफेशन ऐसा, तो उनको बोलो भाई वाइट उनको दे ना एक छतरी खरीद के लाओ, सफ़ेद कपड़े वाली ऊपर वाली, ठीक है, और उनको बोलो एक सफ़ेद कोई कपड़ा रखें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, ठीक ठीक हालत में उसको गीला करें बार बार और सिर पर रख लें, तो सिर को कवर रखें ऊपर छाता रखें तो हीट नहीं लगेगी। दूसरा कपड़े जो पहन रहे हैं वाइट कलर के कपड़े पहने, पूरी बाजू का कपड़ा पहने यानी हाफ बाजू का पहन रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बॉडी को कवर रखें, ठीक है, और खाने पीने का तो आप अच्छा खिला रही हैं उनको, अच्छी बात है ये तो आप दे रहे हो, पर उनको बोलो ये सत्तू वगैरह बना के उनको वहाँ भी दे दें ताकि वहाँ भी बीच में पिए वो, ठीक है ना, ये और ध्यान में रखें, और उनको बोलो पानी जब बार बार पानी पीना है आपको, ये प्रिकॉशन रखते हैं उसको दिक्कत नहीं आएगी फिर।
1: तो डॉक्टर साहब कितना पानी पीना चाहिए और कितनी कितनी देर में लेना चाहिए?
0: देखिए पानी का तो ये है कि कितनी उसकी हाइट है, कितना वेट है, आमतौर पर 3 लीटर पानी तो हमेशा पीना चाहिए
1: जनरल में, अगर सबके लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए।
0: और ये अगर उम्र कम है बच्चे को थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा मोटा आदमी है या ज़्यादा मेहनत करने वाला है जिसको पसीना ज़्यादा आ रहा है तो उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो तीन लीटर तो है ही, बच्चे गर्मियों में 4 लीटर पानी भी आप पीजिए।

0: पी सकते हैं। और आज के जैसे आपका जैसे लोग शराब वराब पीते हैं, मान लो कोई शराब शराब पिएगा तो भाई गर्मी बढ़ेगी शरीर की, जब गर्मी बढ़ेगी तो आपका लीवर भी ख़राब होगा, आपका ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है शराब ज़्यादा पीने से, आपका किडनी ख़राब हो जाएगी। तो एक ये है ना, खाना पीना क्या है, अब आपका जौ का सत्तू बनाइए। आजकल लोग बियर पीते हैं पर बियर में भी नशा डाल दिया इन्होंने, क्या कर दिया पता नहीं। तो बियर ठंडी रहती है, वो आप दे सकते हैं, वो पी सकते हैं।
1: जी, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आकाशवाणी के बारे में अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अपने विचार भेजिए हमारे मेल ID healthairdelhi@gmail.com पर। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं गर्मी की समस्याएं।

0: आयुर्वेदिक समाधान पर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, लेकिन त्वचा की हम देखभाल कैसे करें, तो आप हमें बताइए कि गर्मियों में हम बाहर जाएं तो स्किन पर क्या लगा कर जाएं, क्या नहीं लगा कर जाएं त्वचा पर, जिससे कि हमारी कई बार स्किन बर्न हो जाती है या रेडिशनेस आ जाती है।
1: देखिए, मैं हम तो भी कोई भी क्रीम जो बाज़ार में अवेलेबल है वो स्किन पर लगानी नहीं चाहिए कोई भी। सबसे बेस्ट है आप कोकोनट खरीदो, अपने सामने तेल निकलवाओ, उसका इस्तेमाल करो आप, और उसको तेल की उसकी मालिश करो। मालिश करने के आधा घंटे बाद स्नान करो, उसके बाद में ये साबुन वगैरह जो यूज़ करते हैं इसको थोड़ा कम साबुन करो या अच्छी क्वालिटी का साबुन इस्तेमाल करो। आम जो साबुन बाज़ार में मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, वो स्किन को और ख़राब करते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पूरे बाजू के कपड़े पहनो, आपको बॉडी कवर होनी चाहिए ताकि सन जो रेज हैं वो सीधे आपकी बॉडी पे ना पड़े। सबसे ज़रूरी ये है, अगर आपकी रेज सीधे नहीं पड़ेंगी तो बर्न, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। जितनी भी क्रीमें बना रखी हैं वो तो बिजनेस का आइडिया है लोगों का, लोग जाते हैं कुछ मिले करने के लिए, पर बाकी हमारे विचार से तो सब बेकार है। बाकी आप जैसे आपका आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग शेविंग करने के लिए बाजार से क्रीम खरीदते हैं, एलोवेरा का जेल निकालो, उससे शेविंग करो, बढ़िया काम करेगा, फर्स्ट क्लास एकदम, पैसा ही नहीं लगेगा, घर के घर काम हो जाएगा।
0: एलोवेरा का सेवन करेंगे और
1: उसी लगाएंगे बॉडी पे,
0: उसे बॉडी पे
1: पूरी बॉडी पे लगा सकते,
0: पूरी बॉडी पे लगाएंगे और पूरे कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे जिससे,
1: और लाइट कलर के कपड़े,
0: लाइट कलर के,
1: वाइट बेस्ट है।
0: ओके, और एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं सोराज बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ा से, हरियाणा से जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
0: जी बताइए क्या प्रश्न है?
2: मेरा प्रश्न ये है जी, मैं जो है जब सोच जाता हूँ लैट्रिन काली आती है जी, कभी कभी उसमें मवाद आता है जी, और भूख कम लगती है जी।
1: भाई खाना क्या खाते हो आप? अगर आप
2: खाना तो मैं घर का ही खाता हूँ।
1: घर का तो खाते, अगर पालक खाओगे तो लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है ना? तो लैट्रिन काली के बहुत सारे कारण, अगर आयरन की कोई चीजें खाओ तो, या कोई गोली खा रहे हो तो भी लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है? और पेट प्रॉपर साफ होता नहीं होता, ये अलग बात है। भूख का आपको भूख अच्छी लग रही है, पेट साफ हो रहा है, सुबह कितना पानी पीते हो उठ के?
2: 2-3 गिलास पानी पीता हूँ डेली।
1: देखो कम डेली 2-3 गिलास तो बहुत ही कम पानी है महाराज, सुबह उठकर कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीजिए बैठकर, पानी भी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, घुटने खराब हो जाएंगे। पानी में आप अब गर्मी का मौसम है नींबू डालकर पियो, अगर नींबू शूट करता है, ठीक है ना, आधा लीटर करके दिन में 2-3 बार पहले सुबह सुबह खाली पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद फिर पानी पियो, फिर बार बार बाथरूम, खून भी साफ हो जाएगा, बीमारी आएगी नहीं ना कहीं भी। और बाजार का अगर कुछ खा रहे हो अड़ंग दड़ंग तो मत खाइए, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब एक मैसेज भी हमारे पास ये लिखते हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं सत्तू चने का जो का बेस्ट होता है, तो प्लीज गाइड करिए कि और क्या क्या हम ले सकते हैं। ये है सतीश कुमार, एज है 66 साल, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
1: देखिए जो सत्तू आप ले रहे हो जौ का चने का, वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, सभी को लेना चाहिए। बाकी तो आप गर्मी के मौसम में जो गर्मी में फल पैदा होते हैं, जो सब्जियां गर्मी में पैदा होती हैं, जैसे आप पर खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये आप खाइए। जूस पीना तो आपका संतरे का जूस पीजिए आप, अनार का जूस पीजिए आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, नींबू आपका बहुत बेस्ट है, नींबू का पानी पीजिए, दही की शिकंजी बना के पीजिए आप, छाछ पीजिए, ये चीज़ें लीजिए आप, सबसे बढ़िया रहेगा। और गर्म चीज़ें तली और चीज़ें अवॉइड करिए आप, और बाजार का खाना छोड़ दीजिए, बाजार में धूप में बाहर घूमना बंद कर दीजिए, ये रखिए।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हाँ जी नमस्ते मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं योगराज बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से
0: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न ये है जी, जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं प्रोग्राम शुरू से सुन रहा हूँ, जैसे कि तरबूज भी खाओ इस मौसम में, लेकिन हमने जो न्यूज में देखा तरबूज खाने से जैसे 2 जगह मौत हुई है।
1: देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, आप अगर किसान है और खेती करते, तरबूज अपना खुद उगाइए आप और उसको खाइए, तो कहीं कोई इंजेक्शन का चक्कर नहीं। कोई आजकल तो बड़ी हेरा फेरी हो रही है, क्या कहें, कौन इंजेक्शन लगा रहा है, वो आजकल बेल में इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसी चीजें मत खाइए आप, अगर ऐसे खाओगे तो भाई कुछ इधर, ये तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या है,
3: तो हमें ये कैसे पता चले ये इंजेक्शन का?
1: भैया ये बात, सवाल आपका बड़ा अच्छा है ये। देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे कंपनी है, सपोज एक मिनट, वो खुद अपनी चीजें उगा रही है, ठीक है, खुद उगाते, मान लो फसलें उगा रही है वो, तरबूज उगा रही है, तो मैं समझता हूँ वहाँ हेरा फेरी नहीं होगी। जो जो रेहड़ियों पर जो बिकता है, यहाँ बदमाशी होती है, ये लोग बदमाशी करते हैं। और ये अब क्यों करते हैं ये तो आप समझ सकते हो, जो भी जैसे चल रहा है मामला। कोई जो एक अच्छा जो ठैया है ना, जहाँ पे लोग पता है कि कोई और अच्छी कंपनी का आपके एरिया में कोई होगा, मुझे नहीं मालूम, तो जो खुद उगाता है उससे आप लोगे तो मैं समझता हूँ ऐसी नौबत नहीं आएगी।
0: मतलब
1: बाकी तो ये होता है, अगर मान ली कोई पौधा मेडिसिन अगर सांप के बिल के पास बनती पैदा होती है, सांप के बिल के पास पैदा होती है, तो उसमें भी कई बार सांप जैसे जहर उगलता है या पड़ता है तो उसमें भी उसका असर आ जाता है उसके। ये तो बड़ा नाजुक मामला है इस चीज़ का, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद ध्यान रखिए और कहाँ से ले रहे हो ये देखिए, आपको देखने का विषय है।
0: वही जागरूक होना भी बेहद ज़रूरी है कि आप खुद ही देख रेख के अपना सामान लें कि हम क्या खा रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमें देख रेख करनी चाहिए, तो लेकिन ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, बच्चों और बुजुर्गों को गर्मियों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए ये बात सही है कि बुजुर्ग और बच्चे, ये शरीर का जरा नाजुक होता है
0: जी,
1: और इम्यूनिटी पावर भी थोड़ा कमी होती है इनमें, और ये गर्मी को ज़्यादा, ना गर्मी को ज़्यादा सहन सकते हैं और ना सर्दी को ज़्यादा सहन सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे बेस्ट है कि चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, वो धूप में ना जाएं बाहर। जाना पड़े तो सुबह शाम अपना काम करें, खेलना बच्चों को खेलना तो सुबह शाम खेलें, बुजुर्ग पार्क में जाते हैं तो सुबह जल्दी जाएं उठ के, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद में अपना उषा पान करने के बाद में फ्रेश होकर आप पार्क में जाओ। आप 3 बजे 3:30 बजे उठो, उसके बाद में 7-8 बजे तक घर में आ जाओ। ऐसे बच्चों को थोड़ा, बच्चे तो नहीं उठा सकते 3 बजे, पर कम से कम उनको 5 बजे 6 बजे उठा लो, 6 बजे उठा कर आधा 1 घंटा घुमा के बनो, ले आओ भैया। जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, अगर आप धूप में बच्चों को भेजोगे या बुजुर्ग किसी सामान के लिए भेजेगा, जाएगा बाजार में धूप में, तो फिर तो नेचुरल बड़ा मुश्किल है उनका बचना धूप से। तो इसलिए बहुत मजबूरी है जाने की, तो फिर अपने छाते का इस्तेमाल करो, फुल बाजू के कपड़े पहनो और कपड़े वाइट पहनो या बिल्कुल लाइट कलर के पहनो, ये सब प्रिकॉशन रखो तो बचाव रहेगा।
0: तो ऐसे मौसम में बच्चों को जैसे स्कूल भी जाना होता है, खेलने भी जाना होता है, उनको गर्मी ना लगे तो उनको क्या दें?
1: देखिए सरकार ने इन मौसम में 2 महीने छुट्टियाँ कर दी गवर्नमेंट, इसलिए स्कूल बच्चों के बंद हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस बात में बड़ी जागरूक है जो छुट्टियां दे रही है बच्चों को, पता है कि बच्चों को हीट गर्मी नुकसान कर सकती है। बाकी बच्चे जो खेलते हैं वो ये तो सुबह सुबह के टाइम खेलें जल्दी, या फिर शाम को 6 बजे के बाद खेलें तो हम बचाव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, बच्चे तो क्या मेहनत का करेंगे, जैसे बुजुर्ग आदमी कई क्या होता है वो काम करने की हैबिट होती है उनकी, वो ताकत से भी ज़्यादा काम करते हैं, तो वो दिक्कत नुकसान कर जाता है उनको, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने मेहनत की होती है ना, तो उनके लिए लगता है हल्का है, पर होता है भारी, उनका शरीर इतना अलाउड नहीं करता।
0: तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए?
1: देखिए पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, सबसे बढ़िया है कि पूरी अच्छी डाइट लेनी चाहिए उनको, तो डाइट अच्छी लेंगे, डाइजेशन उनका ठीक होगा, उनका सोच अच्छी पॉजिटिव सोच रखें, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, तो अच्छा है। देखिए सबसे ज़रूरी है आपका सोच पॉजिटिव रखना, फिर आपका आहार, पहले आहार आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर आहार खाना चाहिए, उसके बाद निंद्रा, आपको पूरी निंद्रा लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की जो नींद का है सिस्टम, तो उसको पूरा लेना चाहिए। ज़्यादा सोना भी नुकसानदायक है और कम सोना भी नुकसानदायक है, तो ये चीज़ें लेंगे। तीसरा है फिर आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपकी जो भाषा है, जो आप वर्ड बोल रहे हो वो ऐसे ना हो जो दूसरे को चुभते हों, मतलब कंट्रोल के वर्ड होने चाहिए, ऐसी बात ना बोलो जो दूसरे को बुरी लगे, तो उसमें भी कंट्रोल रखो, हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य है। ये कंट्रोल आपके हर चीज़ पे कंट्रोल है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल कर रखी है बहुत चीज़ों पे कंट्रोल आपका, तो ये कंट्रोल ही रखना ही ब्रह्मचर्य है। तो ये तीनों चीज़ें, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसका पालन करोगे तो मैं समझता हूँ बीमारी आएगी नहीं, ये आयुर्वेद में इनको उपशतम बोला है।
0: और सर अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो उनको कैसे, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका कैसी देखरेख करनी चाहिए?
1: देखिए गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखने की बात जरूरत होती है, एक तो उनको डाइट, ज़्यादा डाइट की जरूरत होती है, बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी, दूसरा वो महिलाएं काम भी ज़्यादा करती हैं तो उनको भी चाहिए को सुबह सुबह जल्दी वक्त से काम कर लें, गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें, बाहर ना जाएं, और खाना पीना तला भुना ये गर्म चीज़ें, गर्म मसाले वगैरह ना खाएं, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, मौसम के हिसाब से जैसे आपका दही की छाछ है या सत्तू, जैसे आपने बताया था सत्तू है, और आपका नींबू का पानी है, चावल है और जौ है, इनका सेवन करें, ये ठंडी चीजें सारी ये खानी चाहिए सभी को। गर्मी में तो जौ का सेवन बेस्ट है, चावल भी बेस्ट है।
0: जी हाँ, इस पर हम बातें अभी और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जी जी डॉक्टर, में आज हम बात कर रहे हैं समर प्रॉब्लम्स एंड आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। एक मैसेज हमारे पास ये है, लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, आज की बात पे पहुंचना चाहता हूं कि मेरी एज 40 साल है, हाइट 5.7 है और वेट 80 प्लस है। जैसे ही सुबह हल्का गुनगुना पानी में अजवाइन और गुड़ डाल के पीता हूँ। शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वजन कम करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँ?
1: देखिए, वजन कम करना चाहते हैं तो घिया और तोरी का सेवन करो, बाकी छोड़ दो, और खाना पीना कम करो, और गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, ठीक है। मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय पीते हो फीकी पियो या ग्रीन टी पियो, वजन घटेगा, ठीक है।
0: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, माय नेम इज मुकेश, एज इज 79 इयर्स, आई एम टेकिंग पंचारिष्ट, कैन आई यूज दिस इन दिस हॉट समर डेज?
1: देखिए, अगर आप पंचारिष्ट पी रहे हैं गर्मियों सर्दियों में भी, और अभी आपको शूट कर रहा है, तो आप पी सकते हो। अगर पीने से कोई दिक्कत ज़्यादा होती, मात्रा घटा सकते हो, 4 चम्मच पी लो, 3 चम्मच कर दो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बंद कर दो, क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है, हर एक का। आयुर्वेद में ये सिस्टम नहीं है कि भाई आप सबके लिए की फार्मूला लागू होता है, या मौसम के हिसाब से सब ऐसे कर सकते नहीं है। तो मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है, खान पीने में भी चेंज होता है, और इंडिविजुअल के ऊपर। जैसे मान लीजिए किसी को, बहुत से ऐसे लोग हैं,

0: पसंद करते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है। वैसे आमतौर पर दूध सब पसंद करते हैं ना, पर दूध से एलर्जी होती है, कोई चावल से एलर्जी हो रही है किसी को, तो अगर किसी को कोई चीज़ शूट नहीं करती तो सीधा फार्मूला उसको मत दीजिए आप, जो शूट करते हैं इससे लाभ होता लीजिए। और ये इस बारे में जो पेशेंट है वो ज़्यादा जान सकता है कि मुझे क्या शूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा।
1: डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि मौसम का असर हमारे स्वभाव पे भी पड़ता है। अच्छा मौसम होता है हम खुश होते हैं, अब जैसे गर्मी का मौसम होता है तो कई बार हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में इसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ है?
0: हाँ देखिए, नेचुरल क्या है, जब हमारा शरीर खुश होता है, जैसे मन खुश होता है, तो तभी मन खुश होगा जब हम अच्छा फील कर रहे होंगे, गुड फीलिंग होगी। और जब हम गर्मी में परेशान होंगे या किसी वजह से परेशान होंगे तो फीलिंग कहाँ गुड़ रहती है, फिर तो फीलिंग गड़बड़ आ जाती है। तो इसलिए ना स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो नेचुरल गुड फीलिंग होगी। और फिर हम किन लोगों के साथ बैठे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं चीज़ों में गुड फीलिंग के लिए। ये नहीं खाली हम काम उधर तो कुछ गलत काम कर रहे हैं, उधर गुड फीलिंग कहाँ से आएगी भाई? गुड फीलिंग तब आएगी जब अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो सब उसको सराहें कि अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई उसको कहेगा ये बेकार काम है तो कहाँ गुड फीलिंग आएगी? तो ये है कि सोच के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। और हमारा हेल्थ ठीक है तो हम अच्छी गुड फीलिंग कर सकते हैं, अच्छा सोचेंगे तो गुड फीलिंग रहेगी।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि जो लोग कामकाजी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कई बार होता है कि कईयों को ऑफिस में काम होता है, वो पूरा पूरा दिन एसी में रहते हैं, जब ऑफिस वर्क ओवर हुआ या लंच टाइम हुआ वो एकदम सडनली एसी से बाहर निकलते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर फील्ड वर्क होता है तो वो एकदम से गाड़ी में बैठे या ऑफिस में गए तो एकदम सडनली एसी में गए, तो ये जो सडन मौसम का चेंज होता है या एनवायरमेंट चेंज होता है तो जिसकी वजह से कई बार तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है?
0: उसके लिए एक भी, जैसे आप मान लीजिए एसी में बैठे हैं, अपन को बाहर जाना है तो 10-15 मिनट पहले एसी को बंद कर दीजिए ताकि बॉडी आपका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ऐसे ही गाड़ी में से आप उतरना है आपको तो पहले गाड़ी का एसी बंद कर दीजिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ये तो है भी, ये तो नहीं कि बाहर तो एसी नहीं लग रहा है, जगह पे बाहर तो एसी है नहीं, हमारी पृथ्वी पर बेस हर जगह एसी चल रहा है, ये तो ठंडा मुल्क तो है नहीं है। तो ये है कि हमें ये अपने आप को सोचना है, अपने आप से करना है कि आप अगर जैसे गर्मी से आप एसी में जा रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी धीरे धीरे कूल करेगी, पर जब आप कूल हो और एकदम बाहर जाओगे तो वहाँ हीटअप होती है बॉडी, तो वहाँ वो पहले ही एसी बंद हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल के करीब आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
1: और साथ में अगर हम देखें जैसे गर्मियों में वर्कआउट करने के लिए भी कई बार मन करता है कई बार नहीं करता क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ऐसे में योग और प्राणायाम गर्मियों में कितना लाभकारी और कौन कौन से करने चाहिए जिसे हेल्दी भी रहें और फिट भी रहें?
0: देखिए, प्राणायाम तो मैं समझता हूँ कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है। आप कम टाइम करिए उतना, जैसे आपको मान लीजिए आपकी प्राणायाम करने की ताकत आधा घंटे की है तो आप 15 मिनट कर लो बस, मतलब इतना ज़्यादा ना करो जिससे आपके बॉडी पर ओवरलोड पड़े। हल्का खाओगे तो एक्टिव रहोगे, भारी खाओगे तो सुस्त पड़ जाओगे। तो वाली बात है, प्राणायाम करना है, कोई एक्सरसाइज करना है, योग करना है, वो लिमिट में करो। ये नहीं कि भाई आप वेस्टर्न के मौसम में 1 घंटा कर रहे हो, गर्मी में 1 घंटा करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए टाइम रिड्यूस करो उसका, और इस तरीके से करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा बॉडी, अपनी इंडिविजुअल बॉडी एडजस्ट करें। टाइम क्या करने का ये भी डिपेंड करता है, अगर आप सुबह सुबह ठंडे मौसम में करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे, गर्मी शाम को करेंगे तो शाम को टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नेचुरल वहाँ आप कम कर पाएंगे, तो वहाँ अगर ज़्यादा करेंगे दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसलिए अपने आप को खुद एडजस्ट करना पड़ता है।
1: और अक्सर होता है कि हम एकदम ठंडा पानी भी पी लेते हैं, तो पानी किस टेम्परेचर का हमें पीना चाहिए? क्योंकि गर्मी लगती है, प्यास लग रही होती है, लगता है कि हाँ नॉर्मल पानी पियेंगे भी प्यास नहीं बुझेगी।
0: देखिए ऐसा होता है, यही तो बात है कि भाई आप मटके का पानी पियो, मटके में पानी रखो उसको पियो, कुछ भी नहीं होगा आपको, ना गला खराब होगा, ना खांसी होगी, ना कुछ होगी। अब हम एसी का भागते हैं, अब बाहर गर्मी में से आए और एसी का ठंडा पानी पियेंगे तो गर्म सर्द हो जाएगी, तो फिर आपको गला भी खराब, गला पकड़ा जाएगा और खांसी जुकाम भी हो सकता है आपको। इसलिए बेहतर है अगर मान लें मटका नहीं है, गर्म एसी है, तो पानी ठंडा गर्म में मिक्स कर लो फिर पी लो उसको, पर एकदम ठंडा मत पियो आप, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी एकदम ठंडा है तो आपको दिक्कत पड़ेगी।
1: सर, और एक ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, और डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। वो लिखते हैं कि बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। वो लिखते हैं, मेरा प्रश्न है कि गर्मियों के दिनों में मुंह पर घुमौरियाँ हो जाती हैं, इसका क्या कारण है? हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए कि हमें मुंह पर घुमौरियाँ ना हो, इसके बारे में बताने का कष्ट करें।
0: देखिए ऐसा होता है, एक तो आपकी एज कितनी है हम ये जानना चाह रहे हैं,
1: उन्होंने लिखी है, उनकी एज जो है 25 वर्ष,
0: बस यंग एज आपकी
1: जी।
0: तो
1: ये है जोगाराम बलोतरा राजस्थान से।
0: जोगाराम जी, गर्मियों में लोग आम खाते हैं और आम जो है वो कार्बाइड में पक रहा है, पता है आपको कार्बाइड में पकता है और कार्बाइड से कैंसर होता है, ठीक है, और आम की तासीर वैसे गर्म है। तो ये जो गर्म आम है और गर्म कार्बाइड का तो छोड़ दीजिए आप, वो तो पूरे देश में ऐसे चल रहा है, इसलिए कैंसर भी फैल रहा है उससे। पर जो गर्मी है और आम खाने से ऐसी घुमरियाँ हो जाती हैं आमतौर पर यंग एज में, ये कॉमन है। इसका तरीका ये है कि आम को पहले आप पानी में भिगो, कम से कम 24 घंटे पानी में भिगा रहने दो, पानी चेंज करो उसका, और उसके बाद में उसको खा रहे हो तो दूध के साथ लो उसको, दूध आम और दूध मिक्स करके लो, या आम खाओ ऊपर से दूध पियो, तो फिर ये घुमरी आपको नहीं होगी। और बिल्कुल ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ फ्री में। अगर आप 10 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं 6 घंटे की नींद लेके, तो 4 बजे 5 बजे और 6 बजे अपना स्पूटम अपने चेहरे पर लगाओ, ऐसा करोगे तो 15 दिन में घुमरियाँ आपकी सूखनी शुरू हो जाएंगी, तो ठीक हो जाएंगी बिना दवाई के।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
2: सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी, कस्बा कठौर जिला मेरठ से
1: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: सर प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लाए हैं, डॉक्टर साहब को भी हमारा सलाम।
0: सलाम जी।
2: हाँ जी, हमारे जो बच्चा है करीब 6 साल का है, वो गर्मियों के दिनों में उसकी आंखों में बहुत खुजली हो जाती है, तो इसके लिए आपसे बस ये मालूम करना था।
0: देखिए, ठंडे पानी के छींटे मारिए आंखों पे उनको, आंखें बंद करा के ऊपर से मारिए ठंडे पानी छींटे, दिन में 3-4 बार आंखें धोइए और उसको कम से कम 2 बार उसको नहलाइए, और धूप में उसको जाने से बचाइए आप, और धूप का चश्मा अगर आप बच्चा लगा सकता है तो उसका इस्तेमाल करें।
2: अच्छा, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप ये रेडियो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी,
0: धन्यवाद।
2: जितने भी आप हमारे साथ ये सुन रहे हैं भाई, सभी को हम कहना चाहेंगे प्रोग्राम सुना करें और उस पर अमल करें, और हम भी सुबह उठ के पानी पीते हैं करीब 1-1.5 लीटर, और उसके बाद में सोच जाते हैं, साफ हो जाता है पेट, इसलिए बहुत अच्छा दिन भी
1: जी,
2: अच्छा गुजरता है
1: जी। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने आंखों का पूछा, तो एक बार संक्षिप्त में मैं जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार किस तरह की डाइट सभी को लेनी चाहिए?
0: देखिए, आयुर्वेद में तो जैसे वेदों में अपना, जैसे अपना सनातन है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, और आयुर्वेद में जो है वो स्वस्थ रहकर जीने का तरीका है। तो अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कोई आदमी बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यहीं से शुरुआत होती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर वृक्षपान करना, उसके बाद में फ्रेश होना, मंजन करना, ब्रश करना। अब ब्रश मंजन की बात है, मंजन की बजाय सबसे जो है बबूल और नीम की दातुन सबसे अच्छा है, पर लोग उनको भूल गए। आजकल पेस्ट लगा रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उनसे कैंसर भी हो रहा है मुंह का, तो या फिर आयुर्वेदिक मंजन करिए। अब ये है, यहाँ पे जो मिलावट का चक्कर है सबसे बड़ा खतरनाक है। अब लोग मिलावट से बचते, कोई मिलावट के लिए तो कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, कोई किसी चीज में कुछ भी मिला सकता है, आपको कोई भी चीज प्योर नहीं मिल रही आपको, तो आप करेंगे क्या? तो ये कि आयुर्वेद में जो सिस्टम लिखा है उस तरीके से आप नहाना खाना पीना सब एक लिमिट में रखिए आप, तो उस चीज को अपनाएंगे आप तो मैं समझता हूँ बीमार होगी नहीं आप, ठीक है। उसमें वही है, हम पहले मानते हैं, हमने बताया पहले भी, सकारात्मक सोच रखो, उसके बाद में अपना दांत ठीक रखो, और जैसे दांत सही तो पेट सही, और पेट सही तो सेहत सही, सीधा फार्मूला है। फिर आपका पेट साफ होना चाहिए, फिर आपका खून भी साफ होना चाहिए, उसके लिए आपका दीर्घ संघ का पेट साफ से लघु संघ का खून साफ करते, बार बार पेशाब आता है आपको तो साफ रहेगा। अब लोगों को कब्ज है, किसी को खाना उठपटांग, कितने मसाले उल्टा सीधा खाना खाते हैं तो किडनी खराब कर रहे हैं, कहीं लीवर खराब कर रहे हैं, कहीं कितनी प्रॉब्लम, गैस बनती है लोगों को, गैस बनकर गैस जहाँ भी जाती है वहीं अपनी बीमारी पैदा करती है, गॉल ब्लड स्टोन बन रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो सब गैस की मेहरबानी से हो रहे हैं। जहाँ गैस जाएगी अपना काम, गैस मतलब वायु, और ये गर्मियों में वायु बढ़ती है, वायु का वेग बढ़ता है, इसमें कफ का कम होता है, इन ताकत कम हो जाती है, और शरीर इस तरीके से वायु का वेग बढ़ता है। तो खाने पीने का सिस्टम ज्यादा जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर साहब जी एवं शिल्पा जी और शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और विषय भी बहुत अच्छा है, आज आयुर्वेद पर जानकारी प्राप्त हुई, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जाते जाते संक्षिप्त में बस इतना श्रोताओं के लिए एक मैसेज बता दीजिए कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए रोज क्या करें?
0: देखिए, गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडी चीज़ों का खाना, धूप से बचना, गरम मसाले वगैरह नहीं खाना, वेजिटेरियन फूड खाएं आप, वो ठंडा हो सकता है, नॉन वेज हमेशा गरम रहता है। ठीक है,

0: तो जितने आपके ड्राई फ्रूट हैं उनको भिगो के खाएं आप, सूखे ना खाएं, और सूखे गर्म होते हैं, भीगने के बाद में गर्मी ख़त्म हो जाती है, तो आप खाएं उनको। पानी ज़्यादा पिएं, बार बार पानी पीते रहें, हर घंटे में 2 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जितना पानी पियेंगे, क्योंकि पानी हमारा बाथरूम से भी जा रहा है बाहर, खून साफ हो रहा है, पसीने से भी जा रहा है, और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, स्वस्थ वही जो मौसम के साथ संतुलन बनाकर चले और प्रकृति के नियमों को अपनाए। आयुर्वेद सिर्फ उपचार नहीं, स्वस्थ जीवन जीने की कला है। स्वस्थ जीवन की शुरुआत सही आदतों से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर बलजीत सिंह दबास, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैडम, आप मुझे बुला रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपना ज्ञान लोगों को दूं और लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो आप अपना काम भी सही करेंगे और अपना परिवार का काम भी, परिवार को भी सब संभालेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो देश की सेवा भी सही करेंगे।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthair@delhi.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, गर्मी की तपिश से बचाव का मंत्र है सही दिनचर्या और संतुलित आहार। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सजग रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा के दौरान आज श्री सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है

0: और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
1: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर, और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के एक यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा। और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का PLI दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइटों से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से संबंधित मनगढ़ंत दावे और ईरान अमेरिका मध्यस्थता के बारे में टिप्पणियां शामिल हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावा किया है कि ये AI से बनाया गया है। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। फैमिली ट्रिप प्लान करने से पहले करें डेस्टिनेशन रिसर्च, कम बजट में कर सकेंगे एंजॉय। फैमिली के साथ आउटिंग पर जाना थोड़ा खर्चीला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यदि वेकेशन की प्लानिंग सोच समझकर बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ट्रांसपोर्ट पर अधिक पैसा न खर्च किया जाए। अगर आप सेंटर ऑफ द कैपिटल सिटी दिल्ली के पास नैनीताल, भीमसेन या मसूरी के चुनाव कर सकते हैं या कम समय में ट्रिप पर जा सकते हैं। फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने का मतलब है तनाव और चिंता को दूर कर लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना। साल में एक बार हर कोई फैमिली ट्रिप प्लान करता है। फैमिली के साथ आउटिंग पर जाना थोड़ा खर्चीला ऑप्शन हो सकता है। समटाइम्स इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट विद सो मेनी चार्जेस गोइंग अप। इसके लिए एक बजट बनाना जरूरी है जिसके हिसाब से अन्य चीजें फिक्स की जानी चाहिए। साथ ही यदि डेस्टिनेशन की पूरी जानकारी है तो ट्रिप और भी आसान हो जाता है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ट्रिप्स के बारे में जिनकी सहायता से फैमिली वेकेशन को बजट फ्रेंडली बनाया जा सकता है। वेकेशन पर जाने से पहले डेस्टिनेशन का चुनाव बेहद जरूरी है। ऐसे डेस्टिनेशन का चुनाव करें जो आपको बजट के हिसाब से हो। अपने सिटी के आसपास भी कुछ लोकेशंस आप देख सकते हैं विच हैव सम हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ट्रांसपोर्ट पर अधिक पैसा न खर्च किया जाए। शहर के आसपास के डेस्टिनेशन का चुनाव करें। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय खुद का ट्रांसपोर्ट यूज किया जा सकता है। इसे प्लेन या ट्रेन का महंगा टिकट लेने से बच जाएंगे और कम पैसे में डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। बजट फ्रेंडली वेकेशन के लिए किसी ट्रैवल साइट की मदद ली जा सकती है। ये साइट्स कम बजट में भी पूरी ट्रिप प्लान कर देते हैं। ये साइट्स टिकट से लेकर होटल्स, ट्रांसपोर्ट, साइट विजिट, लंच व डिनर तक का अरेंजमेंट करते हैं। यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है जब परिवार साथ होता है। सबके साथ घूमने फिरने का जो आनंद है उसके अलावा सबसे बड़ी निश्चिंतता होती है किसी भी तरह की औपचारिकता का न होना। परिवार साथ है तो

को लेकर भी राहत आ जाती है। मन में यह भाव रहता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हुआ भी तो मिलकर संभाल लेंगे। फिर यही यादें जीवन भर के लिए मन में बस जाती है। साथ बिताए पल पूरे परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा पाने का अवसर बन जाता है। सब इससे कुछ ना कुछ नया सीख भी जाते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका भी पाते हैं। जब नई पीढ़ी नौकर, शादी या पढ़ाई को लेकर शहर या देश से बाहर जाते हैं, तो पुराने एल्बम से यही यादें निकालकर माता पिता के साथ बिताए दिनों की तसल्ली देती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो परिवार के साथ यात्रा करने से अनुभव होता है। जानिए तफसील से आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। बॉन्ड बनने का मौका। तेज भागते दौड़ते जीवन में हर एक व्यक्ति समय की कमी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होता है। बड़ों को दफ्तर या घर से फुर्सत नहीं होती है, तो बच्चे और युवाओं को पढ़ाई और वर्चुअल दुनिया से छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में वेकेशन सबको एक साथ लाने का सबसे बेहतर विकल्प बताती है। घर में रहते हुए भी बच्चे और पेरेंट्स के बीच संवाद की कमी और दूरियों को एक छुट्टी मिटा डालती है। रिश्ते के बीच बॉन्ड बनाने के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता है। फिर चाहे छुट्टी बिताने पति पत्नी जाए, पेरेंट्स और बच्चे, या फिर भाई बहन, भावनात्मक रूप से जुड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका साबित हो सकता है। चाहे आप 2 दिन की छुट्टी से वेकेशन पर ही क्यों ना जाएं। साथ गुजरे गए पल आपको पूरे जीवन के लिए खुशियां सहेजने का मौका देते हैं। जब भी मन उदास हो या कोई उलझन घेरे, इन छुट्टियों में बिताए पलों के फोटो या वीडियो या मन में बैठी यादों को रिवाइंड कर लेने से आप प्रफुल्लित महसूस करने लगेंगे। ये वो पल होते हैं जब आप अपने बेस्ट स्वरूप में सबसे निश्चित और खुश होते हैं। इसीलिए छुट्टियों में बिताए समय हमेशा आपको खुशियाँ देने और तरोताज़ा करने का काम करते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसी छुट्टियाँ रिश्तों में आने वाली कड़वाहट को दूर करने का भी जरिया बन जाती है। हर रोज उसी रूटीन से जूझते हुए शायद आप ये भूल जाए कि आपकी पत्नी, बहन, बेटी या घर की अन्य महिलाएं संगीत या नृत्य में भी रुचि रखती है, या कि आपके पापा या भाई बहुत अच्छा विसलिंग करते हैं, या कि आपके घर का कोई सदस्य या फिर किसी की फोटोग्राफी स्किल्स बहुत ही शानदार है। छुट्टियों में साथ समय बिताने से ऐसी कई बातें सामने आती है और आपको ये याद दिलाती है कि हर व्यक्ति खास है, हर व्यक्ति में कोई हुनर है। इस बात का एहसास ही अपने आप में खास है, क्योंकि यह आपको उस व्यक्ति के बारे में करीब से सोचने का, उसके प्रति सम्मान महसूस करने का अवसर देता है और रिश्तों में गर्माहट भरने का काम भी करती है। नए को जानना भी और नए को जीना भी। केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार तो स्कूल किताबों से आगे की बात भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन के संस्मरणों में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह उनके पिता के साथ की गई यात्राएं उन्हें प्रकृति और परिवेश के बारे में अद्भुत जानकारियां पाने में सहायता करती थी। हर नए सफर ने नए स्थान तक जाने में हम भिन्न संस्कृतियों, खान पान, भाषाओं, बोलियों, लोगों आदि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और सीखते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो यात्रा ही आपको दे सकती है और जीवन में ये बहुत काम भी आती है। सफर के दौरान हो या किसी जगह पहुंचने के बाद अचानक आने वाली मुश्किल का एक ही हल होता है, तुरंत उसका समाधान ढूंढना। यात्राएं आपको यह भी सिखाती है नए मौसम में समंजस बैठना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि एक्टिविटीज के जरिए अपनी सीमाओं को चुनौती देना, नए वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना आदि, व स्थितियों को जो आपको सकारात्मक बने रहने में मदद करती है। ये केवल यात्रा के लिए नहीं है, वेकेशन के बाद भी जीवन में आने वाली कई स्थितियों में ये रवैया मदद कर सकता है। खासकर परिवार के बच्चे और युवाओं के लिए एक दूसरे की ताकत बनने का अवसर अक्सर साथ रहते हुए भी परिवार के सदस्य इस साथ रहने की ताकत को नहीं समझ पाते। ये बात एक छोटी सी वेकेशन समझा सकती है। उदाहरण के लिए कहीं गाड़ी में कोई खराबी आ जाना, कहीं होटल में जगह न मिल पाना,
आदि जैसे चुनौतियां सामने आने पर परिवार किस तरह एक साथ इनका

सामना करता है और उनके पार निकलता है। ये एक प्रकार का मोटिवेशन होता है जो यात्रा के दौरान मिलता है। बच्चों से लेकर बड़ों को ये बात समझ में आती है कि हमें साथ पाना या मदद के लिए अपने परिवार से बढ़कर सहयोग और कोई नहीं मिल सकता है। यही हमारी असली ताकत है। यात्राओं के दौरान सभी बहुत कुछ सीखते हैं और जानते हैं। इसमें दुनिया की व्यवहारिक सीख पाने के अलावा खुद को कई स्तरों पर परखने का मौका भी मिलता है। बच्चों को खेलने, दौड़ने, भागने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। बंद इमारतों से अलग खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है। बच्चों को यदि आप पैसे का प्रबंध सिखाना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। इससे बच्चों को आने जाने के रूट, नए शहरों की जानकारी, मैप का उपयोग करना आदि जैसे चीजें भी सीखने को मिलती है। यानी कुल मिलकर यात्रा परिवार के लिए एक ऐसा अनुभव बनाती है जो उम्र भर सबके काम आती है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली वेकेशनिंग। विद दिस इंफॉर्मेशन वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

बेबी, जिंदगी की खुशियों को स्विच ऑन करने का टाइम आ गया है। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, FRIDAY, फैंटास्टिक फ्राइडे। अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, कहें तो खुशियों का हैंडशेक। वीकेंड, एक ऐसा एंड जिसकी ख्वाहिश सबको रहती है, खुशियों के खजाने की जिंदगी में एंट्री कहते हैं वीकेंड को। जब वीकेंड आता है तो वीकेंड मौका लेकर आता है, जी हाँ, मौज मस्ती का, फन का। साथ ही साथ वीकेंड मौका लेके आता है अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करने का, हॉबीज को नर्चर करने का, हॉबीज को पैशनेटली आगे बढ़ाते हुए कुछ कर गुजरने का। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और आपके पास है वीकेंड का रेड कारपेट, और हमारे पास है वो खास इंफॉर्मेशन जिससे आप अपनी हॉबीज को, टैलेंट को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बिकॉज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
6: ठीक है।
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS

0: फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आय हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

इट्स फ्राइडे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कई सारे ख्वाब जिन्हें पूरा करने का वक्त मिलता है वीकेंड में। जिंदगी से जिंदगी मिलती है वीकेंड पे। हॉबीज यानी शौक मिलते हैं, शौक से मुलाकात होती है वीकेंड पर। जी हाँ जनाब, देखा जाए तो हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई शौक रहता है, हमारी हॉबीज रहती हैं। और जैसे ही हमें वक्त मिलता है, हमारे हाथ में वक्त लगता है, तो हम इन शौक को, हॉबीज को पूरा करने में लग जाते हैं और इनके साथ वक्त बिताना हमें बहुत अच्छा लगता है। और बात एक कदम और आगे बढ़ जाती है जब हमारे शौक और हमारी हॉबीज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो क्या कहने जनाब, मन करता है कि बस आराम को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर जो हमारी हॉबीज हैं, उनके जो सपने हैं जो हमने कभी देखे थे, उनको पूरा किया जाए। और अब ऐसा ही सपना आपके लिए हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है दिल्ली टैलेंट हंट हौसलों की उड़ान। जी हाँ जनाब, बिल्कुल सही सुना आपने, दिल्ली टैलेंट हंट हौसलों की उड़ान। दिल्ली के 16 से 35 आयु वर्ग के युवाओं के अंदर छुपे हुए हुनर को निखारने के लिए, छुपी हुई प्रतिभाओं को सबके सामने लाने के लिए दिल्ली टैलेंट हंट हौसलों की उड़ान की शुरुआत की गई है। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, आपकी उम्र 16 से 35 साल के बीच की है, तो आप एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब रजिस्ट्रेशन करवाना कैसे होगा, किन किन पड़ावों को पार करना होगा, और फिर कब होगा ग्रैंड फिनाले, और कितनी प्राइज मनी हमें मिलेगी, ये सब बातें जानेंगे वापस आने के बाद।

आज है फ्राइडे और ये फ्राइडे बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड आपकी जो नींद है वो उड़ने वाली है, क्योंकि आपके सपनों को एक नई उड़ान मिलने वाली है, हौसलों की उड़ान मिलने वाली है। दिल्ली टैलेंट हंट हौसलों की उड़ान, जी हाँ, कई सारी कैटेगरीज हैं, विधाएं हैं जिनमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, अभिनय, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, डिजिटल आर्ट, संगीत रचना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और भी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं दिल्ली टैलेंट हंट हौसलों की उड़ान के अंतर्गत। किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाकर वहाँ QR कोड स्कैन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप CMO दिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर भी अपना वहाँ पर जो QR कोड है उसे स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ एक पोर्टल है dillitalenthunt.com, यहाँ पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कौन है जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। जी हाँ, आपका अनिवार्य है कि आप दिल्ली के निवासी हो। साथ ही साथ आपकी जो आयु है, जो एज है, वो 16 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद जो भी एप्लीकेशंस होंगी उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। ये होगा पहला चरण। दूसरे स्टेप में 35 क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, जिनसे जो प्रतिभागी हैं, जो कलाकार हैं, वो आगे आएंगे तृतीय चरण की ओर। और उस चरण में जोनल स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और जहां से लगभग 2000 से ज़्यादा जो प्रतिभागी हैं, कलाकार हैं, उनका चयन किया जाएगा और फिर होगा ग्रैंड फिनाले। जी हां, लगभग इस पूरे प्रोसेस में अगस्त तक का समय लग जाएगा और जहां तक देखा जा रहा है अगस्त में ग्रैंड फिनाले होगा दिल्ली टैलेंट हंट का। और इसमें जो भी फाइनलिस्ट होंगे, विजेता घोषित किए जाएंगे, उन्हें नवाजा जाएगा, जी हां, कैश मनी से। पहला जो प्राइस होगा वो है 2.5 लाख का, 2,50,000 का पहला प्राइस रहेगा। उसी के साथ दूसरा जो अवार्ड रहेगा वो 2 लाख का है, तीसरा 1.5 लाख का है और चौथा जो स्थान प्राप्त करेगा कलाकार उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और कई सारे दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर तो आप अपनी पहचान बना ही लेंगे, ये यकीन हमें है। तो फिर सोचना किस बात का, आप दिल्ली के निवासी हैं, आपकी एज 16 से 35 साल के बीच में है, तो जल्दी से जाइए dillitalenthunt.com की पोर्टल पर, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाइए और तैयारी कीजिए। कब से? आज से, अभी से, इसी वीकेंड से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: क्या आपको रील्स बनाना पसंद है? क्या आपको शॉर्ट फिल्म्स बनाना पसंद है? तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, जी हाँ, इंतज़ार कर रहा है आपकी एप्लीकेशन के लिए, आपकी एंट्री के लिए। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता, और ये प्रतियोगिता है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। जी हाँ, इस प्रतियोगिता में आप जीत सकते हैं 50 लाख तक के नकद पुरस्कार। 3 श्रेणियाँ रहेगी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। रील्स की एक श्रेणी रहेगी, इसी के साथ AI फिल्म्स की एक श्रेणी रहेगी, और साथ ही लघु फिल्म की एक श्रेणी रहेगी। आप यहाँ पर, जी हाँ, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप विजिट करें www.vandematram150.in। जी हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए इस वीकेंड में एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको किताबें पसंद हैं तो आप जा सकते हैं दिल्ली के प्यारे लाल भवन, गांधी मेमोरियल हॉल जो है बहादुर शाह जफर मार्ग, वाल्मीकि बस्ती, ITO न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर है, जी हाँ, बुक फेयर, बुक कार्निवाल लगा है, जहाँ जाकर आप फ्री में कई सारी बुक्स देख सकते हैं और पसंद आए तो ख़रीद भी सकते हैं। तो सोचना क्या, जल्दी से कुछ कीजिए, सोचिए क्या करना है आपको इस वीकेंड में, और कर डालिए वो काम जो आप करना चाहते हैं, बिकॉज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता

से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मैं क्या जी सोनियो मकड़ो की हाल चाल है? क्या कहा, एक नंबर, बहुत बढ़िया। तो चलिए ये बताइए, जहां एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन की होती है हाइट्स, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिटी लाइट्स। दैट्स राइट, सिटी लाइट्स शुरू हो चुका है शो मेरी यानी शालिनी के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 यानी कि 102.6 पर। और क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पर करते हैं बात दिल्ली एनसीआर के इवेंट और हैपनिंग्स की, यानी कि क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में आज और आने वाले कुछ दिनों में, ताकि आप अपने वीकेंड को ना, अपने आने वाले कुछ दिनों को और ख़ास बना पाएं। और न सिर्फ इतना कि आप वहाँ पर जाएं, उस इवेंट को एंजॉय करें, बल्कि वहां से कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लेकर आए, कुछ जानकारी लेकर आए। तो चलिए इसके साथ साथ लगा लेते हैं म्यूजिक का तड़का और बना लेते हैं एक मेलोडियस सी रेसिपी। एंजॉय करिए, अगला गाना आपके लिए श्रीवल्ली फ्रॉम पुष्पा।

मैं क्या जी, क्या बात है। अगर किसी की झलक या शर्फी हो जाए तो फिर कमाने जाने की टेंशन ही नहीं है। और खाने का क्या है, बर्फी तो मिल रही है साथ में। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप हैं मेरे यानी चालिनी के साथ और शो चल रहा है क्या, सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स में हम बात ही करते हैं इवेंट एंड हैपनिंग्स की जो दिल्ली NCR में होने वाले हैं, उसके हम बात करते हैं। और साथ साथ इन बातों के अलावा ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी साथ में मिलती है ताकि आप अपनी जानकारी को बढ़ाएं और साथ साथ एंजॉय भी करें। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गर्मी की। गर्मी ने थोड़ी सी राहत तो दी है, हालांकि थोड़ी सी फुहार पड़ी है बारिश की, उससे थोड़ी सी राहत तो मिल गई है। लेकिन इससे पहले कुछ दिनों में बहुत तेज़ तापमान था, 48-49 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था और बहुत बुरा हाल था लोगों का। और अभी कुछ दिनों के लिए ठीक है, सैटरडे संडे आने वाले दो दिनों में आपके लिए अच्छा होने वाला है, थोड़ी सी रिमझिम बौछार पड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे मंडे आएगा, धीरे धीरे जो पारा है वो अपने पुराने वाले रवैये पर आ जाएगा और वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो उसी के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ ना कि हीट वेव से आपको बचना है, ख़ास तौर पर जो घर के सभी सदस्यों की वैसे बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन खास तौर पर जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अकेला ना जाने दें, अगर बहुत ज़रूरी हो तो उन्हें कुछ खास हिदायतों के साथ में भेजें बाहर और उन्हें पानी के बॉटल साथ में दें और कुछ खाने पीने के लिए भी हल्की चीज़ें जैसे कुछ वेफर्स वगैरह उन्हें दे दें ताकि खाली पेट बिल्कुल भी ना जाने दें। नहीं तो इतना तेज़ हीट स्ट्रोक होता है कि कई बार लोगों को चक्कर आते हैं, उल्टियां होती हैं। और ऐसा मैंने अभी हाल ही में देखा है, एक बुज़ुर्ग महिला को रास्ते पर चलते हुए अचानक से वो बैठ गई चक्कर खाकर। तो जो ज़रूरी उस समय मुझसे हो सका मैंने उनके लिए किया, लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई मिल ही जाए रास्ते पर। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी रास्तों पर ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, अपने मोबाइल से आँखें उठाकर, नज़रें उठाकर देखिए आपके आसपास। इतनी गर्मी में बहुत सारे लोग हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसको कोई परेशानी हो, और अगर है तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। और साथ साथ आप पशु पक्षियों के लिए भी कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं, अगर आप कुछ परोपकार की भावना रखते हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं। दाना रखने का रिवाज तो बहुत लोग करते हैं, पानी इस गर्मी में बहुत ज़रूरी है, तो अपने घर की बालकनी में या अपने घर की छतों पर आप पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं, किसी मिट्टी के बर्तन में। कुछ खाने के लिए हल्के फुल्के दाने भी आप उनके लिए रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है जो घर की महिलाएं, वो कह रही हैं कि बाकी सबकी तो बात हो रही है लेकिन हमारा क्या, जितनी गर्मी में हम तपती हुई गर्मी में 48-49 डिग्री 50 डिग्री कितना ही पहुंच जाए, हमें खाना बनाना ही होता है ना, हमारा क्या है। तो मैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि जो घर की महिलाएं हैं, जो सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, आप उनका ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अगर उनकी तबीयत बिगड़ी ना तो आपकी सबकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। तो आपको उनका ख्याल रखना है। इतनी गर्मी में कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा फरमाइशें मत करिए, और अगर हो रही है तो साथ में इनकी कुछ मदद करवा लीजिए। फिलहाल हम यहाँ पर एक गाना चला लेते हैं, उसके बाद जानेंगे और भी डिटेल्स। स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। वर्ष 1975 में भारत ने संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया और साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया। ये भारत के इसरो और अमेरिका के नासा के बीच एक संयुक्त साहसिक परियोजना थी, जिसमें ATS-6 उपग्रह का उपयोग किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपग्रह के माध्यम से देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक शिक्षा और सूचना को पहुंचाना था। इस परियोजना के तहत 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के लगभग 2400 गांवों को सीधे जोड़ा गया। इन कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीणों को कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और परिवार नियोजन जैसे विषयों पर शिक्षित किया गया। आकाशवाणी के कर्मियों ने दिल्ली, अहमदाबाद और कटक में स्थापित केंद्रों से इन कार्यक्रमों की योजना बनाई और इनका निर्माण कर इस मिशन को सफल बनाया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

क्या बात है, गाना बजाना हो रहा है साथ में यहाँ पर। और गाने से मुझे याद आया कि कहा जाता है कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। लेकिन आजकल जो गर्मी का हालचाल है और उसका जो मिजाज है उसे देखते हुए ना, जो टंकी में से पानी आ रहा है ना उसे छूकर नहाने वाले इंसान के रूह कांप जाए तो गाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि नहीं, क्या कहते हैं आप? इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप मेरे यानी शालिनी के साथ, और शो चल रहा है क्या, सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में अब वक्त हो गया कि मैं आपको बता दूं कि कौन सा इवेंट होने वाला है।

ताकि आप झटपट तैयार होकर वहां पहुंच जाए। आज यानी कि 29 मई यानी कि शुक्रवार को आप अगर म्यूजिक लवर हैं, संगीत पसंद है आपकी और आप मैंडोलिन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो पहुंच जाइए। कहाँ? मैंडोलिन वंडर्स ऑर्केस्ट्रा में गाला म्यूजिकल इवनिंग होने वाली है आज की शाम। आप कहाँ पर जाएंगे ये आप पहुंच सकते हैं। वेन्यू है द स्टाइन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली। और यहाँ पर जो है ये ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि कला, संगीत और समुदाय को एक साथ लाता है और ये सहयोग से हो पा रहा है लीडिंग हेल्थ केयर और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की मदद से। हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो हो पा रहा है। इसके साथ साथ इसमें कैंसर रिसर्च फाउंडेशन, डाइजेस्टिव डिजीज फाउंडेशन और प्रसिद्ध अस्पतालों का भी सहयोग है। तो चलिए आप इंजॉय करिएगा इस इवेंट को और साथ साथ इंजॉय कर लेते हैं सॉन्ग को। क्या कहते हैं आप?

वेल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 यानी कि 102.6 और मैं हूं आपके साथ चालनी और शो चल रहा है सिटी लाइट्स। आपसे कुछ ही देर पहले हमने बात की थी एक इवेंट की, मैंडोलिन वंडर्स ऑर्केस्ट्रा की बात करी थी, एक गाला म्यूजिकल इवनिंग, ये जो ये शाम होने वाली है, म्यूजिकल इवनिंग होने वाली है, उसकी बात करी थी। तो मैं आपको समय बताना भूल गई थी, शाम को 7 बजे आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे, अब से मैं आपको बता दूं कि आकाशवाणी जो प्रसार भारती का जो रेडियो डिवीजन है हमारा, वो अपने 90 वर्ष बहुत जल्द पूरे करने वाला है। तो उसी खुशी में, उसी के मद्देनज़र आइए, उसी से जुड़ा हुआ एक गीत सुनते हैं।

क्या बात है, आपकी हम सब की आकाशवाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी और शो चल रहा है क्या, सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स में हम बात कर रहे हैं कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं आज या आने वाले एक दो दिनों में, उनकी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप भी पहाड़ों में जाने के शौकीन हैं? और गर्मियाँ शुरू होती हैं ना, बस अब यहाँ छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और लोगों ने ना लाइन लगा दिया पहाड़ों में जाने के लिए। लेकिन अच्छी बात है आप घूमने जाएं, पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, तो कहीं आप घूमने के बजाय जाम में ही ना फंसे रह जाएं। और हाँ, जाम से याद आया, अगर आप जाम में फंसे हुए ना और कह रहे हैं कि हाय कब आगे बढ़ेगा ये जाम, हद ही हो गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं यहाँ बैठे बैठे रिटायर हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तो ऐसा ना हो, आप मैं हम और आपके लिए बस यही दुआ कर सकती हूँ। लेकिन आपके साथ साथ ना आपकी गाड़ी का जो एसी है ना, उसकी भी जीप बाहर निकल आई है, वो भी कह रहा है कि सूरज चाचू बस करो, हद ही हो गई है, ऐसा ना हो कि मैं एसी में से हीटर बन जाऊं। है तो अगर आप चाहते हैं आपके अंदर इंसानियत बाकी है तो आप फटाफट से हमें बताइए, ताकि आपके साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, फटाफट से हमें बताइए 9868107070 पर। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप जा सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स और बिजनेस ओनर्स के लिए, यानी कि जो व्यवसाय के मालिक हैं उनके लिए, जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए। फ्रेंचाइजी एक्सपो इन दिल्ली होने वाला है, कब, आज यानी कि माफ कीजिएगा, आज नहीं, 30 तारीख यानी कि 30 मई को होने वाला है ये। वेन्यू है इसका रेडिसन ब्लू होटल न्यू दिल्ली द्वारका। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 20 से ज़्यादा बिजनेस के बारे में जानकारी दी जाएगी, ये हाईलाइट है यहाँ का। यहाँ पर जाने से पहले बहुत ज़रूरी होगा, किसी भी इवेंट में अगर जाएं तो आप रजिस्टर कर लें ऑनलाइन, ये बहुत ज़रूरी है, और चेक कर लीजिएगा कि क्या ऑफलाइन भी अवेलेबिलिटी है वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर 500 से ज़्यादा विजिटर्स के आने का अनुमान है। क्या आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी, आप प्री और पोस्ट प्रमोशन कर सकते हैं, अवार्ड सेरेमनी होगी यहाँ पर, और अपना बिजनेस का जो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में आपको बहुत सारी ढेर सारी यहाँ पर जानकारी मिलेंगी। चलिए तो इसी के साथ यहाँ पर एक म्यूजिक, ज़बरदस्त म्यूजिक ट्रैक हो जाए। स्टे ट्यून्ड।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी बिल्कुल, हम जानते हैं और खुदा भी जानता है कि आप मर बैठे हैं आकाशवाणी के ऊपर, इनके प्रोग्राम्स के ऊपर, और हमसे जुड़े हुए हैं आप बहुत कई सालों से, और कुछ नए लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया है। आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। यहाँ पर शो चल रहा है सिटी लाइट्स और मैं हूँ आपके साथ शालिनी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के इवेंट्स और हैपनिंग्स की, यानी कि क्या क्या दिल्ली में होने वाला है आज या आने वाले एक दो दिनों में, उसकी बात कर लेते हैं। आप वहां पर जाकर अपने वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा इवेंट है वो होने वाला है दिल्ली में 30 मई को, यानी कि कल 11 बजे सुबह आप यहां पर जा सकते हैं। रजिस्टर करना होगा आपको, ये फ्री है पूरी तरह से। वेन्यू है, यानी कि कहां पर ये होने वाला है, वो उस जगह का नाम है शांग्रीला रॉस न्यू दिल्ली 19 अशोका रोड जनपथ कनॉट प्लेस नई दिल्ली। यहां पर आप जाइए। और ये क्या है पूरा इवेंट, ये इवेंट जो है वो विश्व में अलग अलग देशों में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं उनको एक साथ लाने का काम करता है, ये कर रहा है ये। और उन देशों में जो नाम आता है वो यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, जापान, सिंगापुर, दुबई, आयरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो एप्लीकेंट्स हैं वो उनको एक खास अवसर देता है ताकि वो इन यूनिवर्सिटीज़ यानी कि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क कर सकें और उनसे जानकारी ले सकें कि कैसे वो किस किस तरह के कोर्सेज अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पर और क्या क्या कोर्सेज हैं यहाँ पर। आप AI को लेकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मेडिसिन, लॉ, साइकोलॉजी, बिजनेस, फिनेंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। जो भी आपके एम्बिशन, जो भी आपके गोल्स से फिट बैठता हो आप उसको लेकर जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप या वीज़ा के प्रोसेस को लेकर भी कोई परेशानी है, कोई आप जद्दोजहद है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर जाकर पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक चला सकते हैं। नेक्स्ट इज अरिजीत सिंह, समझावा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मैगा जी एक बारी फिर स्वागत है तुहाडा साडे शो विच जिसका नाम है क्या सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में आपके साथ हूं मैं शालिनी। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप। और चाट पकौड़ी बर्तनों के कई प्रकार, यही है हमारा चावड़ी बाजार। मैंने आपको कहा था कि हम दिल्ली की कुछ खास बातें भी यहाँ पर करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली की ये जो ऐतिहासिक जगह है ना चावड़ी बाजार, ये पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक और भारत का पहला थोक बाजार है। ये बाजार मुख्य रूप से शादी के कार्ड, पीतल तांबे के बर्तन और हार्डवेयर के थोक व्यापार के लिए जाना जाता है। और हाँ, इस जगह का नाम कैसे पड़ा ये आपको पता है? आपने नाम तो सुना ही होगा, क्यों चावड़ी बाजार का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है तो चलिए आप सुन लिया होगा। तो ये नाम कहाँ से पड़ा? मराठी शब्द चावड़ी से इसका नाम पड़ा है, जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। क्या आपको पता था? देगा इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना, मैं यही लेकर आती हूँ आपके लिए। और इसके अलावा आप क्या पूछ रही हैं? नहीं मतलब घूमना फिरना तो ठीक है, बाजार जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे कहाँ, वो भी तो बताओ। तो बता रही हूँ ना मैं, खरीदारी के बीच आपके लिए यहाँ पर जो है प्रसिद्ध कचौड़ी और चाट भंडार के व्यंजन आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जोला उठा के जाने से पहले ये सुन लीजिए कि रविवार को ये बंद रहता है, तो जाने से पहले ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए एंजॉय करिए अपना वीकेंड और मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया, तितली बन के उड़ने वाली हूँ मैं, ठीक है? सो ख्याल रखिए, ते गाना सुने चाहिए। आप सुन रहे थे शो सिटी लाइट्स विथ मी शालिनी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकादमी की शुरुआत की है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। तो बताइए कैसे हैं, हाल चाल? दिन रात ना फोन रहता है हमारे हाथ में, रहता है ना। मतलब मैं कह रही हूँ ये बात, और अभी थोड़ी देर में मैं ही आपसे कहने वाली हूँ कि 9868107070 पर आपको एक मैसेज भेजना है। तो जो फ़ोन हमारे हाथ में रहता है, क्या करते हैं उसमें? कभी हम कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं, कभी स्क्रॉल करते हैं, कभी टाइप करते हैं, और करते करते ना कई बार गलती से कुछ का कुछ लिख भेजते हैं। कई बार हम सही लिख रहे होते हैं पर ऑटो करेक्ट जी है ना, वो अपना काम कर देते हैं, और बस कभी आई मिस यू का जो क्यूट सा एक मैसेज डालना था उसकी जगह कुछ और चला गया, या कोई मैसेज फैमिली ग्रुप में डालना था वो बॉस को चला गया, बॉस को डालना था फैमिली ग्रुप में पहुंच गया। तो बस आज ना खोल दीजिए अपने चैट के एम्बैरेसिंग चैप्टर्स और भेजिए हमें अपने फनीएस्ट टाइपो या ऑटो करेक्ट फेल स्टोरीज। स्वागत है आप सबका मैसेज मसाला मिक्स में, और आज का टॉपिक है सबसे फनी टाइपो या ऑटो करेक्ट फेल जो आपके साथ हुआ हो। 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज द नंबर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भगवती, और भगवती इंतजार कर रही है आपके मैसेजेस से, शेयर करेगी वो सबके साथ। You are tuned in to Akashwani Rainbow. So, stay tuned.

सौरभ अनिजा गाजियाबाद से कह रहे हैं, गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक। एज यूजुअल इनका जो मैसेज पहले पहले शुरू शुरू में आ जाता है और यही होता है इनका हर बार का मैसेज, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। ये मैसेज है किनका, कहाँ से, कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा कहते हैं हम आपको सुन रहे हैं। आदाब जी, आदाब, सुन रहे हैं तो जो पूछा है उसका जवाब भेजिए ना। ओके, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कहाँ से है, किनका, स्नेहा लखनऊ से कहती हैं, मॉम ने बोला कि मार्केट से धनिया ले आओ और मैंने फैमिली ग्रुप में लिख दिया मैं दुनिया लेने जा रही हूँ। पापा ने रिप्लाई किया 2 किलो ले आना। दैट्स हिलेरियस है ना। तो स्नेहा, आंटी जी ने धनिया मंगवाया था आपसे और बेटी जी निकल गए दुनिया जीतने, क्या बात है।

तो आज ना बस आपको ये बताना है किसको मैसेज भेजना था और गलती से किसको चला गया, ऑटो करेक्ट ने आपकी मतलब आपको कब एम्बैरस कर दिया, ऐसा ही कुछ बताना है आपको।

सोनू बिजनौर से कह रहे हैं कि सच्ची बात बोलूं तो मैं कोई भी काम करता हूं तो बड़े सोच समझकर और बड़े से करता हूं, तो गलती की कोई गुंजत नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हुआ जो किसी के पास गलत मैसेज जाए। देखिए जी, सोच समझ कर आप करते हैं और कह रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मैं बिल्कुल गलती नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर देखिए ना, आपने पहले तो जो मुझे समझ नहीं आया, मैंने शायद समझा कि शायद बड़े कहना चाह रहे हैं, बहरे लिखा है वहां पर, और फिर उसके बाद गुंजाइश की जगह गुंजत लिखा है। तो देखिए, यहां पर भी हो गई ना गलती आपसे। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो जी। अनिल शर्मा सरिता विहार से कहते हैं कि बहुत फनी सी बात हुई, बहुत पहले मैसेज जो है बधाई का अपने स्टूडेंट को भेजना था, किंतु उनकी माँ को डिलीवर हुआ। जब काफ़ी देर बाद अलर्ट नहीं आया तो देखा गलत हो गया था मैसेज, जिसे सुधारना असंभव था। आखिर गलती के लिए सॉरी लिख भेजा, हाँ आगे से फिर गलती कभी नहीं की। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कहते हैं मैं तो मैसेज लिखते समय बहुत खबरदारी रखता हूँ, लेकिन मेरे व्हाट्सएप चैट पे बहुत सारे आकाशवाणी के नंबर सेव्ड हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में जिस पर मैसेज भेजना चाहता हूँ वो छोड़कर दूसरे नंबर पर भेजा है। जब मालूम होता है तब मैसेज डिलीट करके सही नंबर पर फिर से लिखना पड़ता है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स और आपके साथ हूं मैं, मेरा नाम है भगवती। तो कुछ और मैसेजेस जो हमारे पास आए हैं, देखते हैं क्या है, कहां से हैं, किधर से हैं। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार से दर्शना बाज़ार अररिया बिहार से कहते हैं कि मैं एक बार मैं अपने दोस्त को बड़ा गंभीर संदेश लिख रहा था, भाई तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे बिना ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन जो है गलती हो गई और मैसेज मेरे बिजली बिल वसूलने वाले अंकल को चला गया। कुछ देर बाद उनका जवाब आया, बेटा भावनाएं अपनी जगह है लेकिन पहले बिजली का बिल जमा कर दो, फिर दोस्ती की बात करेंगे। उस दिन मुझे समझ में आया कि मैसेज भेजने से पहले नाम ज़रूर देख लेना चाहिए, वरना दोस्ती का इजहार भी बिल भुगतान की याद दिला सकता है। क्या बात है। और अभी जो है ना, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी ना, तब तो बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी और मुझे पूरा पूरा लग रहा था कि शायद जो ये बादल हैं वो बरस ही जाए, पर पता नहीं बरसे कि नहीं बरसे, ये तो मैं तो स्टूडियो के अंदर हूँ, आप बता सकते हैं मुझे बाहर से। और थोड़ी देर में गाना एक प्ले करती हूँ, एक मैसेज पढ़ लेती हूँ और उसके बाद जो है बरसात के नाम गाना। तो ये हैं मज़हर अली तुगलकाबाद विलेज दिल्ली से कहते हैं गुड इवनिंग टू यू। कहते हैं बात कुछ यूँ है, मैं एक बार अपनी वाइफ के लिए मार्केट से कपड़े लेने के लिए गया था, कपड़े का फ़ोटो अपनी वाइफ को सेंड कर रहा था, गलती से ग्रुप में सेंड हो गया और ग्रुप से हमारे पास कॉल पे कॉल आने लगे, मज़हर भाई क्या भेज रहे हो।

पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक कहते हैं हम सवाल नहीं सुन पाए हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि कई बार आप गलत मैसेज टाइप कर देते हैं, मैसेज सही टाइप करते हैं, गलत इंसान को चला जाता है, गलत ग्रुप में चला जाता है। तो वो एम्बैरेसिंग मोमेंट, वो फनी मोमेंट हमारे साथ शेयर करें।

हीरामणि वर्मा दंतरेंगी भाटापारा से कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही हुआ है और इसका कारण था दिल कहीं और था, दिमाग कहीं और, नज़र और, मोबाइल पर उंगली कहीं और। कहते हैं मैं ड्यूटी पर था, छुट्टी पर कुछ प्लानिंग बनाई हुई थी, उसे अपनी मैडम जी श्रीमती जी को भेजना था, लेकिन गलती से बड़े साहब के मोबाइल में सेंड हो गया। मैं देख रहा था कि घर से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, जब तक सर जी रीड कर चुके थे और वो समझ गए थे, समझदार थे, मुझे कॉल किया, मैंने सॉरी बोला। वो बोले कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। दैट इज़ सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिम, सो स्वीट ऑफ हिम। बाकी लोग जो सुन रहे हैं, जिन्हें पता नहीं चल पा रहा था टॉपिक क्या, अब उनको समझ आ गया होगा। आज हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप कोई मैसेज, कई बार होता है कि हम टाइप करते हैं तो गलती से कुछ और टाइप हो जाता है, या फिर कई बार जो है गलत जगह पर वो एड्रेस, गलत एड्रेस पर सेंड हो जाता है, तो ऐसी कोई गलती आपसे हुई हो उसे शेयर कीजिए हमारे साथ और हम उसे ना बिल्कुल पब्लिक कर देंगे, सबके साथ शेयर कर देंगे। तो सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स। अगला मैसेज गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कहते हैं कि मैं एक बार किसी को मैसेज कर रहा था, जगह की जगह जवां लिख गया था, सामने वाले ने लिख दिया अभी तो बच्चे हो जनाब। नौ आठ छः आठ एक शून्य सात शून्य है व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए नंबर। 9868107070 इज द नंबर एंड भगवती इज वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से कहते हैं कि कभी कभी टेक्स्ट मैसेज इधर उधर हो जाता है। एक बार बीवी को मैसेज भेज दिया लेकिन मैसेज साले साहब के मोबाइल में गया था, होता है ऐसा कभी कभी कह रहे हैं। और नेक्स्ट मैसेज गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता का है, कहते हैं मैं लगभग 40 साल से आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर फरमाइश भेजता हूं। रेनबो चैनल पर मेरठ वालों के मेरठ के दूसरे श्रोताओं के संदेश भी आते हैं क्योंकि हमारे यहां फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी अधिक सुनी जाती है, परंतु इस चैनल के अलावा देश भर के आकाशवाणी स्टेशन पर मेरठ से केवल मेरा ही नाम पुकारा जाता है। अच्छा जी, कहते हैं अगर गलती से आकाशवाणी पर भेजे जाने वाला फरमाइशी संदेश स्टेटस पर लग गया और फिर मेरे पास मेरे उन मित्रों के फ़ोन भी आए जिनको मेरे रेडियो के शौक़ के बारे में नहीं पता था, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, तब मैंने उनको बताया कि मैं रेडियो का शौक़ रखता हूँ और गलती से फरमाइशी मैसेज जो है वो स्टेटस पर लग गया। रश्मि दिल्ली से कह रही हैं कि इन्हें गाने पसंद आ रहे हैं, थैंक यू जी। कहते हैं बात बहुत पुरानी है, जब इमोजी का कॉन्सेप्ट नया नया आया था और मेरी प्रिंसिपल मैम के मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, सब सैड मैसेज भेज रहे थे, तब मैंने सैड इमोजी की जगह हंसता हुआ इमोजी जिसमें ब्लू पानी दोनों आँखों से आता है भेज दिया। उस समय मैंने सोचा कि ये रोने वाला इमोजी है, दूसरे दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे इमोजी के बारे में बताया, फिर तो मैं बहुत केयरफुल हो गई और इमोजी भेजने से पहले 10 बार सोच कर भेजती हूँ, अभी भी सोचती हूँ तो सोच कर हंसी आ जाती है। तो शेयर कीजिए हमारे साथ लव मैसेज का फनी डिजास्टर हुआ है कभी। फैमिली ग्रुप में सबसे एम्बैरेसिंग टाइपो क्या गया आपकी तरफ से?

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये हैं किशन वंजनी, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। कहते हैं कि कई बार जो है हम मैसेज जो है कहना चाह रहे हैं कि जब कभी हम FM गोल्ड या अनमोल मैसेज भेजते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि FM रेनबो का मैसेज FM गोल्ड में चला जाता है, लेकिन उसमें भी जो है हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि हमारा मैसेज जो है शामिल कर लिया जाता है, जिसके लिए कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने एक दो बार मैसेज भेजना था FM रेनबो पर भेज दिया FM गोल्ड पर। कहते काम करने वाले से गलती होती है। जी बिल्कुल सही है, कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, मतलब जो काम करेगा उसी से गलती होगी, जो मैसेज भेजेगा ही नहीं, ट्राई नहीं करेगा टाइप करना, तो उससे गलती कैसे होगी भाई। यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं भगवती।

बात हो रही है यहाँ पर टाइपिंग करते समय उंगलियों के फिसलने की, गलत मैसेज गलत इंसान को भेज देने की, या कई बार मैसेज में गलत टाइप हो जाने की। तो फिर ये मैसेज है ऋतिक आर्य का गाज़ियाबाद से। कहते हैं कि एक बार मैंने अपने हस्बैंड, ऋतिक आर्य सॉरी, एक बार मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज कर रही थी, मैं अपने हस्बैंड को मैसेज कर रही थी कहना चाह रही हैं, जिनका नाम मैंने चंदन करके सेव किया हुआ था, और एक मेरी फ्रेंड चंदा भी है, तो मुझे अपने हस्बैंड से पेमेंट डलवानी थी, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि इतने पेमेंट जो है डाल दो, आगे कुछ नहीं लिखा। इस समय भी आपने लिखा की जगह दिखा लिखा है, और उसने रिप्लाई लिखा, अभी डाल रही हूँ बेटा, रुक रुक जा, किसको मैसेज किया है। तब मैंने उसको सॉरी कहा, गलती से मैसेज हो गया था, पर आपकी फ्रेंड ने जो है पेमेंट नहीं की। रामधारी आवाना, गांव ढाड़ी, कुतुबपुर, तहसील ज़िला हांसी, हरियाणा से कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि गलती से मैसेज कहीं और भेजा जाता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऑफिस से झूठ बोलकर छुट्टी ली थी, लेकिन गलती से उसी झूठ से रिलेटेड एक रिकॉर्डिंग जो है ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हो गई। दोस्तों के फ़ोन आने पर जब ग्रुप चेक किया तो होश उड़ गए, मेरे बॉस तक सब पहुँच चुका था। उस पर जितनी शर्मिंदगी महसूस हुई उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इससे मैंने सबक लिया कि कोई भी चीज़ भेजने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक करें कि मैं किसे भेज रहा हूँ और मैं क्या भेज रहा हूँ। बिल्कुल जी। भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से कहते हैं कि मैंने जो है एक बार बर्थडे विशेस देनी थी किसी को अपनी फैमिली में, और उसे मैंने गलती से किसी और ग्रुप में जो है सेंड कर दिया, पर लकीली जो है मुझे पता लग गया अपनी गलती का, और फिर मैंने अपनी गलती सुधार ली।

ऐसा कोई टाइप हो जिसके बाद फोन स्विच ऑफ करने का मन किया हो, और कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको आपका फोन हमेशा गलत ही करेक्ट करता है, शेयर कीजिए हमारे साथ। 9 8 6 8 1 0 7 0 7 0 है नंबर।

मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी कहते हैं कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, नजीबाबाद आकाशवाणी नजीबाबाद मैसेज भेज रहा था और आकाशवाणी रामपुर चला गया। कहते हैं कि फिर बाद में चेक किया तो पता चला। सोनिया बिहार से कंचन कह रही हैं कि टॉपिक इन्हें अच्छा लग रहा है और कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कभी अगर गलती से कहीं और मैसेज गया तो मैंने जो है मैं एक बार फिर से चेक करके डिलीट कर देती हूँ। इसका मतलब हुआ है ना आपके साथ ऐसा। मोहम्मद सहजाद सूरत गुजरात से कहते हैं कि इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी। ये कहते हैं मेरे साथ कई बार हुआ, एक बार की बात है कि विद्यालय की बात कर रहे हैं कि हर घर तिरंगे को लेकर मीटिंग हुई थी और इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को जो मीटिंग हुई उसकी फ़ोटो जो है शेयर करनी थी हर घर तिरंगा लिखकर, और इस उस पर जो है इन्होंने हर घर चंदा लिखकर शेयर कर दिया और बाद में जब और लोगों ने बताया तो इन्होंने उसे एडिट करके सही किया। सौरभ अनेजा गाज़ियाबाद से कहते हैं मेरे साथ तो ऐसा जो है

सोशल मीडिया में कई बार हुआ है, और फिर मुझे जो है तुरंत ही गलती पता लग जाती है तो मैं अपना मैसेज जो है अनसेंड करके सही पर्सन को सेंड कर देता हूँ। टॉपिक इनको यूनिक लग रहा है और कह रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, थैंक यू। ये मैसेज किन का है? वी जी दिल्ली लिखा है इन्होंने, कहा है कि घर पे बता के निकला था ऑफिस जा रहा हूँ, मैसेज ऑफिस ना आने का भेजना था बॉस को और चला गया पापा के पास, और फिर जो है दोस्त जो है वो बेचारी इंतज़ार करती रह गई। ये अच्छा था। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से कहते हैं, तूफान तो आ रहा है, लगता है आज आप बारिश करवा के ही रहोगे। बिल्कुल जी, मेरे ही कहने से बरसते हैं मेघा। कहते हैं एक बार मैसेज मैंने अपने घर पे भेजा था और फिर वो दोस्त के पास चला गया। ओटीपी था गैस सिलेंडर का। और भी फोन करके कहा कि भाई गैस वाला अभी तक नहीं आया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD News को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी

0: सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खाई शिंग और आरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

0: Waves OTT app now and watch for free.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका म्यूजिक मस्ती में। और आपके साथ है आपकी आरजे भगवती।

पूरी मस्ती के साथ सुनते रहिए हमें आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, और मैं हूं आरजे भगवती।

0: आप कहीं मत जाइए, आप रहिए यहीं पर हमारे साथ। यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती, मैं हूँ भगवती।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एक और पूरी मस्ती भरा गाना आपके लिए।
4: Oh God, one more remix.
3: तो क्या हुआ, जहां इतने सारे हैं वहां एक और सही।

Coming your way is this next track. याद आया? Of course याद आया होगा आपको. रंबा हो. Yeah, उषा उद्धव जी की बुलंद आवाज.

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती मेरे यानी भगवती के साथ। यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। सो स्टे ट्यून्ड।

होरोस्कोप है पूरा पूरा 9 बजे फ्री हो जाऊंगी मैं यहाँ से, तो चल सकते हैं हम कहीं भी। खैर 9 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही, विकास कौशिक आपके साथ होंगे, आ चुके हैं स्टूडियो में विकास। और 1990 के बाद के जो गाने हैं, प्यारे प्यारे से ट्रैक्स वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ, उन्हें एंजॉय कीजिएगा उनके साथ। और फिर उसके बाद 10:05 से होगा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम वीकेंडर सुजय जॉन के साथ। 11:05 से आप सुनेंगे रंगे महफिल, विकास कौशिक एक बार फिर आपके साथ होंगे। और अगर गजलें सुनना भाता है आपको तो फिर ज़रूर सुनिएगा ये शो। और अब समय है आपके दोस्त भगवती कहे आपसे बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, नमस्कार, शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।

0: बस ये समझिए कि आपकी मुलाकात का ये असर होता है कि मेरा दिल ऐसे ही मेरे दिल के तार ऐसे ही छिड़ जाते हैं जैसे ये सितार के छिड़ रहे हैं। और सचमुच जुदाई से डरता है ये दिल, इतना डरता है कि जब भी ये एहसास होने लगता है कि आपसे मिले हुए अरसा हो गया, वक्त काफ़ी बीत गया, तो बस किसी तरह से मैनेज करके चले आते हैं आपसे मिलने के लिए। यहीं कहाँ, यहाँ यो हमारा पता है एकदम फिक्स।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, ये आकाशवाणी का रेनबो जहाँ इस वक्त आपके लिए, आपके साथ, आपका अपना मैं हूँ विकास और लेकर आया हूँ वो प्रोग्राम जहाँ हम अपने गीतों से, अपनी बातों से और अपने नगमों से और तमाम जज्बातों के साथ ये बयां कर देते हैं कि हमें आपकी याद आती रही। और सचमुच मैं आपको एक बात बताऊँ कि जुदाई से तो मैं डरता ही हूँ, साथ में मैं थोड़ा शर्मीला हूँ इसलिए कह नहीं पाता हूँ, लेकिन आप बिना कहीं समझ जाओ कि मैं आपके बिना रह नहीं पाता हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा ना आपसे कि मैं लेकर आता हूँ आपके लिए ये खास प्रोग्राम, यानी आपकी याद आती रही। और इस आपकी याद आती रही इस रेडियो प्रोग्राम में रेडियो वाला गाना मेरी तरफ से सिर्फ आपके लिए। स्टे ट्यून आकाशवाणी रेनबो पर।

फिल्म दिल से उदित नारायण साहब स्टूडियो में, शाहरुख खान रेडियो स्टूडियो में, ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियो था फिल्म में, है ना। और ये इस फिल्म जो गीत की लाइनें हैं ना, इस गाने की लाइनें, मैं कहीं टुकड़ों में जी रहा हूँ, ओह हो, एकदम लगता है जब कलेजा ना चीर के निकल जाएगी। ऐसी ही मोहब्बत है बस हमारी आपके साथ। जब थोड़े दूर होते हैं तो ऐसा लगता है कि, जब स्टूडियो से बाहर चले जाते हैं आपसे मुलाकात नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि आप कहीं जी रहे हैं और हम तो आपके बिना, हमारी जो सांसें हैं बस समझिए कि बस चल रही होती हैं। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि ये मीडियम ऐसा है कि नज़रें नहीं मिलती आपसे, है ना। किसी ने कहा भी है कि नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं, भाई दो काम एक साथ नहीं कर सकूँगा मैं। इसलिए सचमुच ये बहुत अच्छी बात है कि ना तो हमारी नज़रें मिलती हैं और बस बातों का सिलसिला होता है, है ना। चाहे एक तरफा ही सही लेकिन बात तो होती है ना। और अगर बात होती है तो बात दिल से निकलती है ना। हम कहते भी हैं कि बात दिल से निकली और दिल तक जाएगी, क्योंकि ये है आकाशवाणी का रेनबो। और आकाशवाणी के इस रेनबो पर हम तो बस ये कहेंगे कि बात सचमुच एक तरफा ही सही लेकिन बात होती है, और अगर बात होती है, बात दिल से निकलती है, तो फिर बात आपके दिल तक पहुँचती भी होगी। इसलिए किसी शायर ने ये भी कहा है कि ये मुमकिन नहीं कि तुम बेखबर हो मेरे जज्बात से, ये मुमकिन नहीं कि तुम बेखबर हो मेरे जज्बात से, ये दिल की बात है, दिल तक तो जाती ही होगी। इसलिए आप तक दिल की बात पहुंचे तो इत्तला ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा हमें कि कैसे आपको हमारी याद आती रही। फिलहाल एक जो मैं समझता हूँ कि गीतों के माध्यम से हमने जो अपनी चाहत का सिलसिला है हम जलाए रखते हैं एक के बाद एक प्रोग्राम के ज़रिए, उस गाने को थोड़ा थोड़ा डिपिक करता है, मतलब उस जज्बात को डिपिक करता है ये गाना शेर घोसाल देवदास से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

अरे दिल ही तो है जो मान कहाँ पाता है, ये दिल ही तो है वो मक्कार जो हमें घड़ी घड़ी बस आपकी याद दिलाता है। और इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि हम लेकर आए हैं आपके लिए आकाशवाणी की रेनबो पर प्रोग्राम आपकी याद आती रही। मेरा नाम विकास है, आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि एक बड़ी प्यारी सी बात आपसे कहनी ही है मुझे, वो ये कि किसी ने लिखा है कि दो घड़ी के साथी को हम सफ़र समझते हैं, दो घड़ी के साथी को हम सफ़र समझते हैं, किस कदर पुराने हैं हम नए ज़माने के, और तेरे पास आने में आधी उम्र गुजरी है, आधी उम्र अब गुजरेगी तुमसे दूर जाने में। तो भैया हम तो ये मानते हैं कि जब भी आपसे मिलने का मौका मिले, मुद्दतों के बाद हम आपकी सोहबत में बैठें, आपकी संगति पाएं, तो कैसे ना एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताएं, कुछ बतियाएं और कुछ कहें आप भी थी और कुछ हैं सुने हम आपकी भी, है ना। तो कुछ कहना है तो ज़रूर कहिएगा, ठीक है। और अगर हमने जैसे आपसे कहा था कि कैसे आपको हमारी याद आती है ये भी बताइएगा, और अगर कुछ खास आप हमसे कहना चाहते हैं तो भी बताइएगा, तरीका आप जानते हैं, ज़रूर कहिए। फिलहाल मैं आपको वो गाना सुनाने जा रहा हूँ जो 90s के हर आशिक को उसकी महबूबा की याद दिला ही देता है।

है ना कमाल का गाना, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा पूरा 90s का दौर अपना वापस आ गया है, अपनी सारी बचपन की जो नलायकी है ना वो भी याद आ गई, सारी बातें याद आ गई, सारा सब कुछ याद आ गया। और सचमुच ऐसा लगा कि गाना सुनकर ना पूरी पिक्चर एकदम स्क्रीन पे सामने घूम गया। और एक कमाल की बात आपको बताऊं, कल छुट्टी थी और मैंने परदेश देखी और ऐसा लगा कि यार ये सिनेमेटिक जादू जो है ये पूरा सिनेमा का एकदम पूरा जो 90s के ज़माने में हमारे दिल पे छप जाता था जैसा सिनेमा, वो अब गायब हो गया ऐसा लगता है। तो मैं सचमुच उस सिनेमा के लिए कहूँगा, उस जादू के लिए कहूँगा जो 90s में था, कि आपकी याद आती रही। आपको भी बहुत कुछ ऐसा लगता होगा ना कि कुछ तो है जिसकी याद बहुत आती है, वो एक शख्स भी हो सकता है, वो एक दौर भी हो सकता है, वो गाना भी हो सकता है, वो अपने दिल का कोई ख़ास एहसास, कोई जज्बात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो याद आ जाए। आपको क्या याद आता है मुझे बताइएगा ज़रूर। फ़िलहाल मुझे याद आ रहा है कि मैं आपको एक गाना सुनाऊँ, वो गाना जो जिसको सुनकर ना आज भी कुछ कुछ होता है ना होता है, सुनिए आप भी।

कुछ कुछ हुआ, नहीं हुआ, होगा, अभी और होगा, बहुत सारा होगा। बस आप ऐसे ही सुनते रहना है यहाँ स्टेशन को जिसका नाम है ये।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल

और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

क्या कमाल का मैसेज है गाने में, प्यार के आगे अंबर झुकता है लेकिन प्यार नहीं रुकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्यार जब रुकता ही नहीं तो रुकने क्यों दे इस प्यार को। और हम इसलिए ही तो हम इस प्यार को, ये गीत संगीत की जो हमारी मोहब्बत है आप एक दूसरे के साथ, उसको ऐसे ही चलने देंगे, आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे और गीत आपको गज़लों की शक्ल में सुनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, एक घंटे के गैप के बाद। इसलिए बस मुझे आपसे कहना ये है कि तुझे हासिल किए बगैर तुमसे इतनी मोहब्बत की है, सोच कि अगर तू मुकम्मल मेरा होता तो क्या होता। और बस इसी सवाल के साथ आपसे आधे विदा ले रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपसे फिर मिलेंगे आधे एक घंटे के गैप के बाद। तो बस याद रखिए कि आपकी मेरी मुलाकात अभी फ़िलहाल यही है, रात 11 बजे मिलकर सजाएंगे रंगे महफिल, क्योंकि कहना इतना ही आपसे कि मेरी दुनिया है आप में ही कहीं। स्टे ट्यून्ड।

सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत

0: बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्या की बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अगर मैं इस ख्याल को ही बदल दूं कि आपको कोई गम है इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है कि आपको इस बात की खुशी भी हो कि मैं आपसे मिलने आया हूं। मेरा नाम विकास है और मैं आपके साथ सजाने के लिए आया हूं बहुत ही प्यारी गजलों की रंग महफिल। कहां आप जानते हैं मेरा पता, ये है मेरा पता,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: करेक्ट, ये है आकाशवाणी रेनबो जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी के दिल्ली NCR में हमारे एकदम फिक्स पते पर यानी 102.6 माइंड ब्रेक मेगाहर्ट्ज पर, और देश के अलग अलग हिस्सों में हम आपको मिलते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और साथ ही आप हमें देशी नहीं बल्कि दुनिया भर में कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से यानी न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। तो जहां भी जिस भी तरह से जिस भी फ्रिक्वेंसी पर जिस भी माध्यम से मीडियम पर आप हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है रंगों की इस महफिल में जिसका नाम है रंगे महफिल। तो बस हम तो आपको इतना भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी

क्या बात है, क्या खूबसूरत ख्याल है ना ये। और इस ख्याल में अगर मैं ये जोड़ दूं रंगे महफिल में, जो मुझे अभी भी ख्याल आया, जॉन एलिया साहब का एक बड़ा मशहूर ये शेर है, वो कहते हैं कि सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, या तो वो मिल गया होता या फिर मिला ही ना होता।

क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है ये। एक आवाज़ ऐसी जो जमानों जमानों तक हमारे जहन में ताज़ा रहेगी, कैद रहेगी, और उस पर उस आवाज़ को जिन अल्फाजों ने ताकत दी है वो शख्स के लिखे हैं जो जिसने अपने कलम से जब भी कुछ ऐसा लिखा बस वो दिलों में हमेशा हमेशा के लिए घर कर गया। बिल्कुल ये अल्फाज जो मैं दोहराना चाहता हूँ, जिसमें इस गज़ल में कहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, खुदा से रोज़ तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। ये अल्फाज डॉक्टर बशीर बद्र ने लिखे हैं, ये उनकी मशहूर गज़ल है, और इस गज़ल को आप जानते ही हैं, आपने सुना भी अभी कि जगजीत सिंह साहब ने गाया है। एल्बम थी तुम तो नहीं हो, 2005 में लिखी थी, और समझिए कि 2005 से लेकर अब तक अगर मोटे तौर पर देखें तो तकरीबन 21 बरस हो गए हैं, लेकिन हम अब भी इस गज़ल के उतने ही दीवाने हैं, और मुझे लगता है कि हम हमेशा रहेंगे। और बशीर साहब, आप तो आपके लिए बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह मुझे कौन चाहेगा। आपकी जो ये चाहत है, आपकी जो मोहब्बत है, आपके जो अल्फाज हैं, आप भले ही इस क्या कहते हैं सांसारिक जगत में ना रहें, लेकिन हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारी आत्मा में आपके अल्फाज, आपकी ये गज़लें, आपका अंदाज़, और मंच पर जब आपको सुना करते थे वो यादें हमेशा साथ रहेंगी। और इसीलिए बस आपके लिए इतना ही कहेंगे कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस कड़ी में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो फ़िलहाल बशीर साहब को हम याद करेंगे, करते रहेंगे, और हमेशा उन पर नाज भी करेंगे कि ऐसा एक शायर जिसने अपनी बड़ी साधारण सी और दिल को छू लेने वाली गज़लों को लिखा और हमेशा के लिए हमारे घरों में अपना घर बना लिया। जगदीश साहब, बशीर साहब, सलाम है आपको।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आशा जी यानी आशा भोसले एक वर्सेटाइल कलाकार, कमाल की फनकार, एक अलग अंदाज, एक अलग अदा, एक अलग रंग।

गुजरा किया हम रह गुजर देखा किए। आशा जी की आवाज़ में बेहतरीन सी गज़ल आपने सुनी आकाशवाणी के रेनबो पर, जहाँ चल रहा है इस पर प्रोग्राम रंगे महफिल। और रंगे महफिल में आपके साथ आपका हम सफ़र, मैं हूँ, मेरा नाम विकास है। और कहना कुछ आपसे यूँ है कि हर लफ्ज़ के तमाम मानी में हम भी थे, हर लफ्ज़ के तमाम मानी में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। उठती है एक कसक सी तेरी तस्वीरें देखकर, ताज़ा में हम नहीं हैं मगर पुरानी में हम भी थे। तू आम साना जान हमें ए हसीन शख्स, तू जैसा अब है वैसे जवानी में हम भी थे। और सैलाब गम में न जाने कहाँ बह गए वो दिन, सैलाब गम में न जाने कहाँ बह गए वो दिन, जब तू भी मौज में था और रवानी में हम भी थे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन

0: रहा है बब्बल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी का रेनबो आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं रंगी महफिल, आपके साथ मैं हूं विकास। और वक्त जो है हमारे हाथों से ऐसा फिसलता हुआ जा रहा है कि अब क्या ही आपसे कहें, है ना। लेकिन ये कह सकते हैं कि शिकायत और दुआ में जब शामिल हो एक ही शख्स, शिकायत और दुआ में जब शामिल हो एक ही शख्स, तो समझ लेना कि इश्क करने की अदा आ गई है तुमको। और मेरी तो शिकायतों और दुआओं में आप हैं ही, है ना। और साथ में आपसे मिलने की उम्मीद भी है कि फिर मिलेगी ऐसे ही किसी रंगे महफिल में, आपसे मिलने की ऐसी कोई तारीख जब मिल बैठेंगे आप, मैं और हमारा रेनबो, है ना। तो वक्त मिले तो ज़रूर लौट कर आइएगा मेरे साथ, उस रंग महफिल को भी सजाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बहुत बढ़िया गज़ल दे रहा हूँ और आपसे गुड बाय कहूँगा, लेकिन अब भी फ़िलहाल ये गज़ल चंदन दास की आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत फंड जारी करने और उसके उपयोग की समीक्षा

को लेकर बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा 3.0 को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से SSA, पीएम पोषण, उल्लास, पीएमश्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वयन के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी तथा इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थित में भारत में सबस्ट्रेट निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने कल नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:12:05 और 44 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो, और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की है, फिल्म का नाम है खेल खेल में।

ये खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे खेल खेल में फिल्म से, और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है अजनबी।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म जमाने को दिखाना है का ये गीत।

और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: है?
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: और अब बारी है इस गीत की, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है जमीन।

और दोस्तों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे आवाज़ दी है हेमलता और सुरेश वाडिकर ने। फिल्म का नाम है पहेली।

12:36 और 35 सेकेंड हुए हैं। दोस्तों, आप इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम जीरो आर शो, मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। और आइए अब आपको सुनवाते हैं काला सोना फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और डैनी ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और आइए अब सुनवाते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ना खुदा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे ना खुदा फिल्म से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं समाधि फिल्म का गीत, आवाज़ आशा भोसले की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दोस्तों, जीरो आर शो के इस प्रोग्राम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म शंकर हुसैन का ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत

लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 45 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत

नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: नंदिनी पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा।
1: हमारे बीच कुछ नहीं रहा?
0: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
1: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुंचेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD News को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मित वैता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव R तिलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्रवाई की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति

यू मिन हांग क्लाइंग 5 दिन की यात्रा पर, भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन हांग फ्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 और 45 सेकंड हुए हैं। एफएम रेनबो पर आइए आप सुनते हैं भुलाए ना बने। आपके साथ मैं हूँ अर्चना बिसारिया।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: हमारे हृदय के भाव जुड़े प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल।
1: अम्बे चरण कमल है तेरे।
0: शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ATA के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10-10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग आज 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत

बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग आज 5 दिन के भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितवैयता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिला के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं की सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन

0: रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया जिला पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन गया के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कल म्यांमार के राष्ट्रपति की म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज आई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह वाणिज्यिक पैमाने पर निगरानी, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स और ड्रोन आदि के लिए स्मार्ट विजन उपकरणों को शक्ति प्रदान करेगा। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह पीएसबीए के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएसबीए देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पोर्टल www.unclaimedaassessedtsportal.in एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।